0: योग करें, योग करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: आज का योगा टिप्स, शवासन को अपने योगा अभ्यास में जरूर शामिल करें। यह अभ्यास शरीर को आराम देने और मन को शांत करने में मदद करता है। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम।
2: सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

0: आर मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान।
2: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योगी योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज का दिन यानी कि हमारे शिविर का अंतिम दिन, 30वां दिन, तो सबसे पहले तो हमें आप सभी मिलकर के एक बार ये बताएं कि 30 दिवसीय योग शिविर में नए नए आसन, नए नए प्राणायामों को हमने एक नए शब्दावली के साथ में किया। हर दिन एक नए शब्द की उत्पत्ति के साथ में हमने हर रोज कुछ न कुछ नया ही सीखा है। तो 30 दिवसीय योग शिविर में आपने आकर के क्या क्या सीखा और क्या क्या प्राणायाम आसन किए, यह सभी आप हमें जरूर से बताएंगे। तो सभी का तहे दिल से स्वागत करती है योगिनी समता। तो आइए आज 30वां दिन योग शिविर का हम करेंगे जागरव। जागरव कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी कसरत नहीं है। जागरव का मतलब होता है बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी चीज को जानते हैं। चेतावनी, जाग, सतर्क, सूर्य के लिए एक नाम, मतलब होने का जागरव बहुत ही सुंदर बन जाता है। शास्त्रों में जागरव नाम को काफी अच्छा माना जाता है और इसका मतलब यानी चेतावनी, सतर्क होना होता है। जागरव अपने आप में इसीलिए नाम से ही जाना जाता है क्योंकि अगर हम किसी चीज की चेतावनी करते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह जागरव ही है। जागना, सचेत हो जाना। आज के अंतिम दिन यानी कि योग शिविर के अंतिम दिन में जागरव का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि हम आपको किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण आसनों पर, महत्वपूर्ण प्राणायामों पर कुछ चेतावनी भी करने वाले हैं। जागरव, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर एक प्राणायाम, हर एक आसन के साथ यह शब्द जुड़ा होना चाहिए। हम कोई भी आसन करेंगे, कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हमें अपने आप में जागरव होना चाहिए। चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो कपालभाती हो, चाहे वह कोई भी आसन क्यों ना हो। आसनों की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो मंडूक आसन है, सौंदर्य आसन है, चक्रासन है, और भी बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कि हम जब हम करते हैं तो हम उसकी सावधानियों को चेतावनी समझ करके अपना लेते हैं। परंतु प्राणायाम जब हम करते हैं तो श्वास से निर्मित होना चाहिए, श्वासों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। श्वास से निर्मित कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम होता है तो हमें अपने आप में एक जागरव की स्थिति बना देता है, एक जागरव को उत्पन्न कर देता है। एक जागरव की स्थिति इस तरीके से पनपने लगती है जब हम पूर्ण रूप से उसमें लिप्त हो जाते हैं। जान जाते हैं कि यह हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राणायामों की श्रृंखला में जब हम आते हैं तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, उद्गीत और भ्रामरी, भस्तिका, बहुत सारे ऐसे प्रणव प्राणायाम, सारे प्राणायामों का जो मिश्रण होता है वह जागरण में सम्मिलित हो जाता है। यानी कि हम कोई भी अगर आसन प्राणायाम करते हैं तो हमें उसके प्रति चेतावनी जरूर से होनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि हर किसी की व्यक्तित्व, हर किसी का शरीर, हर किसी के शरीर के ऑर्गन्स जो काम करने की शक्ति पर निर्भर करते हैं वह अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हर एक मनुष्य का रूपरेखा, चलन, बोलने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, खान पान से सभी कुछ अलग होता है, हम यह कैसे मान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा होता है? एक जैसा नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार हर एक आसन, हर एक प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग ही होता है। कोई आसन, कोई प्राणायाम हमें उतना अंदर से प्रभावी नहीं बना रहा है या प्रभाव से परिपूर्ण है, तो हम जान जाते हैं कि यह आसन हमारे लिए उतना लाभकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब हम जान जाते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, तब हम मान लेते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही ज्यादा पर्याप्त भी है। तो जागरण का मतलब यही हुआ कि हम किसी भी आसन प्राणायाम को करें तो हमें उसके प्रति पूर्ण चेतावनी रहे साथ में ही काम करना चाहिए। तो आइए हमें आपसे सबसे एक और महत्वपूर्ण बात करनी है, क्योंकि आज शिविर का अंतिम दिन है। आप सभी ने 30 दिन तक बहुत ही प्यार सम्मान हमें हर एक आसन प्राणायाम के साथ दिया। नित सवेरे 6 से 7 योग की योग पाठशाला में आकर के आपने नित्य सवेरे योग को अपनाया, आसन किए और उसके बारे में जानकारियां ली। इसी तरीके से आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे योग योगशाला में आकर के नित प्रतिदिन इसी तरीके से आप आसन प्राणायाम करते रहेंगे। हम एक नई सीरीज के साथ फिर से आएंगे, एक नए योग शिविर के साथ हम फिर से जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हमसे अब अगर कोई त्रुटि हो गई हो किसी भी आसन को लेकर के, किसी भी प्राणायाम को लेकर के, तो आप हमें बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। और आगे एक नई प्रेरणा के साथ में हम फिर से, एक नए उत्साह के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूं जो अमूमन सभी महिलाओं को, पुरुषों को, यहां तक कि बच्चों को भी अब होने लगा है। ज्यादा देर तक एक ही स्थान पर बैठना, काम करना, जॉब को लेकर के बैठने और एक साथ कई घंटों तक काम करने की वजह से पीठ दर्द की समस्या सभी को होती है। ठीक उसी तरह जैसे यदि हम कोई भी काम एक साथ 8-5 घंटे तक बैठ के करते हैं तो हमें एक आदत सी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि चलो ये काम भी निपटा लें, उसके बाद हम आराम कर लेंगे। बस इसी आदत के कारण से हमारी जो भी अवस्था होती है हम उसमें ढलने लगते हैं और ये आगे चल करके हमारी दर्द का कारण बन जाता है। पीठ दर्द अमूमन आजकल हम सभी घर में, सभी किसी न किसी एक व्यक्ति को हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीठ दर्द को कम करने के आसान से योगासन। पीठ दर्द को कम करने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में प्राणायाम बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। नियमित अभ्यास से रक्त संचार सुधरता है और साथ ही साथ मांसपेशियों में भी तनाव कम होता है और साथ में मानसिक शांति भी मिलती है। पीठ दर्द के लिए बहुत सारे वैसे प्राणायाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज कुछ मुख्य रूप से प्राणायाम की गिनती में आप सभी लोग मिलकर के करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। जी हाँ दोस्तों, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो सभी प्रकार के दर्द को दूर करने के साथ साथ हमें हमारे स्वस्थ शरीर को प्रदान करता है, जो कि रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। मानसिक तनाव को कम करने के साथ साथ हमारे दर्द को भी घटाता है। अनुलोम विलोम, आप सभी को पता है कि हमको अनुलोम विलोम कितनी देर करना है, 5 से 7 मिनट। ये प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में आप 3 से 4 मिनट भी कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति। कपालभाति पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ कपालभाति रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है, इसीलिए हमें नियमित रूप से कपालभाति जरूर करना चाहिए। कपालभाति की भी समय अवधि स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट और हम समय के हिसाब से उसे बढ़ाते जाएंगे तो 5 से 7 मिनट भी कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि नसों को शांति देता है, दर्द और बेचैनी को भी कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम विपरीत भी कहते हैं, यह हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक नसों को इतना आराम देता है कि हमारे सारे दर्द को दूर कर देता है। चौथा प्राणायाम दीर्घ प्राणायाम। गहरी सांस लेने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर पीठ की जकड़न को कम कर देती है। पांचवा प्राणायाम आता है उज्जयी प्राणायाम। गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है, रीढ़ की सिधाई और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। उज्जयी प्राणायाम, वैसे तो हम कई ऐसे प्राणायाम करते आ रहे हैं जिसमें गर्दन, पीठ, रीढ़ की सिधाई और भी हमारी नसों को आराम पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन उज्जयी प्राणायाम विशेषतः गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है। सुबह खाली पेट या सारे प्राणायाम करने से इसका लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलता है। आरामदायक आसन में बैठ जाएं, यानी कि सुखासन, वज्रासन या फिर कुर्सी पर सीधा बैठना। 5 से 10 मिनट में शुरुआत करते करते धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाना है। सबसे जरूरी है इसमें नियमितता, यानी कि हम नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तभी हमें इसका लाभ जरूर से मिलता है। या तीव्र पीठ दर्द, डिस्क या कोई गंभीर रीढ़ की समस्या है तो किसी योग और किसी भी योग से हम जुड़ सकते हैं, जैसे कि आज हमने आपको 5 योगासन बताए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम की ओर जो कि हमारी पीठ दर्द के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। पीठ दर्द को कम करने के लिए बिल्ली, गाय, मुद्रा, घुटने से छाती तक खिंचाव करने के बाद में उसे उक्तासन जैसे योग आसन किए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे, बिल्ली, गाय, मुद्रा? जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने अपने सीरीज में आपको बताया है बिल्ली और गाय की मुद्रा। पीठ दर्द को कम करने के लिए आज मैं आपको बिल्ली, गाय, मुद्रा ही बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हाथों और घुटनों के बल आ जाएं, कलाइयां कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे रखें। श्वास लेते हुए अपनी पीठ को मोड़ें, पेट को नीचे की ओर झुकाएं और सिर व टेलबोन को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को गोल करें, हुड्डी को छाती से सटाएं और पेट को अंदर खींचें। यह है बिल्ली मुद्रा। इस प्रक्रिया को 6 से 8 बार हम दोहरा सकते हैं। घुटने से छाती तक जो खिंचाव होगा वही हमारा यह मुख्य उपाय होगा। पीठ के बल लेट जाना है, एक घुटने को अपनी छाती की ओर खींचें और कुछ सेकंड रुकें, फिर छोड़ दें। इस क्रिया को हम 5 बार दोहरा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं उत्तान आसन, यानी कि खड़े होकर आगे झुकना। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर खड़े होकर के रख करके खड़े हो जाएं। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए अपनी बाहों को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को लटका दें और कुछ सेकंड रुक जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और इसे 3 से 5 बार दोहराएं। पीठ को सीधा रखने की कोशिश हमेशा से करें, यानी कि जब भी हम बोलें, बैठें, तब हम नियमित रूप से सीधे ही बैठने की कोशिश करें। क्या होता है दोस्तों कि कई बार हम कई घंटे एक जगह बैठे बैठे हमारी रीढ़ की हड्डी पर एक कसाव सा होने लगता है, जिसके कारण से हम झुकने लगते हैं। गर्म या ठंडी सिकाई करने से भी मांसपेशियों को आराम मिलता है। लेकिन मैं आपको जो आज अभी हम सब लोगों ने मिलकर आसन किए, यह आसन बहुत ही उपयोगी है और इन आसनों को जरूर से करना चाहिए। पीठ में जकड़न का इलाज करने के लिए हल्के व्यायाम जो आज हमने आपको बताए, स्ट्रेचिंग या गर्म ठंडी चिकित्सा का उपयोग हम कर सकते हैं। आराम करने से बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। जबकि अगर आपको काम के दौरान भी 5 से 10 मिनट मिल रहा है, तो जिनको भी पीठ में दर्द होता है वह जाकर के एक बार सीधा जरूर लेट जाए। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों की अकड़न दूर होती है और गर्म या ठंडी सिकाई से रक्त प्रभाव बढ़ता है और सूजन कम होती है। अपनी सारी मुद्राएं आराम से करने के बाद में तनाव मुक्त होकर के ही हम लेट जाएंगे। स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर की जितनी भी अकड़न होती है वह तो दूर होती है, साथ ही साथ मांसपेशियों को भी बड़ा आराम मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का, यानी कि योगशाला में आज हमने बताया पीठ दर्द को कम करने के साधारण से उपाय और व्यायाम। आइए हम सभी मिलकर के करते हैं और मिलते हैं अगली योगशाला में सुबह 6 से 7, क्योंकि हम सभी मिलकर के जब योग करते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने आपको कई ऐसे आसनों के बारे में बताया है, जैसा कि उसके लाभ और उसका तरीका, तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उष्टासन। उष्टासन में सबसे पहले करने का तरीका हम बताएंगे और उसके बाद उसके लाभ। हर एक प्राणायाम का लाभ और अपने आप में उसकी उपयोगिता देखी गई है। उसी तरह उष्टासन भी अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय और सभी को पसंद आने वाला यह आसन है। तो आइए हम सबसे पहले उष्टासन करते हैं। सर्वप्रथम किसी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठने का तरीका वज्रासन होगा। जैसे पहले घुटनों के बल बैठें और एड़ियों पर शरीर को टिकाएं। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को उठाएं। अब शरीर को ऊपर उठाकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के बीच लगभग 1 फुट का अंतर रखें। हाथों को कमर पर रखें, हथेलियां नीचे की ओर रखें और कमर को हल्का सा पीछे झुकाएं। धीरे धीरे झुके और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अपने सर को झुकाएं। उसके बाद एड़ियों को पकड़ें और जब तक आराम से झुक सकें तब तक आप झुकें और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। छाती को ऊपर उठाएं, सिर को पीछे की ओर झुकाएं ताकि गर्दन को भी स्ट्रेच मिले। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड रहें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और फिर पुनरावृत्ति की तरह प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। वापस आते समय धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और पहले कमर सीधी करें, फिर हाथ कमर पर लाएं और वापस वज्रासन में आ जाएं। तो दोस्तों, ये था उष्टासन करने का तरीका। आइए अब हम उष्टासन के लाभ आपको बताने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को लचीलापन तो ये देता ही है, साथ ही साथ यह आसन स्पाइन को भी मजबूत और लचीला बनाता है। कमर और पीठ दर्द में राहत देता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। छाती और फेफड़ों का विस्तार ठीक ढंग से करता है, इससे सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। यह आसन रक्त संचार में सुधार करता है। तनाव, चिंता और थकान को भी यह कम करता है। मन को शांत करने के साथ साथ शरीर में ऊर्जा भी भर देता है। शरीर की आकृति को सुधारता तो है ही, साथ ही साथ पीठ सीधी रहती है और झुके कंधे ठीक होते हैं। पेट की मांसपेशियों को टोन करता है। यह आसन पेट की चर्बी घटाने में भी संपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होता है। हाइड्रेशन यानी पाचन में सुधार करता है। पेट के अंगों पर खिंचाव करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और रीढ़ की हड्डी और गले के हिस्से को मजबूत करता है। कुछ ऐसे आसन जो कि हमारे संपूर्ण शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं, जिसमें उष्टासन और पद्मासन में बैठ करके यदि हम करते हैं तो काफी कुछ हमें इसका लाभ मिलता है। आइए अब मैं इसके प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां बता देती हूँ। कमर या गर्दन में दर्द हो तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या स्पाइन इंजरी वाले लोग भी इसे बिल्कुल ना करें। यह आसन खाली पेट करना चाहिए और भोजन के 3 घंटे के बाद इस आसन को करना चाहिए। शुरुआती लोग इसे दीवार के सहारे या किसी भी प्रशिक्षण की देखरेख में ही करें। आसन करने के बाद कुछ समय बालासन और जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं, उसमें आराम से बैठ जाएं और उष्टासन को पूर्ण करने के बाद ही आराम से धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ही हम इस आसन को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरीके से इस बार भी उष्टासन के लाभ, सावधानियां और तरीका हमने आपको बताया। इस तरीके से यदि आप इस आसन को करते हैं तो संपूर्ण रूप से आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ ही साथ लाभ भी मिलेगा। अगली श्रेणी में हम आएंगे एक नए आसन की सावधानियां, उपचार, लाभ और तरीका लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, जो कि एक नामों के साथ में सीरीज चल रही है, योग के साथ में एक नाम को जोड़ करके। जैसा कि पहली सीरीज में हमने आपको बताया था नौकासन, यानी कि अलौकिक नौकासन, उसी के साथ में एक नया नाम अब हम आज आपके सामने बताने वाले हैं, जो कि है प्रकाशमय वृक्षासन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई भी सीरीज देखते हैं, कोई भी पुरानी सीरियल्स को देखते हैं, कोई आध्यात्मिक सीरियल्स को देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जब घोर तपस्या करते थे तो वो पेड़ों पे जाकर के या फिर पहाड़ों पे जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के इस आसन को करते थे, जो कि बहुत प्रचलित है, जिसका नाम वृक्षासन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह वृक्षों की तरीके से सिर्फ सीधे खड़े रहना ही है। यह वृक्ष की तरह तो लगता है, लेकिन श्वास का लेना, निरंतर रूप से श्वास को कम करना, कैसे लेना है, क्या अंतर में कुछ ऐसी उपलब्धियां जिसे हम पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी गतियां जिन्हें हम अपने रूप में उसे जानना चाहते हैं, ये सारी गतिविधि हमारे वृक्षासन के अंतर्गत आती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृक्षासन प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। सबसे पहले तो साधारण रूप में वृक्षासन होता है, दूसरा ध्रुव आसन जिसे भागीरथ आसन भी कहा जाता है, उसके बाद में द्वितीय प्रकार यानी कि क्रम पूर्ण एक आसन भागीरथ का दूसरा, ये सारे प्रकाशमय वृक्षासन के अंतर्गत आते हैं। वृक्षासन करने से पहले मैं बता दूं कि यह प्रकाश की तरीके से बहुत ही ज्यादा तेज और हमें रोशनी प्रदान करने वाला होता है। जिस तरीके से हम पेड़ों पे या फिर पहाड़ों पे पहुंचकर एक अलौकिक तेज को प्राप्त करते हैं, चारों तरफ एक रोशनी रोशनी, ठीक वैसे ही यह आसन को करने के बाद भी हमें अपने शरीर में कुछ इसी तरीके से अनुभूति होती है। वृक्ष के समान आकृति होने के कारण इसे वृक्षासन तो कहा ही जाता है। सर्वप्रथम समावस्था में हमें खड़े हो जाना है, फिर शरीर को संतुलित रखते हुए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और पैर के पंजों को बाएं पैर की जांघ के मूल पे लगाएं। ध्यान रहे दाहिने पैर के पंजे की उंगलियां जमीन पर टिकी रहें। इस प्रकार एक पैर पर संतुलन बनाएं। अब दोनों हथेलियों को मिलाएं और सीधे आकाश की तरफ उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी रखें और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। ये है प्रकाशमय वृक्षासन का पहला, जिसमें हमें सीधे खड़े हो जाना है, वजन एक पैर पर हमें पूर्ण रूप से डाल देना है, दूसरे पैर का तलवा, जांघ और पिंडली घुटने पर नहीं रखना है, हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर उठाना है, नजर सामने और एक बिंदु पर ही टिकी होनी चाहिए, 20 से 30 सेकंड रुकें और सामान्य सांस को लें।

या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। सुप्रभात साथियों, आज की पहली किरण लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आरजे आकांक्षा आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण में। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आज की जो हमारी माँ है वो है माँ महागौरी। श्वेत वस्त्र धारिणी, गौरवर्ण, कोमल हृदय और करुणामयी माँ के स्वरूप की चमक चांदनी के समान है, निर्मल और शुद्ध। आज हम इन्हीं का अनुसरण करेंगे। सबसे पहले ये माँ की ही भेंट।

श्रोताओं, कथा है कि माँ पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया। तब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराया और उनका रूप गौरी के समान उज्जवल हो गया। उसी समय उनका नाम पड़ा महागौरी। माँ महागौरी भक्तों को पवित्रता, धैर्य और सौभाग्य प्रदान कराती हैं। उनके चरणों में शरण लेने से जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। आइए माँ का ध्यान करते हैं एक और माँ के भेंट के माध्यम से।

माँ महागौरी हमें ये संदेश देती हैं कि तपस्या, धैर्य और विश्वास से जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। मन की अशुद्धियाँ जब धुल जाती हैं, तो जीवन भी महागौरी की तरह उज्जवल और शांतिमय हो जाता है।

पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी के मन को आहत हुआ। पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर शिव जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो जाता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया जाता है।

एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय गौरवर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांति और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।

महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करता हुआ वहीं बैठ गया। इस इंतजार में काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं।

एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवलिंग पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। ये वही स्थान है जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। तो इस प्रकार से माँ के कई सारी कथाएं हैं जो कि लोक में प्रचलित हैं। आइए माँ का ध्यान करते हैं।

श्वेतेव ऋषि समारुढ़ा श्वेतांबर धरा सुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इनका वर्ण पूर्णता गौर है। इस गौरता की उपमा शंख चक्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि की

0: उनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की चार भुजाएं हैं, इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। यहाँ महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से प्रकट हुई थी।
1: खड़गम चक्र गदेषु चाप परिदान शूलम शुंडे शिर शंखम संदत सिंकरैस्त्रिनयनम सर्वांग भूषा।

अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी की पंचोपचार सहित पूजा करते हैं।

माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इसका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। इनकी उपासना से अर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वाधिक प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन में सभी नौ देवियां प्रसन्न होती हैं। इसलिए मन से पूजा करें, धन से पूजा करें, तन से पूजा करें और अपने सर्वत्र जीवन से पूजा करें। जय माता दी।

पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, यानी हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो।

चलते चलते कुछ स्वास्थ्य मंत्र आपके लिए। आज माँ महागौरी की साधना के साथ माँ को पसंद आने वाला सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प और दूध से बनी खीर का विशेष महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी दूध और खीर शरीर को ऊर्जा, शांति और ठंडक प्रदान करते हैं। व्रतधारी को यह भोजन संतुलित शक्ति और स्फूर्ति देता है, तो इसका सेवन करें और माँ का चिंतन मनन करें। जय माता दी।

माँ की पूजन में हर तरह की विपदाएं शांत होती हैं। माँ के पूजन के लिए कई सारे मंत्र हैं। सबसे सरल ओम देवी महागौर्य नमः, इसका निरंतर जप करें, माँ का ध्यान करें, माँ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं या जो भी कष्ट हैं उनका निदान हो, और कुछ ऐसे कष्ट जो आपके लिए असहनीय है उसको सहने की वो शक्ति प्रदान करें, क्योंकि माँ स्वयं प्रकृति है। माता महागौरी ही प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति हमें आत्मिक बल देती है, मानसिक शक्ति देती है, चीज़ों को बदलती नहीं हमारे लिए, हाँ, पर उसके लिए हमें हमेशा मजबूत बनाती है। तो माँ से प्रार्थना करें और अपने जीवन को सरल बनाएं। साथियों, अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की उपासना से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है और मन में पवित्रता का प्रकाश फैलता है। आइए आज हम संकल्प लें कि हम भी अपने विचार, अपने कर्म और अपनी वाणी को माँ की तरह पवित्र और उज्जवल बनाएंगे। अब मुझे इजाजत दे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपके भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण में। जय माता दी, जय जिनेंद्र, राधे राधे, खुदा हाफिज़।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

0: अच्छा, दिन मंगलवार है, ऑल राइट। सो थॉट कैसा होने वाला है? यस ऑफ कोर्स, थॉट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ शुभ होने वाला है, और ये शुभ शुभ थॉट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो आज का थॉट कहता क्या है? चले थॉट की तरफ, चलिए चलते हैं आज के थॉट की तरफ और बताते कि भाई आज का आपका स्पेशल थॉट आपसे कहने की कोशिश क्या कर रहा है, आखिर क्या पैगाम है जो आप तक पहुंचाना चाहता है आपके गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। सो यस, आप सभी का वेलकम करते हैं और चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, ये जानने के लिए कि भाई क्या है आज का मॉर्निंग वाला थॉट।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

बड़ा ही खूबसूरत सा आज का थॉट ऑफ द डे है और बड़ी ही प्यारी बात कहता है। दरअसल आज का थॉट कहता है कि एक दर्द तो झेलना होगा, या तो अनुशासन का या फिर पछतावों का। एक दर्द तो झेलना होगा या तो अनुशासन का या तो पछतावों का, और ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का, यानी आज के सुविचार का, जो कि आज आपके ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो में आया हुआ है। सो भाई आखिर ऐसी बात क्या है कि एक दर्द झेलने की बात कही जा रही, जिसमें पहला बताया जा रहा है कि या तो आपके अनुशासन का होगा और या तो पछतावों का होगा। तो भाई सीधी सी बात है, एक पेन तो आपको लेना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक भी ना हो। या तो आप अपने लिए अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएं, अपनी चीज़ों को रूटीन में लाएं, जिसको हम अनुशासन बोलते हैं, जिसमें आपकी पूरी फिटनेस, पूरी हेल्थ, डाइट, व्यायाम, करियर, काम, प्लानिंग, ये सब कुछ होना चाहिए। इसका एक पेन होता है, इसका भी एक दर्द होता है कि जब आप देखते हैं बाकी लोग बिल्कुल एकदम चिल होकर के कुछ भी कर रहे हैं, तब आपको अपनी सपनों के लिए या अपनी कुछ चीज़ों के लिए आप जुटे हुए होते हैं, आप उसको लगातार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये एक पेन होता है। दूसरा पेन होता है पछतावों का, कि भैया कुछ भी नहीं किया, सब छोड़ते चले गए, सोचा देखा जाएगा, वो तो बात की बात है, देखा जाएगा का मतलब सेंस यहाँ पे है कि कुछ किया ही नहीं, करके देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया होता है कि अपने हिसाब से कोशिश कर ली, फिर तो देखा ही जाएगा सच में। लेकिन हम सिर्फ सोचते ही रह गए कि बस देखा जाएगा, तो यहाँ पर पछतावों का एक दर्द आएगा। एक पेन है पछतावों का और एक पेन है आपके अनुशासन का। अब तय आपको करना है कि कौन सा दर्द आपको लेना है, किस दर्द को आप झेल सकते हैं और कौन सा दर्द आपके लिए बेहतर रहने वाला है। या तो अनुशासन होगा, जिसमें थोड़ा सा जल्दी उठना होगा, थोड़ा सा व्यायाम करना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्माइल करना होगा, थोड़ा सा लोगों को जज नहीं करना होगा, थोड़ा सा खुद को अप्रिशिएट करना होगा, थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को करना होगा, थोड़ा सा आपको अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना होगा, टाइम पे चीज़ें करनी होंगी ताकि आप फ्रीली ज़बरदस्त तरीके से जी पाए। इसका भी एक पेन होगा। एक पेन होगा पछतावों का, जिसमें आपने बहुत सारा चिल किया होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, और एट द एंड लगेगा अरे यार अब तो सब निकल गया, अब ऐसे वक्त पे क्या किया जाए, वो पेन होगा पछतावों का। अब डिसाइड हमें करना है कि भाई कौन सा पेन जो है वो हम ले सकते हैं, है ना। अब हम या तो अनुशासन का पेन ले लें और या तो पछतावों का पेन ले लें। एक पेन तो लेना ही लेना होगा और ये हमको तय करना है कि भाई कौन सा पेन हम ले सकते हैं, कौन सा पेन हमारे लिए बियरेबल है। सो अब ज़रा सोचिए कि आप किस पेन में जाना चाहेंगे। इस पेन जाना चाहेंगे तो इस पेन के लिए भी अनुशासन का पेन चाहिए होगा। जस्ट किडिंग। सो भाई दो तरह

के पेन है, दो तरह के दर्द हैं। एक तो है अनुशासन का, जिसमें हम अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं, उसका एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और दूसरा होता है पछतावों का, जिसमें हम कुछ नहीं करते, रह जाते हैं, टालते रहते हैं, और उसके बाद एट द एंड हमको अफसोस ही सामने नज़र आता है। सो यही है आज का मंगल स्पेशल यानी ट्यूसडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे। आई होप कि आप इन दोनों पेन को समझ पा रहे होंगे और इस पेन से आगे निकलने का आप भी सोच रहे होंगे। खैर, ये तो मेरे ख्याल हैं, अब आपके साथ क्या है आप फटाफट से बता दीजिए। सो चलिए आप भी बताइए, आपके बताए जाने का इंतज़ार तो हमको है कि आखिर आपको क्या लगता है, आप किस पेन के लिए तैयार हैं, और आपको भी लगता है क्या कि हाँ सच में से दो में से कोई एक पेन मिलना ही मिलना होता है ना।

0: दिल तो हमेशा से बच्चा रहा है जी, बस आपको ही न जाने क्यों बुजुर्ग बनाने की आ जाता है ख्याल। भाई थोड़ा सा वॉक शॉक करते रहो, दौड़ते उड़ते रहो, दिल हमेशा बच्चा और जवान रहने वाला है, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग जीने पे जीने चढ़ जाया करते थे और ऐसे लगता था दो चार करके ख़त्म हो जाता था। अभी क्या है कि थोड़ा सा भी जीना चढ़ जाओ वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन है ना ये होता है। ऑफ कोर्स मेरे साथ भी हुआ जब हमने काफ़ी वक्त तक मूवमेंट बंद किया, बट अभी लगता है कि बीच बीच में जब भी वक्त मिला जाए मूवमेंट किया जाए, इससे थोड़ा सा एक्टिव हम रह लेते हैं। फिलहाल एक्टिवली होकर के आइए, चलते हैं आपके चैट पर क्योंकि आपने मैसेजेस भेज दिए हैं। सो मैसेजेस में क्या आखिर क्या लिखा है? ऑफकोर्स आपके मैसेजेस हमेशा हमारे लिए एक ऐसे पैकेट की तरह होते हैं जिसको खोलने के बाद ओ वाओ क्या बात है, व्हाट अ सरप्राइज। तो चलिए फिलहाल देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आए हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो के ऑफकोर्स आरजे अदनान के लिए चैट बॉक्स पर। लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

आरजे तो अपना मैसेज रीड करेगा, मगर यहाँ तो बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, देखो तो इनको जरा तुम। सबसे पहले दीपक जी ने हथियागढ़ गोंडा से भेजा है, गुड मॉर्निंग आरजे दर्शन जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है। आप कहते हैं आज रेडियो ग्यारह स्थली का प्रसारण अपने रेडियो सेट से अपने यहाँ से 55 किलोमीटर दूर क्लियर आवाज में सुन रहा हूँ, क्या बात है। सो ये दिल बदिल और दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है, पहुंचता ही जा रहा है आपके सीधे धड़कनों में। थैंक यू सो मच इस इंफॉर्मेशन के लिए। आशु मिश्र जी लखनऊ से लिखती हैं, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात। दुआ मिले बड़ों से, दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से, रहमत मिले रब से, प्यार मिले सबसे, यही दुआ है प्रभु से, और सब खुश रहे आपसे और आप खुश रहे सबसे। वाह क्या राइमिंग है, क्या टाइमिंग है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन आपने भेजा हुआ है। एंड हमारी सविता दुबे जी लिखती हैं, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात। प्रीति जी बहराइच से, सर जी वेरी लवली वाला मॉर्निंग, वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है। एंड धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास से लिखते हैं, अदनान सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आज का दिन आपका मंगलमय हो। आज वैसे भी मंगल ही है, मंगलमय तो होना बनता है। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी दुआओं के लिए धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र पाजी, अच्छा चली थी धर्मेंद्र जी। सो प्रीति जी लिखती है, हमारी सत्य बया कर रहा है आज का औसम थॉट, मैं तो अक्सर अनुशासित रहकर ही अपना ख्याल करती हूँ, जिससे कुछ लोग हमसे नाखुश भी रहते हैं मुझसे। अरे तो भाई कुछ लोगों को तो उसका काम ही है, जैसे कोटा होता है कुछ चाहने वालों का, ऐसे एक बहुत बड़ा कोटा हो जाता है ना चाहने वालों का, स्पेशली जब आप बहुत बेहतरीन कुछ कर रहे हैं। सो अगर ना चाहने वाले बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप सही जा रहे हैं। एंड हमें सविता दुबे जी लिखती हैं, मैं हमेशा से अनुशासन का दर्द चुनती हूँ, हमेशा चुनूंगी, आज का सुविचार बहुत प्यारा लगा, मेरा दिल भी बच्चा है जी। अरे आपका तो बच्चा है ही है आपका दिल, और ऑफकोर्स इसको तो हमने कॉलर जब कॉल करते हैं उस सेगमेंट में भी सुना हुआ है। थैंक यू सो मच। एंड लिखती है कि आपके लिखते लिखते मेरी सब्जी जल गई, ओ माय गॉड। सो जली हुई सब्जी को जरा कम जलाया जाए और उसको फटाक से वहां से उतार लिया जाए और जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। अच्छा चलिए ठीक है, पेट में ले जाइए जो बची कुची है फिलहाल, ये लगाव नहीं तो और क्या कि भाई सब्जियां तक जल रही है मॉर्निंग शो में, माय गॉड एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। थैंक यू सो मच टू यू। हमारी गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से आगे, गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, और आपने ट्यून कर लिया है फ्रिक्वेंसी से रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से, और इसी एप्लीकेशन के चैट पर आकर के आप लोग मैसेजेस भेजते हैं जो हमको हमारे शोज तक लाइव मिलते हैं। सो चलिए भाई फिलहाल वक्त है एक स्टेप आगे लेने का और आपको एक बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाने का, वापस से आने का, आने के बाद आपको अपडेट देने का, आपका अपडेट रहने का और मस्त रहने का, खुश रहने का, और ये वाला गाना ज़रूर से सुनने का।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: हमने भी सोचा था कि भाई आपसे मिलकर हम बताने वाले हैं कि आपके शहर यानी गोंडा में क्या कुछ चल रहा है, यानी आपको ले चले सिटी अपडेट्स की तरफ। तो चलिए, आज यानी कि 13 अक्टूबर को दिन मंगलवार में आज का क्या है, आपके गोंडा में क्या कुछ चल रहा है और गोंडा की अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

स्वान जी अपडेट्स की तरफ आ गए हैं और चलिए आपको हम बताते हैं आज गोंडा की अपडेट्स में आपके लिए क्या है। सो फिलहाल जो गोंडा में अपडेट्स है वो पहली तो साइबर ठगी से जुड़ी हुई है। सो आपको बता दें कि एक महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर 21,00,000 रुपये 30,600 रुपये ठग लिए गए। एक दूसरे मामले में इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके विदेश से कीमती गिफ्ट भेजने का झांसा देकर एक लड़की और उसके परिवार से 40,00,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया है। सो पहले मामले में पुलिस ने संबंधित खाते में पूरी रकम होल्ड करा ली है। और आपको बता दें कि भाई मालवीय नगर निवासी जो हैं वीना श्रीवास्तव, उनके मुताबिक 9 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नाम आने पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाया, जिसके बाद जांच के नाम पर उपलब्ध रकम RBI के सरकारी खाते में जमा करने को कहा। विश्वास दिलाने पर RBI, SEBI और बाकी एजेंसियों के नाम से कथित दस्तावेज भी भेजे गए। आरोपियों की बातों में आकर वीना ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास के खाते से 14,03,000 रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से 7,30,000 रुपये 300 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इस तरह कुल 21,30,600 रुपये की ठगी हुई। दूसरे मामले में बनगाई बरवार गांव निवासी चांदनी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी की इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति से बातचीत शुरू हुई, इसके बाद दोनों का व्हाट्सएप पर कॉल बात होती रही। सो आरोप ये है कि युवक ने अपने जन्मदिन के बहाने पायल से आधार कार्ड मांगा और विदेश से गिफ्ट भेजने की बात कही। कुछ वक्त बाद कुरियर के नाम पर कॉन्टैक्ट करने वाले व्यक्ति ने गिफ्ट छुड़ाने के लिए 10,000 रुपये मांगे। इसके बाद पार्सल में सोने का हार, हीरे की अंगूठी और $50,000 होने के साथ ही कुरियर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने, फ्लाइट में परेशानी और बाकी वाहनों से लगातार रकम जो है वो मांग की गई। सो पीड़ित का आरोप है कि अलग अलग किश्तों में कुल 40,00,000 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए गए। परिवार का दावा है कि रकम जुटाने के लिए उन्हें अपनी जमा पूंजी और संपत्ति तक बेचनी पड़ी। आरोपियों की तरफ से इसके बाद भी 1,50,000 रुपये की मांग किए जाने की बात कही गई। सो फिलहाल CO सदर ने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने NCRP पोर्टल के जरिए ठगी की पूरी रकम होल्ड करा ली है और न्यायालय से आदेश मिलने के बाद 3 से 4 बैंक वर्किंग डेज में रकम जो है पीड़िता को वापस दिलाने के प्रोसेस पूरा किया जाएगा। दोनों मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। सो बैंक के 2 खाताधारकों के खिलाफ FIR भी हुई है। साइबर ठगी की रकम के लेन देन में इस्तेमाल किए जाने की आशंका में 2 बैंक खाताधारकों के खिलाफ नगर कोतवाली में FIR भी दर्ज हुई है। दोनों बैंक खातों के संबंध में अलग अलग राज्यों में 9-9 शिकायत दर्ज होने की जानकारी सामने आई। पुलिस को आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से मिली रकम के लेन देन और म्यूल अकाउंट के रूप में दिखाया जा रहा था। सो पुलिस के मुताबिक गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और समन्वय प्रतिबिंब और अन्य जो डिजिटल माध्यम है इससे मिली सूचनाओं का रिसर्च किया गया, जिसमें पाया गया कि भाई कुछ ऐसे हैं जिसमें 18 शिकायतें आई हैं। सो फिलहाल इन पर FIR दर्ज कर ली गई है। अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई। जी हाँ, सो वैक्सीन के लिए फिलहाल भटक रहे हैं मरीज और दवाओं की परेशानी बताया है कि अभी लगातार बनी हुई है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दवाओं की कमी से मरीज काफ़ी परेशान है और इस तरह से उनको दवाएं फिलहाल नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो डेंगू के 8 और मरीज मिले हैं और इसका नंबर फिलहाल 40 पहुंच गया है। सो ज़िले में डेंगू के मरीज मिलने के बाद जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया है। 6 दिन के अंदर डेंगू के 8 और मरीज मिलने पर 8 CHC के जो CHOs हैं को अलर्ट किया गया है। ज़िले में डेंगू मरीजों की जो संख्या है बढ़ करके 40 हो गई है। सो CMO ने संबंधित अधीक्षकों को प्रभावित क्षेत्रों में जो है वो कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक परसपुर में डेंगू के 2, नवाबगंज जिटिया थुक झंझरी मनकापुर गोंडा अर्बन और करनैलगंज CHC में 1-1 मरीज मिले हैं। सो मेडिकल कॉलेज समेत अलग अलग हॉस्पिटल्स में इन मरीजों का इलाज किया जा रहा है और छपिया में 1 मरीज में स्क्रब टाइफस और इटियाथो के 1 मरीज में जो है
एक अन्य बीमारी के लक्षण भी मिले हैं। सो आपको बता दें कि दशहरे से क्रिसमस तक चलेगा सफाई अभियान। सो इन त्योहारों में गांव में स्वच्छता बनाए रखने और बीमारियों की रोकथाम के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक विशेष सफाई अभियान चलेगा। प्रभारी DPRO ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस समेत जो 14 त्यौहार हैं इस पर खास तौर पर सतर्कता बरती जाएगी। नदी, तालाब और अमृत सरोवरों के घाटों को साफ सफाई करके यहाँ टीमें लगेंगी और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की भी बात कही गई है। इसके अलावा अब चलते हैं आपकी गोंडा अपडेट्स में अगली अपडेट की तरफ और बताते हैं कि भाई गोंडा से ही अगली अपडेट कौन सी आ रही है। सो आपको हम बता दें कि भाई अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है 400 NHM कर्मी जो है लखनऊ गए हैं और आरोग्य मंदिरों पर जो है फिलहाल ताला लगा है। सो नियमितीकरण और समान कार्य, समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर कल मंडे को जिले के करीब 400 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी लखनऊ में आंदोलन में हिस्सा लेने चले गए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित रही। 290 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद रहे। सुबाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कर्मचारी भी हड़ताल पर शामिल रहे, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण और नियमित टीकाकरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है, हमने आपसे बताया था कि भाई सेंट जेवियर्स स्कूल में वॉलीबॉल और खो खो का जो कॉन्टेस्ट है वो शुरू हुआ है। सो नारायणा और सनबीम की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई है। सो आपको हम बता दें कि भाई सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कल मंडे को 3 दिन के निःशुल्क अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता का शुभारम्भ हुआ। पहले दिन वॉलीबॉल और खो खो का रोमांचक मुकाबले हुए और वॉलीबॉल के पहले मुकाबले में नारायणा पब्लिक स्कूल ने गीता इंटरनेशनल स्कूल को 11-3 से हराया। दूसरे मैच में फातिमा स्कूल ने सेंट जेवियर्स और मालवीय नगर को 11-5 से हराया। तीसरे मुकाबले में सनबीम मिलेनियम ने महर्षि विद्या मंदिर को 11-3 से शिकस्त दे दी है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो आज के होने वाले इवेंट की हो रही है और आपको हम बता दें 7:00 से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से सुआमनकापुर में NCC कैडेट्स का प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बता दें हलधरमऊ ब्लॉक सभागार में सुरक्षा गार्ड की भर्ती का जो प्रक्रिया है वो भी आज आयोजित की जा रही है 10:00 से। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो आपको बता दें अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आपदा प्रभावित 120 किसानों को जो आर्थिक सहायता मिली है उससे लेकर के। सो जिला पंचायत सभागार में कल कृषि निवेश अनुदान और आपदा राहत सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 120 किसानों को आर्थिक सहायता फिलहाल दी गई है। सो फिलहाल ये कुछ ज़रूरी जानकारियां थी जो कि आप तक हमने पहुँचा दी। आई होप कि भाई आपको भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी अपने गोंडा की। एंड चलिए वक्त हो गया है फिलहाल अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलने का और उसके बाद वापस से आते हैं, फिर आपको बहुत सारी बातों से रूबरू कराने वाले हैं आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आपके मॉर्निंग जॉक RJ अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आपको पता है कि भाई कितनी सारी बातें होती हैं जो आपसे कहनी होती है, आपसे करनी होती है। तो बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है आप तक पहुंचाने को, बस आपको रेडी रहना है और इन सारी बातों को सुनते रहना है और ऑफ कोर्स एंजॉय करते रहना है। सो फिलहाल चलिए आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन से लाजवाब से सॉन्ग की तरफ, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो के मॉर्निंग जॉकर जितना आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.3 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और यस, कई सारी बातों का पिटारा अब खुल रहा है वन बाय वन। सो चलिए, फिलहाल आज मंगल है और आपको क्यों ना एक ऐसी ट्रिक बताया जाए जिससे कि आप भी एड फ्री मूवीज़ देख पाए हॉटस्टार पर। जी हाँ, जियो हॉटस्टार पर आप भी बिना ऐड के मूवी अगर देखना चाहते हैं या वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं तो एक ट्रिक बताने वाले हैं जिसको करने के बाद आप उस ऐड को नहीं देखने वाले हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या है। जी हाँ, ऐसा है। और ऐसा कैसे करना है, बस ये बताना है कि ऐसा होगा कैसे। लेकिन चलिए इस गाने को पूरा मुकम्मल तौर पर सुनिए, वापस से आते हैं, आने के बाद बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या करने वाले जिससे आप जियो हॉटस्टार पर पूरी पूरी फिल्म और पूरी पूरी वेब सीरीज बिना एड के देखने वाले हैं। सो लेट्स गो, पहले इस सॉन्ग को सुनते हैं, वापस से आते हैं।

0: भैया मूवी देखने वाले, वेब सीरीज देखने वालों के लिए एक जबरदस्त तरीका बताने वाले हैं आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे नान। जियो हॉटस्टार पर बिना एड के पूरी मूवी देखना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि भाई हम जो हैं वो मूवी देखने के दौरान ऐड देख देख कर परेशान हो जाते हैं, और जैसे ही कोई बेहतरीन सीन आ रहा होता है, वैसे ही जैसे ही कोई क्लाइमेक्स हो रहा होता है, बस उसी वक्त में ऐड आ जाता है, रुकना पड़ जाता है। चलो सब्र तो कर भी लेते हैं एक बार को, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी जो है वो टूट जाती है। बट यही चीज़ अगर हम हॉल में देखते हैं तो हमको एक साथ सारी चीज़ें दिख जाती है। तो चलिए फिलहाल अगर आप घर पे भी देख रहे हैं और एप्लीकेशन से देख रहे हैं, स्पेशली जियो हॉटस्टार से, सो जियो हॉटस्टार पर आप बिना ऐड कैसे पूरी मूवी और कैसे वेब सीरीज देख सकते हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं आपको आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो क्या आप रेडी हैं इस बात को जानने के लिए? इफ यू यस, सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

आप स्क्रीन पर टैप करेंगे वीडियो की टाइमलाइन आपकी खुल जाएगी। अब करना क्या है कि टाइमलाइन को वीडियो के आखिरी हिस्से तक ले जाना है। जैसे वीडियो बढ़ा बढ़ा के देखते हैं ना टाइमलाइन खींच खींच के, सो उस वीडियो को पूरा आखिरी तक ले जाना है खींच करके। अगर ऐड शुरू हो, यानी अगर ऐसा करने से ऐड शुरू होता है, तो बैक बटन दबा करके बाहर आ जाना है। यानी आपको अपनी मनपसंद मूवी या वेब सीरीज प्ले करना है। प्ले करने के बाद एक बार बीच स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप करना है। टैप करने से आपकी उस मूवी की टाइमलाइन आ जाएगी, यानी कितना चल चुकी है, कितना बाकी है। और जैसे ही आप पूरा खींच करके उसको एंड तक ले जाएंगे, उस बीच हो सकता है ऐड आ जाए। जैसे ही ऐड आता है, आपको करना है कि आपको बैक वाला बटन दबाना है अपने फ़ोन का और वापस आ जाना है। फिर क्या है, अब उसी मूवी या फिर शो को फिर से खोलना है, दोबारा से खोलना है। शुरुआत में ऐड आए तो उसे पूरा चलने देना है। यानी एक बार आपने पूरी टाइमलाइन खींची एंड तक और हो सकता कोई ऐड आ गया, तो आप उस ऐड वाले को आप बैक कर लेंगे, बैक साइड आ जाएंगे, तुरंत पीछे आ जाएंगे। जैसे ही आप पीछे आएंगे, दोबारा आप फिर खोलेंगे। अगर मान लीजिए कि शुरुआत में दोबारा खोलते ही कोई ऐड चल रहा है, तो उसको पूरा चलने देना है। इसके बाद देखना है कि वीडियो के बीच में कोई आपका विज्ञापन आ रहा है या नहीं। ध्यान ये देना है कि ये तरीका सभी यूज़र्स के लिए काम करेगा, इसकी फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं है, लेकिन क्या हमेशा काम करेगी ये ट्रिक? सो मुमकिन है कि ये ऐप जो है किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से काम करे। सो जियो हॉटस्टार ने ऐड हटाने का जो ऑफिशियल तरीका है वो नहीं बताया है। ऐप अपडेट होने पर ये ट्रिक काम करना बंद भी कर सकती है। सो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले प्लान में आपको जो है वो विज्ञापन से जुड़े नियम ज़रूर जांच लेने होंगे। सो ये भी आप देख सकते हैं, और इस तरह से आप जो है बिना ऐड के पूरी मूवी और वेब सीरीज़ जो है वो देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पर। सो आई होप कि भाई अब आप समझ ही गए होंगे और आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर ये ऐड हटाने का वेब सीरीज़ या मूवी से क्या तरीका है। एंड यस, कहीं ना कहीं अब आप इस बात को लेकर के भी जाहिर है एक्साइटेड होंगे, और अभी थोड़ी देर में आप चेक भी करने वाले हैं कि लाओ करके देखते हैं। तो ऑफ कोर्स करके देख सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है आपको ऐड फ्री पूरी मूवी और पूरी वेब सीरीज़ मिल जाए। अब भाई ऐड फ्री मिलने का मतलब है प्रीमियम वाले मज़े उठाना। तो चलिए बता दिए हमने, आप प्रीमियम वाले मज़े उठाइए, अगर होता है तो बिल्कुल होगा, नहीं तो गारंटी तो भाई किसी चीज़ की नहीं। लेकिन हाँ, ये वर्क करता है ये ज़रूर है। सो आप करके भी इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। वापस से आने के बाद पिटारे में बहुत कुछ है जो आपके लिए। फिलहाल आप सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, कोड़ा शहर की धड़कन।

अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉकर जिनाना आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। और भाई यही तो है गुंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गुंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो चलिए भाई, अब आपको ले चलते हैं बॉलीवुड की तरफ और आपको बताते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड से क्या खबरें फिलहाल आपके लिए आ रही हैं। सो यस, फिलहाल अभिनेत्री हरलीन सेठी हाल ही में एक वेब सीरीज शक में नज़र आई और कॉमेडी रोल करना चाहती हैं। उसकी ख़ास बातचीत जो है इन्होंने मीडिया से साझा किया है। दरअसल करीब 13 साल पहले हरलीन सेठी ने अपने सफ़र की शुरुआत डांस से की थी। सो कैमरे के पीछे काम करने का अपना इन्होंने सपना देखा, फिर एक्टिंग को अपना रास्ता बनाया और उसके बाद अब मीडिया से बातचीत में हरलीन ने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो साझा किए। सो किरदार को जज नहीं कर सकते, ऐसा कहना है उनको। सो हरलीन कहती हैं कि आप जब किसी किरदार को निभाते हैं तो ये समझना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शक की कहानी में श्रेया के कई फैसले ऐसे हैं जिससे मैं खुद रिलेट नहीं करती, लेकिन मुझे उसके दिमाग में जाना था, मुझे समझना था कि उस वक्त उसके अंदर क्या चल रहा है। आपको उसके साथ रहना पड़ता है, यही मेरे लिए इस किरदार का सबसे दिलचस्प और मुश्किल हिस्सा था। सो चुनने में समझदारी। काम के चुनाव में कहती हैं, जब मैंने शुरुआत की थी मैं सोचती थी कि मेरा रोल कितना लंबा है। मुझे लगता था कि मैं टाइटल रोल करूं या फिर बड़ा किरदार करूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि किरदार कितना बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है वो कितना अच्छा लिखा गया है। अब मैं इन चीज़ों को ज़्यादा देखती हूँ। सो एक्टिंग का प्लान नहीं था। जी हाँ, हरलीन की शुरुआत जो है वो एक्टिंग से नहीं बल्कि डांस की दुनिया में हुई और एक वक्त तक ये कैमरे के पीछे काम करना चाहती थी। सो ये कहती हैं कि मुझे पता था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ करना है, लेकिन पड़ाव एक्टिंग होगा ये नहीं पता था। मैंने एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइजेशन किया था, मुझे लगता था कि मैं डायरेक्टर बनूंगी। मेरा मानना है कि डायरेक्टर ही पूरी प्रक्रिया का कप्तान होता है, लेकिन फिर डांस और विज्ञापन में काम करने के दौरान कैमरे के सामने आने का मौका मिला, धीरे धीरे रास्ता बदल गया। सो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल ने ही सिखाया है। जी हाँ, हरलीन ने कई प्रोजेक्ट्स किए लेकिन ब्रोकन बट ब्यूटीफुल ने उन्हें अलग पहचान दी। ये कहती हैं कि मेरा पहला एक मोनोलॉग हुआ था, इसके बाद विक्रांत मैसी के साथ मेरा सीन था। विक्रांत कॉलेज में मेरे सीनियर थे, उनके सामने ऑडिशन देना था, मेरे लिए थोड़ा नर्वस करने वाला था। वो सीरीज़ मेरे करियर को अलग ही दिशा में ले गई। इसके अलावा काम में बदलाव की तमन्ना भी है। जी हाँ, हरलीन कहती हैं कि मैं कॉमेडी करना चाहती हूँ, कई सीरियस रोल गए हैं, अब कुछ अलग करने का मन है। ज़िंदगी में कुछ लाइटनेस आएगी, म्यूजिकल करना चाहती हूँ, अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ, मैंने थिएटर नहीं किया, आगे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में काम करना चाहती हूँ, ऐसा कहना है हरलीन का। इसके अलावा आपको बता दें कि अपनी एक्स वाइफ की शादी में पादरी बने हैं स्पाइडरमैन। जी हाँ, और ये जो खबर है ये हॉलीवुड की है। दरअसल आपको बता दें कि भाई हॉलीवुड की जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर जेनिफर मेयर और बिजनेसमैन जियोफ ओगुनसलेसी की शादी इन दिनों चर्चा में है। इस शादी में सबसे खास बात ये रही कि जेनिफर के एक्स हस्बैंड और स्पाइडरमैन फेम अभिनेता टॉबी मैगवायर ने ही कपल की शादी की रस्में पूरी कराई है। सो तलाक के बाद जेनिफर ने की है शादी। जेनिफर मेयर और उनके मंगेतर जियोफ ने पिछले हफ्ते ही शादी की है। सो ये शादी जेनिफर और टॉबी के तलाक के कुछ ही हफ्तों के बाद की गई है। शादी से सामने आए वीडियो में टॉबी फॉर्मल कपड़ों में पादरी बनकर के सेरेमनी करते दिखाई पड़ रहे हैं। सो ये सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है कि भाई एक्स हस्बैंड ने ही जो है वो पादरी बनकर के अपनी एक्स वाइफ की शादी कराई है। फिलहाल ये बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों तरफ से अपडेट हमने आपको पहुंचाई है। आई होप कि भाई ये अपडेट्स भी कुछ आपके लिए नया लेकर आई होगी। फिलहाल वक्त है एक बेहतरीन से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलने का और बढ़ने का। सो ऑफ कोर्स हम बढ़ेंगे चलेंगे और बहुत सारे गाने जो हैं वो आज हम आपके साथ में एंजॉय करने वाले हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। तो चलिए भाई, ले चलते हैं आपको अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और सुनाते हैं एक सुपर्ब सा सॉन्ग आपके गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और ये भी बड़ी अपडेट्स आपके लिए, आपके घर के बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सो ऑफ कोर्स अब काउंसलिंग की बात जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। ये काफ़ी अहम अपडेट है, हमने जैसा कि बताया भाई नीट से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए। सो इस अपडेट में हम क्या आपको बताने वाले हैं, इस अपडेट में हम आपको बताने वाले हैं काउंसलिंग से जुड़ी हुई बात। कैसी काउंसलिंग भाई? नीट की हम बात कर रहे हैं, एमबीबीएस की हम बात कर रहे हैं। सो नीट पीजी काउंसलिंग 2026 आ गई है। फिलहाल 58,000 से ज़्यादा सीट्स पर नीट पीजी काउंसलिंग शुरू है और सभी एमबीबीएस वालों को सरकारी कॉलेजेस जो है वो नहीं मिल पाएगा। सो देखिए, इसके बारे में हम आपको पूरी अपडेट अब बता ही देते हैं। सो क्या है अपडेट, आइए चलते हैं आपको पूरी अपडेट की तरफ ले करके चल कर।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भैया अब बताने वाले हैं आपको पूरी अपडेट के बारे में। सो डॉक्टर बनने के बाद मेडिकल फील्ड में आगे की पढ़ाई करने का सपना देख रहे जो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए नीट पीजी काउंसलिंग राउंड वन का प्रोसेस 12 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गया है। सो इसके ज़रिए कैंडिडेट्स जो हैं वो एमडी, एमएस और बाकी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए कॉलेज और ब्रांच चुन सकते हैं। हालांकि हर कैंडिडेट को सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि 58,000 से ज़्यादा सीटों में सिर्फ आधी ही सीटें सरकारी कॉलेजेस की है। सो सरकारी, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीटों में अंतर होने के साथ ही जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके नियम के हिसाब से होता है। सो जो भी नीट पीजी 2026 के एग्ज़ाम में शामिल हुए थे और अभी एडमिशन के लिए देख रहे हैं, तो उनके यहाँ पूरी जानकारी जो है आपको मिल सकती है। सो यस, नीट पीजी काउंसलिंग 2026 से शुरू हो गई है और ये काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ और स्टेट कोटा के बेस पर होती है। राउंड वन के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की विंडो 12 से 21 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। सो आपको बता दें कि कैंडिडेट्स को 12 से 22 अक्टूबर के बीच अपनी पसंद भर लॉक करके कर सकते हैं इसमें, और सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 22 और 23 अक्टूबर को होगा। रिजल्ट 24 अक्टूबर 2026 को घोषित किए जाएंगे। सो जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट की जाएगी तो उन्हें 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच अपने संबंधित कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होगा। MCC 3 नवंबर को उन उम्मीदवारों को डेटा वेरीफाई करेगा जिन्होंने अपने अलॉट किए गए कॉलेजेस में ज्वाइन किया है। सो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC की 29 सितंबर 2026 की सीट मैट्रिक्स की रिपोर्ट के हिसाब से एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए देश में कुल 58,468 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स हैं। इनमें से MD, MS डिप्लोमा और 6 साल के MCH न्यूरो सर्जरी प्रोग्राम की सीट्स जो है वो शामिल है, और ये डेटा देश के सरकारी, निजी और डीम्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को मिला करके है। सो हर MBBS वाले को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ 30,033 ही सीटें हैं। जी हाँ, सो नीट PG 2026 में हर MBBS कैंडिडेट्स को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में शामिल होने वालों के नंबर्स के मुकाबले सीटों का जो नंबर है बहुत कम है, और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट्स की 30,033 सीट्स हैं, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 20,923 और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 7,512 सीट्स हैं। सो इन डेटा से बहुत क्लियर है कि कुल पीजी सीट्स में सरकारी संस्थानों की हिस्सेदारी 51.4 ही प्रतिशत है। सो नीट पीजी 2026 में 265,960 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे, जबकि 273,096 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सो क्वालिफाई के अगर डेटा को देखें तो 263,535 ने एग्ज़ाम पास किया है। अब इसकी तुलना में 58,468 पीजी सीट्स है, तो हर सीट पर लगभग 4 से 5 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला है। सो सभी कैंडिडेट्स हर सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते, और सरकारी कॉलेजेस, निजी संस्थानों और अलग अलग ब्रांच की सीटों के लिए कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। सो अब बात आती है कि भाई AIQ और स्टेट कोटे में कैसे मिलता है पीजी मेडिकल कॉलेज। सो आपको हम बता दें, नीट पीजी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ और राज्य की काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो MCC लेवल पर 50% ऑल इंडिया कोटा का पीजी मेडिकल सीट्स सहित अपने अधिकार क्षेत्र की जो बाकी सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग कराता है। सो राज्य कोटे की सीटों के लिए संबंधित राज्य की काउंसलिंग संस्था प्रक्रिया पूरा कराती है। योग्यता, रिजर्वेशन और डोमिसाइल और सीटों के जो नियम है संबंधित कोटे के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। सो नीट पीजी काउंसलिंग में कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा, वो क्या है। काउंसलिंग के दौरान कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और कॉलेज में रिपोर्टिंग से जुड़े जो निर्देश हैं उसका पालन करना होगा। इसके लिए नीट पीजी स्कोर बोर्ड, MBBS की डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और पहचान पत्र, ये सब तैयार रखने होंगे। कैटेगरी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स अपने सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं। सो ये इस तरह से नीट पीजी की काउंसलिंग को लेकर के ये अपडेट थी जो कि हमने आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि भाई ये अपडेट आप तक पहुंच गई है और ज़रूर आपको भी समझ में आ गया होगा कि भाई जो नीट पीजी वाले हैं उनको अब किस तरह से काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान रखना, और इतने कैंडिडेट्स हैं यानी 2.5 लाख के ऊपर और जो सीट्स हैं वो 53,54,000 के आसपास है,
तो ऑफ कोर्स 4 से 5 कैंडिडेट्स में से हर एक कैंडिडेट ही आगे जा पाएगा। सो चलिए फिलहाल आपको ले चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। वापस से आएंगे आने के बाद बातों का पिटारा मौजूद है आपके मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के संग। फिलहाल एंजॉय करिए सल्लू मियां का ये गाना आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बिलसर रोड, गोंडा।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: अरे पूरा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ।
6: और ये पहली बार कदमों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite आरजे अदनान।

मुझे लगता है जाते जाते आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई आज के दिन क्या क्या हुआ था। सो आपको हम बता दें कि आज ही के दिन कनाडाई अभिनेता विलियम शैटनर का 90 साल की उम्र में ब्लू ओरिजिन के न्यू शिपर्ड यान से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले उस वक्त के सबसे उम्रदराज इंसान बने थे। आज 13 अक्टूबर, ऑफ कोर्स इसको लेकर ही हम बता रहे हैं। सो आज ही के दिन 1792 में व्हाइट हाउस की नींव भी आज ही के दिन रखी गई थी। आज ही के दिन 1903 में बोस्टन अमेरिकन्स ने

पीटर्सबर्ग पायरेट्स को हराकर आधुनिक विश्व सीरीज भी आज ही के दिन जीती थी। और आज ही के दिन, आज के दिन यानी 13 अक्टूबर 1911 की अगर हम बात करें तो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार साहब का जन्म बिहार के भागलपुर में आज ही के दिन हुआ था, है ना। अशोक कुमार साहब को कौन नहीं जानता, और स्पेशली जो पुराने ऑफ कोर्स मूवी लवर्स हैं या जिन्होंने पुरानी मूवीज़ देखी है, अशोक कुमार साहब को देखा है, तो वो तो उनके चार्म से वाबस्ता हैं और उनको ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वर्सेटैलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। सो इसी के साथ में आज यानी 13 अक्टूबर को ही अगर हम सन 2004 की बात करें तो हिंदी फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री निरूपा रॉय का निधन भी आज ही के दिन 13 अक्टूबर सन 2004 को हुआ था। और निरूपा राय ऑफ कोर्स इनको भी आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, कई सारी मूवीज़ में आपने इनको और इनके किरदार को ज़रूर देखा होगा। सो यस, ये कुछ अपडेट्स थी जो कि आज ही के दिन के लिए थी, यानी 13 अक्टूबर को ही लेकर के थी। फिलहाल अब चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, जो कि चैट बॉक्स पर बाद में भी कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। सो यस, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। आर के श्रीवास्तव जी हैं गोंडा यूपी से, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सविता जी को भी बहुत गाने पसंद आए, प्रीति जी को भी, आशु जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने इतना सारा जो है वो फ्लावर भेजा है, इतनी सारी दुआएं भेजी है और इतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगा है, ये बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन। सो चलिए फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब चलने का वक्त आ गया है। और आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा ये हमको ज़रूर आप बता सकते हैं। सो यस, फिलहाल सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, क्योंकि भाई यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और फिलहाल मेरा आपसे विदा लेने का वक्त जो है वो आ गया, बट आप टिके रहिए, बने रहिए अपने 89.6 FM पर।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9286 9876 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी समता गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद एक बार एक और नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें फिर से बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों की माला को पिरोया गया है, जिसमें श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर मधुर आवाज में है और उनका साथ देने आ रही हैं जिमी जी, श्वेता जी और समता। आज का यानी कि नया एपिसोड हमारा गांव की गूंज का विषय है नैहर। नैहर का मतलब होता है कि जब अपनी बेटी जो होती है वो अपनी माँ के घर जाती है। तो आइए हम सभी गीतों के साथ एक बार फिर से आनंद उठाते हैं गांव की गूंज का ये नया एपिसोड। अरे वाह, सब आ गए पर किरण दीदी नहीं आई, वो तो टाइम पर आ जाती है, आज कहाँ रह गई? जिमी जरा फोन लगा के पूछो तो।
1: ठीक है, पूछती हूँ समता जी। अरे रुको रुको, हम जानते हैं किरण दीदी कहाँ है, वह रूठकर नैहर चली गई है।
2: ये नैहर कहाँ है, कौन सी जगह है ये?
0: अरे बुद्धू, नैहर का मतलब मायका अपनी मम्मी का घर होता है।
1: जीजा जी आजकल बाजार में समोसे बहुत खाने लगे हैं, किरण दीदी बस इसी बात से नैहर चली गई है।
2: मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। चलो चलो, हम लोग भी चलते हैं उनके गांव।
0: हाँ हाँ चलो, शीतल ठंडी हवा, पेड़ों की छाव का आनंद लेने, यहाँ तो एसी में भी गर्मी लग रही है।
1: भैया किरण दीदी नहीं है पर उनका लोकगीत।

0: किरण दीदी, कहाँ हो?
1: घर पर तो नहीं है।
0: अरे बगिया से गाने की आवाज आ रही है, उधर चलते हैं।
2: देखो कितने लोग हैं, रेनू भाभी भी आई है दिल्ली से।
3: समता, नेहा बुआ भी आई है, यह तो मुंबई रहती है, वहाँ से इतनी गर्मी में आई है।
0: पहले गाना सुन लेते हैं, फिर बताएंगे कि हम लोग आ गए हैं।

नेहा बुआ, आपको याद है रेनू भाभी हम लोगों के लिए हमरी गुलाबी चुनरिया खूब गाती थी और आज ही कितना गुस्सा होती थी ना, आपको याद है?

0: अरे तुम लोग कब आए और कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
1: अरे हम वो हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं।
2: हम लोग रूठी दीदी को मनाने चले आए।
0: ये है हमारी गांव की गूंज की टीम, समता, श्वेता, जिम्मी। नमस्ते नमस्ते।
3: यहाँ आप मस्ती कर रही हैं और बेचारे जीजा जी सूख कर काटा हुए जा रहे हैं आपकी याद में। किरण दीदी वह गाना पहली पठौनी ससुर मोरे आए सबको सुना दीजिए ना।

0: थैंक यू रेनू भाभी, लो सिकंजी पियो और ताजा खोया खाओ।
1: किरण दीदी, ये सारे बच्चे कितने शौक से शिकंजी पी रहे हैं, जबकि रहते मुंबई और दिल्ली में हैं।
2: डिम्पी, सौम्या, गोलू सब इतने खुश हैं, सुबह सुबह झील में जाकर तैरते हैं, गिल्ली डंडा खेलना सीखा इन्होंने, और आंधी में दौड़ दौड़ कर अमिया बटोरा है। शहरों में तो खुली जगह के लिए हम लोग तरस जाते हैं।
0: नेहा बुआ बता रही है कि दादी को सांस की तकलीफ है, रोज सुबह शाम इनहेलर लेना पड़ता है, पर जब से यहाँ आई है एक बार भी उन्होंने इनहेलर यूज नहीं किया है।
3: बच्चा पार्टी ने हमको भी अमिया खाने को दी, लो तुम लोग भी खा लो। पर प्लीज प्लीज प्लीज किरण दी, बगिया माँ छैया अपार हो गाना सुना दीजिए ना।

0: लो देखो, रूठी दीदी को मनाने जीजा जी भी आ गए, पर किरण दीदी ऐसे थोड़ी ही जाएंगी।
1: अरे क्यों तंग कर रहे हो इनको?
2: लो जी, हम तो आपका साइड ले रहे थे और आप हैं कि आपने पाला ही बदल दिया।
1: शर्त तो माननी पड़ेगी, पर पहले पानी तो पूछ लो। लीजिए, शिकंजी पीजिए।

0: बिना बात आप सॉरी बोलिए जीजा जी को और कहिए दीदी की हर बात मानेंगे हम।
1: किरण दीदी की ननद रानी अरुणी भी आई है भाभी को मनाने।
2: ननद रानी बहुत दिनों बाद आई है। किरण दीदी, ननद जी के लिए कुछ गाना हो जाए।

0: ये क्या खुसुर पुसुर हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है?
1: अरे दीदी कान छोड़िए, बताते हैं। आप सबको गांव घूमने का बहुत मन था ना? अरुणी को कच्ची अमिया खाना था और जीजा जी को तो खेत के मुलायम भुट्टे।
2: हमको गन्ने खाने का और जिमी को बरे। अरे वो देखो दादी बरे ले आई।
3: सॉरी किरण दीदी, हम सब ने मिलकर प्लान बनाया था, पर यहाँ आकर रेनू भाभी और नेहा बुआ सीधे मिल लिए।
2: दीदी गुस्सा मत होइए, तो एक बात बोले, जीजा जी बता रहे थे कि जब आप शादी के बाद आई है ना, तब से दो गाने आप बहुत सुनाती थी, तो प्लीज वो गाने आज सुना दीजिए।

0: जिमी देख देख देख अरुणी, तुम भी आओ, देखो कैसे तालाब में भैंस और बच्चे एक साथ नहा रहे हैं।
1: किरण दीदी अब तो मुस्कुरा दो, अरुणी बोल रही है, जो गाना है वो सुना दीजिए।

0: चलो चलो, रात हो रही है, तुम सबकी तो शहर पहुँच कर खबर लेंगे और आप और अरुणी को तो खाना ही नहीं देंगे। चलिए बताते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

0: गुड आफ्टरनून लिसनर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट संध्या, और हमारे साथ है हमारी सबसे फेवरेट मैम उन्नति मैम।
1: हेलो संध्या, कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: अच्छा मैम, और क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में?
1: लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है, बस लाइफ चली जा रही है।
0: मैम इतना अच्छा बोल कैसे लेते हो, ये वाली टोन मुझे भी सिखा दीजिए।
1: है ये वाली टोन सिखा दीजिए? नहीं, ये वही तानों की टोन है, जब मैं किसी को ताना मारती हूँ ना तो बस ये अपने आप आ जाती है, मुझे भी नहीं पता कैसे आ जाती है।
0: मैम बहुत अच्छा लगता है आपकी, आप जब ऐसे बोलती है मेरा तो मन करता है मैं आपसे इसी मतलब टोन में बात किया करूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हो।
1: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच।
0: यस मैम, मैम आपको पता है क्या है?
1: दिन है?
0: हाँ मैम, दिन
1: की ओके, मंगलवार है आज, मंगलवार।
0: अच्छा
1: भाई, शुक्रवार याद आ रहा था मुझे।
0: नहीं नहीं नहीं यार, ट्यूसडे ही है, सही बात है, मंगलवार।
1: 13 अक्टूबर है?
0: यस मैम, और आज वर्ल्ड फेलियर डे है।
1: है मतलब मेरे जैसे लोगों का दिन भी होता है?
0: यस मैम।
1: क्या बात है यार, प्राउड फील करना चाहिए, मतलब हम जैसे फेलियर्स का भी दिन है।
0: यस मैम, मुझे
1: भी लगा था ये दुनिया सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को जानती है।
0: यस मैम, अब मुझे तो लग रहा था कि मैं तो अकेली हूँ पूरे वर्ल्ड में जो कि फेलियर हूँ, पर आज पता चला नहीं, आप भी उसी में इंक्लूड है मैम।
1: तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मात ना खाई हो।
0: यस मैम,
1: और सक्सेसफुल वही होता है जो फेलियर होता है।
0: यस मैम, इन सक्सेसफुल होने के बाद ही इंसान सक्सेसफुल होता है,
1: है ना?
0: यस मैम,
1: ये फिलॉसफी मैंने भी पढ़ी थी और इसी फिलॉसफी पे मैं चल भी रही थी, फिर याद आया कि ये फिलॉसफी बड़ी मेहनत से बनती है।
0: और पेन भी होता है मैम उसमें।
1: वो तो हो रहा है, वो तो मुझे पता है, जिम करके आई हूँ, चला नहीं जा रहा है मुझसे। इतना पेन हो रहा है, और मुझे ये पता है कि इस पेन के बाद प्रोग्रेस बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन अभी तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ।
0: हाँ मैम, लेकिन बाद में प्रोग्रेस करेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगी ना।
1: हाँ तो उस टाइम करूँगी ना, तो भविष्य किसने देखा है?
0: मैम देखा तो नहीं है, पर हम लोग प्लानिंग तो उसी की क्या करते हैं कि बेल हो।
1: और मैं ऐसी लड़की हूँ जो प्लानिंग नहीं करती, जो आज है वही कर देती हूँ, कल का कल देखा जाएगा।
0: मैम तो आप बहुत रेयर केस में उन मतलब इंसानों में आती हैं जो आज में जीती हैं, हम लोग तो फ्यूचर और पास्ट के चक्कर में रह जाते हैं।
1: नहीं देखो, पास्ट मेरे हाथ में है नहीं, वो पहले ही निकल चुका है, अब उसको सोच कर सिर्फ शर्मिंदगी हो सकती है। और रही बात फ्यूचर की, तो मुझे यही नहीं पता है कि अगले घंटे मैं स्टूडियो के अंदर हूँगी या फिर डोसा कॉर्नर पर, आई डोंट नो, सो मुझे क्या पता।
0: मैम आपका क्या मतलब है, मैं आज आपके साथ शो करूँ या फिर मैं डोसा में ही मिलूं?
1: नहीं, तुमने कहा ना कि फ्यूचर का टेंशन है, तो मुझे फ्यूचर में ये भी नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, हो सकता है मुझे ऑल सडन कोई काम आ जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, तो मैं फ्यूचर की टेंशन लेने ही नहीं वाली ना।
0: यस मैम, लेकिन अब मुझे एक बात याद आ रही है कि हम जो जेंजी हैं, हम इन सक्सेस हो रहे हैं तो फिर हमें डर लग रहा है कि हम लोग का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जो हमारे मतलब ग्रेट साइंटिस्ट लोग थे वो भी कहीं ना कहीं फेल ही हुए हैं।
1: ये बात तो देखो, ये बात सच है।
0: यस मैम,
1: हर कोई, मैंने कहा ना, अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी फेल ज़रूर होता है, मात ज़रूर खाता है, लेकिन जो हार नहीं मानता है वही है जो आगे जाकर कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख कर चले जाता।
0: एब्सोल्युटली राइट मैम, आप बहुत सही कह रही हैं, आई एग्री।
1: अब शायद मेरा भी इतिहास के पन्नों में नाम लिख दिया जाए कहीं तो।
0: यस मैम,
1: सुनहरे अक्षरों में ना सही, काले अक्षरों में ही सही।
0: अरे उसी में लिख जाए ना सुनहरे, वैसे सुनहरे में कहाँ लिखा जाता है, ब्लैक ही में लिखा, लेकिन वो सर मैम मोटे अक्षरों में लिखा जाता है।
1: कोई बात नहीं, हम छोटे अक्षरों में भी आ जाएंगे, हम खुद भी छोटे ही हैं।
0: यस मैम, पर आ जाएं।
1: हाँ आ तो जाएंगे, इतना तो गारंटी है, बस वो न्यूज़पेपर लिखने वाला हमारी पसंद का होना चाहिए, हमारा दोस्त होना चाहिए, तभी आएंगे।
0: यस मैम, हाँ क्योंकि वो न्यूज़पेपर ही वाले, देखो मैम अभी जल्दी में मेरा नाम और फोटो दोनों आई है।
1: ओह माय गॉड, मुझे बताया नहीं।
0: यस मैम, आपने देखा नहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे पोस्ट पड़ी है।
1: अच्छा ओके, वो वाली, मुझे लगा तुमने और कौन सा तीर मार दिया है।
0: नहीं मैम, लाइफ का पहला तीर तो अभी वही मारा है जो आप इंस्टाग्राम पे देख सकती हैं।
1: ओके, तो एक बात है जो तुमने, आई थिंक अब मुझे कंफर्म हो चुकी है, तो तुम इतनी सारी बातें कर रही हो घुमा घुमा के, लाइफ का पहला तीर हमने मार दिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, और तुमने कहा कि आज वर्ल्ड फेलियर डे है।
0: यस मैम,
1: यानी कि अपनी नाकामयाबियों को भी सेलिब्रेट करने का दिन हुआ।
0: यस मैम,
1: बट निगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में।
0: पॉजिटिव वे में मैम ये होता है कि हम लोग एक बार अनसक्सेस होने के बाद वो रास्ता ही चेंज कर लेते हैं या फिर हार मान लेते हैं, पर नहीं, फेलियर होना मस्ट है, पर उसके बाद ये भी होना ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को मतलब स्किप ना करें, आगे बढ़ जाएं और सक्सेस होके तभी आप स्टे लें अपनी लाइफ में।
1: पर इंसान की एक आदत है ना,
0: क्या मैम,
1: कोई एक चीज़ हासिल हो जाए तो दूसरी चीज़ के पीछे पड़ जाता है।
0: यस मैम, ये तो नेचुरल है, हर इंसान के पीछे ये होता ही।
1: हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, राइट?
0: यस मैम,
1: हमें हर वक्त कुछ ना कुछ बेहतर की तलाश रहती है, और कई बार बेहतर के चक्कर में
0: हम बेहतरीन खो देते हैं।
1: ओह माय गॉड, इतना तेज बोला है क्योंकि लगता है बहुत रिलेटेबल हो चुका है।
0: यस मैम।
1: तो फिलहाल आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरशुनती, और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट संध्या, जो की लेकर आई है आज का डे स्पेशल, वर्ल्ड फेलियर डे, यानी कि नाकामयाबियों को भी इंजॉय करने वाला डे, उनको भी मनाने वाला डे, बट इन अ पॉजिटिव मैनर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हम जितनी बार भी नाकामयाब होते हैं हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीखते हैं।
0: यस मैम, हाँ, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम इंजॉय करेंगे।
1: गलतियों से एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस ही आपको आगे ले जाता है, तो अगर आप गलतियाँ नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है।
0: और हाँ, आप गलतियाँ करने के बाद रिग्रेट ना करें, बल्कि
1: क्या होता है रिग्रेट, क्या होता है
0: मतलब पछताए नहीं मैम कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, तो मैं अब क्या करूं।
1: मैं आपसे पूछूं रिग्रेट ना करो तो आप मेरे को हिंदी में बता दो कि पछताओ ना, तो हिंदी तो मेरे को भी पता है।
0: नहीं, मुझे लगा कि आप मुझसे मीनिंग पूछ रही, तो मैंने बताया है।
1: देखा, मैं ऐसे ही लोगों को फंसाती हूँ। फिलहाल के लिए पछताने का मतलब ये था कि आपको ये लाइफ में ये जो फीलिंग है इससे थोड़ा से दूर रहना चाहिए, जो हम दिन भर खुद को बैठ के कोसते रहते हैं कि यार एक काम नहीं हुआ, वो देखो मेरे चाचा का बेटा निकल गया, मेरे मामा का बेटा भी निकल गया, उसकी तो शादी भी हो गई, और यहाँ हम बैठे हमको नौकरी नहीं लगी, 15 साल का बच्चा यहाँ 100 करोड़ की कंपनी खोले बैठा है, और यहाँ 15 रुपया नहीं कमाए हैं आज तक हम।
0: यस मैम,
1: ये होता है ना, घर वाले भी ताना देते हैं, वो देखो तुमसे छोटा था।
0: और मैम, उतनी जितना हम मतलब लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, नहीं मिलता है।
1: रिस्पेक्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं करते हम, रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट मिलती है, और मैं
0: हाँ मतलब अरे क्या कहते हैं,
1: और रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है,
0: अच्छा कमानी पड़ती है।
1: जैसे आप पैसे कमाते हो ऐसे आपको इज्जत भी कमानी पड़ती है, किसी ओहदे पर आ जाने से, उम्र में बड़े हो जाने से आपको इज्जत हमेशा नहीं मिल सकती।
0: यस मैम,
1: इज्जत कमानी पड़ती है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, और ऐसा मुझे लगता है क्योंकि आप देख लीजिएगा, अगर डर बनाकर किसी से आपने रिस्पेक्ट लिया है तो वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो आपका सिर्फ खौफ है, आपको देखकर सामने से तो लोग आपके सामने सर झुका देंगे कि चलो रिस्पेक्ट कर दी, लेकिन आपके जाते ही आपके पीछे आपको ना जाने क्या कुछ बोल देंगे। वहीं पर अगर आपने रिस्पेक्ट अर्न की है तो आपके सामने भी बंदा आपकी तारीफ करता है, और यकीन मानिए आपके पीछे भी आपकी तारीफ करता है।
0: अच्छा मैम, तो जो मेरा आपसे जो भी है, क्या लगता है आपको, वो रिस्पेक्ट है या खौफ है?
1: नहीं, डराया तो मैंने नहीं है आज तक, वो अलग बात है, तुम मुझसे डरती ज़रूर हो।
0: यस मैम, पर वो रिस्पेक्टिव नेचर से।
1: बिल्कुल, तुम्हें पता है कि मैं चीज़ों को टोक दूंगी, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये याद आए।
0: पर मैम, आपके वो जो टोकने का तरीका है वो प्रोफेशनल होता है, बहुत अच्छे से आप बता देती हूँ, मुझे मतलब बुरा भी नहीं लगता, मैं उन चीज़ों को सीख भी लेती हूँ।
1: अच्छा एक बात बताओ, ये हम अपने शो में मेरी तारीफ करने बैठे हैं क्या?
0: नहीं मैम, जब बात रिस्पेक्ट वाली हो रही थी उस बात पे मैंने ये बात कही।
1: ओके, तो थैंक यू सो मच इस मोहब्बत के लिए, और मुझे लगता है कि हम अपने शो के टॉपिक को कवर करना चाहिए, इससे पहले कि लिसनर्स कहें आज तो आरजीनती की तारीफ ही होने वाली है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है।
0: तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बट एक म्यूजिकल ब्रेक लेने के बाद,
1: और क्योंकि मेरा दिमाग सटक चुका है तो मैं आपको सुनाऊंगी सटकली। सटकली सुना है आपने कभी? नहीं सुना, चलिए हम सुनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर से सुनते रहिए सटकली रे सटकली। मिलते हैं इस गाने की उस बात, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: हंसरी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो ज्ञानस्थली लाइफ में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरुषि, और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट संध्या, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: यस मैम, हम अपने गोंडा शहर की धड़कन सुन रहे हैं। मैम, आज हम बात करेंगे फेलियर डे के बारे में, जो कि हमारे सबसे फेमस साइंटिस्ट हैं थॉमस एल्वा एडिसन, जहाँ तक कि ये नाम सबने सुना होगा और इनकी स्टोरी सबको याद होगी। मैम स्टार्टिंग
0: नाम तो मैंने सुना है, देखो स्टोरी हमका नहीं याद है,
1: तो मैं बताती हूँ आपको।
0: ओके,
1: यस मैम। तो मैम, इनकी लाइफ स्टार्टिंग की जो लाइफ थी बहुत पेनफुल रहा और बहुत स्ट्रगलफुल रहा।
0: मेरे जैसी ना।
1: आपकी मैम भी ऐसी थी?
0: लगता तो है यार।
1: अच्छा मैम,
0: आपको तुमको पता नहीं है जब भी ऑटो से आती हूँ कितने झटके लग जाते हैं पेट में, दर्द लगता है।
1: हाँ मैम, वो तो जेन्युइन है, उसमें
0: बैठ के पेनफुल हुई ना मेरी लाइफ फिर।
1: हाँ मैम हुई, बेशक हुई, पर इतना नहीं जितना कि उनकी थी।
0: ये कैसे तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरी लाइफ पेनफुल नहीं है, उनकी ज्यादा पेनफुल थी? हैं ये कौन से मीटर से डिसाइड किया गया है?
1: मैं मेजर नहीं कर पाई।
0: चलिए कोई बात, देखा मेरा काम है लोगों को फंसाना और मैंने आपको भी थोड़ा सा फंसा दिया। हालांकि जी हाँ, ये बात सच है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी। और मैं कहती हूँ भैया, जो स्ट्रगल से नहीं हार मानता है ना, असल में नाम उन्हीं का सामने आता है।
1: यस मैम, थॉमस एल्वा एडिसन का जो जन्म था वो 1847 अमेरिका में हुआ था। उनका मैम बचपन बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगलफुल रहा। उन्हें बचपन में स्कारलेट फीवर हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें सुनने में दिक्कत होने लगी थी। स्कूल में जाने के बाद उनके टीचर उन्हें एडल्ट मतलब मंद बुद्धि बोल के स्कूल से बाहर निकाल दिया था। फिर उनकी माँ ने हार नहीं मानी।
0: ओह, उनको सुनने में दिक्कत हो रही थी इसलिए वो मंद बुद्धि थे। मेरी टीचर तो मुझे ऐसे ही निकाल देती थी, हालांकि मुझे सुनने में भी दिक्कत नहीं थी।
1: लेकिन हाँ मैम, उनके लिए तो ये ज़्यादा ही। चलो हम लोग तो अब थोड़ा समझदार हो गए हैं।
0: किसने कहा तुमको मैं समझदार किस एंगल से दिखती हूँ?
1: मैम हो तो आप,
0: ऐसा सिर्फ दिखावा किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने की कुछ और
1: खाने की कुछ और।
0: तो ये जो मेरा दिखावा है ये सिर्फ समझदारी का है, खाने वाले दांत तो रहने ही दो, उसके बारे में अंदर ही रखते हैं बात।
1: तो मैम उनके टीचर उन्हें स्कूल से निकाल दिया और उसके साथ में एक टोन भी मार दी कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है।
0: ये टोन तो मुझे भी मिली थी। हमारी मैम कहती थी बेटा तुम इतना बतियाती हो, बतियाने से कुछ नहीं होगा। अब मैं मैम से मिलना चाहती हूँ कि मैम देखो बतियाने से पैसा मिलता है।
1: यस मैम। तो मैम ये जब उनकी माँ ने कोई मतलब हार नहीं मानी, उन्होंने उसको घर पे ही पढ़ाया, और वो बच्चा यानी ये हमारे थॉमस एडिसन जी जो कि बहुत छोटे थे, उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में अखबार बेचना ट्रेन में और टॉफियां बेचना स्टार्ट कर दी। मैम
0: हम 12 साल को मैं अपनी मम्मी से बहुत दूर रखती हूँ, तुम्हें पता है?
1: यस मैम। क्यों?
0: क्योंकि ताने पड़ जाते हैं।
1: यस मैम।
0: मम्मी कहती है कि देखो तुमको दुनिया भर की सुख सुविधा दिया जा रहा है फिर भी तुमसे कुछ नहीं हो रहा। वो बच्चा देखो उसके पास कुछ नहीं था, वो अखबार बेच के पढ़ रहा था फिर भी साइंटिस्ट बन गया।
1: फिर भी साइंटिस्ट। मैम हम लोग की जनरेशन में तो लोग इतना अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, चॉकलेट हम लोग खाते हैं, बताओ 12 साल की उम्र में वो न्यूज़पेपर और टॉफियां बेचते थे।
0: तुमको चॉकलेट नहीं याद दिलानी चाहिए थी। अगर मैं वो न्यूज़पेपर और टॉफी बेच रही होती ना लोगों के पास, न्यूज़पेपर पहुंचता टॉफी तो मेरे अंदर होती सारी।
1: यस मैम। और फिर मैम इतना ही नहीं, उन्होंने बाद में ट्रेन में मतलब वो टॉफियां बेचते थे, अखबार बेचते थे, और फिर ट्रेन के एक डिब्बे में उन्होंने अपना लैब बना लिया था, उसमें जो कि वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो वाला जो लैब बनाए थे वो डिब्बा पता नहीं कैसे उसमें आग लग गई और जल गया। फिर इतना नहीं, उनको जॉब से भी मतलब निकाल दिया गया। और दूसरी बात, वहाँ का जो मतलब स्टेशन का गार्ड था उसने एडिसन जी के कान के साइड में एक थप्पड़ ऐसे मार दिया, वो ऑलरेडी थोड़ा कम सुनते थे और फिर उसकी वजह से वो और कम सुनने लगे। मैम फिर इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, एट द इन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने मतलब वो एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने बल्ब को एक नहीं, 1,000 नहीं, 10,000 बार ट्राई किया बनाने का, पर नहीं बना। एट द इन 1879 में उन्होंने मतलब दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियल बल्ब बना लिया, जो कि आप देख रही हैं हम लोग के सामने है।
0: यही वाला था क्या?
1: ये तो मैम तो ये एलईडी है, पर हाँ कहीं वो एलो वाली लाइट अभी भी लगी।
0: नहीं, तुमने मुझसे कहा कि ये दुनिया का पहला बल्ब है, मैं ऊपर देखने लगी यही वाला था क्या?
1: नहीं मैम, जो हम लोग के नीचे वहाँ लगा है स्पोर्ट रूम के साइड में,
0: वही वाला था क्या?
1: हाँ वो वही वाला बल्ब है।
0: मैं सर से पूछूंगी जरूर कहाँ से लाए वो बल्ब, क्योंकि हमको नहीं मिला।
1: हाँ, तो फिर मतलब उन्होंने ये मतलब सक्सेस हासिल कर ली, और उन्होंने एक बात ये भी बोली कि मैं फेल नहीं हुआ है, बस मैंने वो तरीके ढूंढ लिए हैं जिनके बल जिनसे जल मतलब बल बन सकता है।
0: ओके, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि 99 बार वो फेल नहीं हुए हैं, उनको हर बार एक नया तरीका उन्होंने सीखा है।
1: यस मैम,
0: हर एक्सपेरिमेंट,
1: और 100 बार में उन्होंने एक बल बना के हम लोग के सामने रख ही दिया, जो कि हम लोग अभी भी यूज करते हैं। अब तो खैर मैम नई नई टेक्नोलॉजी है तो उसके हिसाब से सब बन रहा है, एलईडी।
0: क्या होता है, बल्ब की शुरुआत तो वहीं से। अब जस्ट इमेजिन अगर नहीं वो करते,
1: ओरिजिन तो उन्होंने ही किया,
0: तो क्या हम आज भी मोमबत्ती लेके घूम रहे होते
1: बेसिकली? हाँ मैम, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हम अगर नहीं, लेकिन हाँ कोई
0: अगर
1: कोई
0: मैं
1: तो
0: रात, जिस तरह से मैं रातों में जगह करती हूँ ना 2 बजे तक, और मैं मोमबत्ती लेके घूम रही होती, मेरे घर में कोई चोर घुसता पहले ही भाग जाता, कहता ये लड़की नहीं है दोस्त,
1: इसमें कोई आत्मा जरूर है।
0: बिल्कुल, फिलहाल के लिए ये तो थी कहानी एडिसन की।
1: और मैम उन्होंने फोटोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा, रिकॉर्डर जैसे 193 पेटेंट अपने नाम कर लिए।
0: वाओ,
1: दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेट, मतलब मतलब वो क्या बोलते हैं कि उन्हें किन शब्दों में बोलूं कि वो एकदम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। मैम मुझे कुछ आवाज आई है,
0: लगता है यह आत्मा ही है।
1: मैम आत्मा? मैम आज मैं,
0: आपने एडिसन की बात की, हो सकता है एडिसन आपसे इंप्रेस हो गए हों और वो यहाँ चले आए हैं आपको शाबाशी देने के लिए। तो जब तक इनको एडिसन थोड़ी सी ज्यादा प्राउड फील कराते हैं, इनकी पीठ थपथपाते हैं, तब तक क्यों ना हम गाने सुन लेते हैं।
1: yes,
0: हमारा तो काम है नहीं एडिसन के बीच में और संध्या जी के बीच में, तो आइए हम इंजॉय करते हैं आतिफ असलम की आवाज में जिंदगी आ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भी आ ही रही हूं, बस इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पास। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी भैया, तो ये बात बिल्कुल सही है जो आप एंजॉय कर रहे थे, योलो। और इसमें सीधा सा एक ही मकसद था कि जिंदगी एक दफा मिलती है, हालांकि आपको जिंदगी रोज मिलती है, नजरिए की बात है, और जिंदगी को जीना आपकी जिम्मेदारी होती है। फिलहाल के लिए मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आशुनती, और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट संध्या। प्रोग्राम चल रहा है ज्ञानस्त्री लाइव ऑनली ऑन रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड फेलियर डे, जिसका एक ही मकसद होता है और वो ये है कि समाज में जो असफलता है, जिसको लेकर इतना ज़्यादा डर है, शर्म है, उसको ख़त्म करना। क्योंकि भैया हमें हर चीज़ से डर लगता है, हम हर दो मिनट में घबरा जाते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या करेंगे। सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और पता है सीढ़ियाँ लंबी हैं और हमको लगता है कि नीचे गिर गए तो क्या करेंगे। हमें कभी सोचते ही नहीं कि हम ऊपर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, हम बस यही सोचते हैं यार फेल हो गए तो चार लोग क्या कहेंगे। ये चार लोगों का डर जो मेरे अंदर बसा हुआ है, जो लोगों के अंदर बसा हुआ है, ये कभी निकल ही नहीं रहा। इवन हमको भी पता है कि चार लोग दो घंटे के अंदर बदल जाते हैं। अभी आपके पास कुछ नहीं है तो ये आपको ताने देते हैं, और जैसे ही आपके कुछ हो जाता है, आपके ताने गाने में बदल जाते हैं और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ तारीफें मिलती हैं। जो चार लोग आपको इतना डरा कर रखते हैं, वही चार लोग आपकी सफलता से डरते हैं। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की है संध्या, पता है क्या?
1: क्या मैम?
0: हम लोग जितने भी लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, उसमें मेनली तुम तीन चार कैटेगरीज को देख सकते हो। जो खुद सक्सेसफुल है वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं।
1: यस मैम,
0: है ना। जो खुद स्पोर्ट्समैन है, जो जिम जाता है, जो डाइट फॉलो करता है, वो भी दूसरों से कहेगा कि तुम भी डाइट फॉलो करो, तुम भी जिम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। पहले दिन आप जिम में जाओगे, हो सकता है कोई आपको देखकर हंसे, लेकिन जो आपको देख के हंसेगा उसकी खुद की बॉडी नहीं होगी। और जो इस इंसान के पास सच में बॉडी वगैरह होगी, जिसने सालों तक मेहनत की है, वो आप पे कभी हंसता ही नहीं है।
1: yes,
0: वो आपको आके सिखाता है कि नहीं आपका पोस्चर गलत है, आप ऐसे नहीं ऐसे उठाइए, ये नहीं ये कीजिए। एक टीचर जिसके सामने एक बच्चा आता है जिसे कुछ भी नहीं आता है ना, वो उस टीचर को, उस टीचर का काम होता है उस बच्चे को सिखाना, और वो सिखाते कि बेटा आपने गलत बोला है। बट वहीं पर एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होती है जिसको कुछ भी नहीं आता और वो आप पे करके हंसने लग जाता है।
1: यस मैम, हाँ जिसे मैंने भी नोटिस किया है कि जिन्हें नहीं आता वो ज़्यादा ही दूसरों पे एक तो कमेंट करते हंसते हैं।
0: हाँ, और कितना भी बड़ा बिजनेसमैन देख लो, अगर उसके पास सच में उसने बिजनेस क्रिएट किया है, अपने बलबूते पे किया है, तो वो आपको टिप्स देंगे।
1: yes,
0: आपको बताएंगे कि आप मार्केट में कैसे अपनी वैल्यूज बढ़ा सकते हो। एक एक्टर आपको बताएगा कि आप एक्टिंग कैसे कर सकते हो। एक आरजे आपको बताएगा आप बोल कैसे सकते हो। यानी कि जिसके पास कोई ना कोई चीज़ है जिस पर वो थोड़े से प्राउड फील करते हैं, या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है उस पर वो प्राउड फील करते हैं, तो वो आप पे कभी हंसते नहीं हैं। आपके कामों को देखकर हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं। जहां आप गलत हो वहां आपको सही करने की कोशिश करते हैं। बट जितने भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी ज़िंदगी में ख़ास कुछ भी नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी को बस काट रहे हैं, लाइक घर में दो वक्त की रोटी और फिर सोना, फिर सीरियल्स, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास काम होता है कि आप कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, आपको किसने पिक किया, आपने क्या कपड़े पहने थे, कितना लाउड मेकअप किया, आपके बाल कैसे थे, आपकी स्मेल कैसी थी, आप हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। आप क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, आपने अपनी ज़िंदगी में UPSC करने का सपना था, ओ माई गॉड UPSC, हाँ तुम्हारे ख़ानदान में भी कोई बना है, उनके डायलॉग्स फिर इस तरह से होते हैं।
1: यस मैम,
0: यानी कि सक्सेसफुल इंसान कभी भी आपको अनसक्सेसफुल होने के लिए ताने नहीं देता, और अनसक्सेसफुल इंसान कभी आपके सक्सेसफुल होने से पहले तक आपकी तारीफ नहीं करता।
1: यस मैम,
0: तो इसीलिए आज का जो ये खास दिन है, बस इसी डर को निकालना है कि आपके अंदर जो ये खौफ बैठा हुआ है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे।
1: और मैम कहेंगे भी तो क्या ही कहेंगे।
0: मैं कह तो रही हूँ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सुनना ही नहीं ना मुझे, वो तुम कहते रहो मैं सुनूंगी ही नहीं।
1: और फिर इतना तो होता है कि कोई सामने से आके कुछ बोलेगा नहीं। हाँ, अगर दूसरों की बातों पे यकीन ना करें तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि हाँ आई डोंट केयर, कोई कुछ भी कहे, छोड़ो जाने दो।
0: मैं तो अपने कानों में एयरफोन लगा कर रखती हूँ। आजकल हमारे पास ब्लूटूथ कनेक्शन है, हेडफोन्स है, ईयरफोन्स है, वायर वाले ईयरफोन्स है, और सबसे अच्छा बात इनमें पता क्या है, इनको लगा लो आप ही सुन सकते हो इसके अंदर क्या बज रहा है। जैसे ही कोई आपसे बहुत ज़्यादा आकर आपको ताने मारने लगे, आप बस वॉल्यूम बढ़ा दो, उसकी बात ही सुनाई नहीं पड़ती है देन।
1: यस मैम, एकदम सही कह रही हैं।
0: और क्योंकि मैं हमेशा ऑल द टाइम अपने हेडफोन्स पहन के रखती हूँ, तो मुझसे कोई बात भी नहीं करता।
1: मैम लेकिन जो आपने ये बात कही कि हाँ ज़्यादा सक्सेसफुल लोग वो आपको मोटिवेट करते हैं या फिर आगे बढ़ने के लिए अग्रेसिव करते हैं, एकदम सही। और लेकिन मैम जिसके पास मतलब कहते हैं कि नहीं कि कम नॉलेज होती है मैम, वो ज़्यादा ही ज्ञान देते हैं फालतू का।
0: हाँ जी, और ये बात बिल्कुल सच है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो तो बस आप उस पर लग जाओ, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, या ये खौफ भी निकाल दो कि मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या करूँगा। फेल हो जाऊँगा तो दोबारा ट्राई करना।
1: की बात से मुझे एक स्टोरी और याद आ गई
0: है, मेरे पास भी एक कहानी है,
1: तो मैम आप ही बता दीजिए।
0: मेरे पास कहानी थी एक ऐसे साइंटिस्ट की जिनको दवाई तो बनानी थी डायबिटिक के लिए, बट वो दवाई डायबिटीज की ना बनकर किसी और चीज की बन गई।
1: किसकी मैम?
0: अब मैं तुम्हें बताती हूँ हुआ क्या था। एक्चुअल बात है 1950 की 13 अक्टूबर के दिन, जो कि आज हम मना रहे हैं फेलियर डे, तो इसी के अंदर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो कि हमारे डॉक्टर रॉबर्ट नोबल की है या डॉक्टर चार्ल्स बियर की है। ये दो ऐसे शख्स हैं, ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सदाबहार के पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और क्योंकि हम जानते हैं कि सदाबहार का पौधा डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके पत्ते, उसके बीज, उसके फूल, उसकी जड़ें, उसके स्टेम, हर एक चीज डायबिटीज में इस्तेमाल की जाती है।
1: मतलब रूट से लेके मतलब टॉप तक की पूरा प्लांट ही हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है,
0: बहुत अच्छा होता है। इस पर रिसर्च कर रहे थे। मजेदार बात यह है कि वो रिसर्च तो कर रहे थे लेकर के डायबिटीज के ऊपर, उन्होंने एक चूहे के अंदर जब इसके एक्सट्रैक्ट को यानी कि इसकी दवाइयों को मिला करके चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, तब उन्होंने देखा कि चूहा बस कुछ दिनों में मर गया। अब वो घबरा चुके थे कि भैया ये कैसे हो गया, हमने तो एक्सपेरिमेंट किया था यार कि लोगों की भलाई हो जाएगी, या तो चूहा ही मर गया, लोगों को देंगे तो लोगों के साथ क्या होगा,
1: ऑब्वियसली वो भी मर जाएंगे,
0: है ना, उनके अंदर ही डर बैठ चुका था। अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट कुछ दिन के लिए रोक दिया गया, यहाँ पे फेलियर था उनके पास कि यहीं से ये एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए रुक सकता था, बट पता नहीं क्यों, लेकिन इन दोनों के दिमाग में एक और खुरापात था। इन्होंने सोचा पता करें कि आफ्टर ऑल ये चूहा मरा तो मरा क्यों। जब माइक्रोस्कोप में चेक किया गया, एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया गया, तो पता चला कि इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं हो रहे थे। अब क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और वो डिवाइड होती है तब हम जाकर कहीं अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं, तो हमारी आरबीसी है, हमारी डब्ल्यूबीसी है, सब डिवाइड होती रहती है। वहां पर हमारी जो WBC है वो रुक चुकी थी, वो डिवाइड नहीं हो रही थी
1: हमारी,
0: हाँ यानी कि उस चूहे
1: अच्छा,
0: की जो
1: चूहे की, हाँ
0: वो नहीं डिवाइड हो रही थी। और यहीं पर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यही चीज तो हमें कैंसर के लिए भी चाहिए, अगर ये दवा WBC को रोक सकती है तो ये दवा कैंसर के जो सेल्स डिवाइड होते हैं, इतनी तेजी से बढ़ते हैं, इतनी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एक्चुअली,
1: उसे भी
0: उनको भी तो रोक सकती है। और वहीं से बना हमारे दुनिया का सबसे फेमस और सबसे कारगर दवाई जो कि सदाबहार के पौधे से बनी है, जिसको आज हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं।
1: यस मैम, वो भी कैंसर के पेशेंट के लिए
0: बनाया तो था उसको डायबिटिक के लिए,
1: लेकिन बन गई
0: वो बन गई एक ऐसी डेडली बीमारी के लिए जिसके पास शायद कोई इलाज ही नहीं था।
1: यस मैम,
0: अगर वो उस दिन कैंसर के लिए ऐसा सोच लेते कि चूहा मर गया इसको यहीं छोड़ दो आगे करना ही नहीं है, तो आज शायद हमारे पास कैंसर की दवा होती भी नहीं, आज भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते यार कि कैंसर की दवा बनेगी कैसे।
1: यस मैम,
0: तो इसीलिए आपकी छोटी सी गलती हो सकता है आपके लिए गलती हो,
1: बट बड़ा बना
0: और पर भी अच्छा हो सकता है।
1: यस मैम,

0: है। और ये बात मैंने मेरी नानी से सीखी थी, वो कहती थी तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ और सिर्फ खुद तुम्हारे।
1: यस मैम।
0: अगर तुमने मान लिया है, तुमने ठान लिया, तुम सोचते हो कि तुम हार चुके हो, देन डेफिनेटली तुम हार चुके हो।
1: यस मैम।
0: और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीतोगे, फिर पूरी दुनिया अगर एक कोने में खड़ी होकर भी चिल्लाएगी ना कि तुम हार चुके हो,
1: यस मैम,
0: फिर भी तुम नहीं हारते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो सेल्फ है वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। और कभी कभार इसी सक्सेसफुल दुनिया के बीच में ना हमारा एक इमोशन होता है जिसको हम बहुत ही गंदे वे में बोलते हैं कि तुम्हारा ईगो बहुत है। आपको पता है ये ईगो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये ऐसी जगह पर आ गई है जो आपके सपनों से जुड़ी हुई है, तो यकीन मानिए आपके कदम तब तक नहीं रुकते जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। ईगो आपको रुकने नहीं देता है कहीं।
1: यस मैम।
0: तो इमोशंस भी बहुत ज़रूरी है, ईगो भी बहुत ज़रूरी है, फेल होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप सीख सको कि हम फेल हुए तो हुए कहाँ।
1: लेकिन मैम वो फेल होने या फेलियर को उसे अपना वीकनेस ना मान के उसको अपना स्ट्रेंथ मान के फिर इंसान अगर आगे चलता है तो फिर बहुत ज़्यादा उसके लिए अच्छा होता है।
0: तो अभी पता चला कि फेलियर क्यों ज़रूरी है और इससे क्या कुछ मिलता है।
1: यस मैम। अब हमें डर, अब मुझे तो डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अभी डर रही थी, अब नहीं डर लगी क्योंकि हाँ उन लोग के साथ में ऐसा हुआ है और फिर उन लोगों ने इतना अच्छा अच्छा काम किया है तो फिर हम लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ।
0: बिल्कुल। और हर दिन आपको एक नया मौका मिलता है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक बार ही मिलती, ना भाई, ज़िंदगी हर दिन मिलती है, हर सुबह मिलती है। वो आपका नज़रिया है कि आप हर सुबह को किस तरह से अपने पास बुलाते हैं।
1: यस मैम।
0: फिलहाल हम बुलाते हैं उदित नारायण की आवाज़ को क्योंकि हम एंजॉय करने जा रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म से अनदेखी सी अनजानी सी। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: आई लव दिस मोमेंट, जब भी किसी गाने के बीच में किसी और गाने की धुन आती है ना भाई, मैं अपना दिल निकाल के दे देती हूँ उस गाने को तुरंत ही.
1: यस मैम.
0: फिलहाल के लिए आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव, और आज हमने सेलिब्रेट किया है वर्ड फेलियर. ठीक, कुछ कहानियाँ जानी हैं, कुछ किस्से जाने हैं, कुछ मैंने अपने थॉट्स बताए हैं, और अब आपकी बारी है. आप अपने थॉट्स बताइए चैट बॉक्स के अंदर. हमारे साथ अरविंद जी जुड़ गए हैं, और आपने लिखा है, क्या लिखा है आपने? लिखा है आप वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ आरजी मैम. जी हाँ. इसके बाद लिखा है कि हम हमेशा उन्नति मैम की गलतियां को पकड़ने आते हैं. कहे भैया कौन है
1: बी अलर्ट मैम,
0: कौन से जमाने की दुश्मनी हमने की है आपसे? हम तो कुछ करते भी नहीं हैं. अच्छा ओके, शो में कुछ लिखना नहीं होता, बेशक लिखना होता है, वो अलग बात होती है कि हम इस शो के आखिरी में आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं. आसिफ अंसारी जी फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना से जुड़ गए हैं. गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच, एंड आपका भी वेलकम करते हैं ज्ञानस्थली लाइव में. ओके, तो आपके बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, और ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं सोचती हूँ अरविंद जी, आप जब भी आते हैं बहुत सारी हंसी लेकर आते हैं, आपके आने की वजह से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो आपका वेलकम करते हैं. फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है विदा लेने का, तो क्या ख्याल है संध्या जी, चलना चाहेंगी आप?
1: यस मैम.
0: डोसा नहीं खिलाऊंगी, लेकिन
1: खिला दीजिए.
0: मैं डोसा खिलाऊंगी.
1: अच्छा डोसा,
0: हाँ, क्योंकि हम हमेशा से गलत बोलते आए हैं ना, डोसा डोसा. साउथ इंडियन वालों को पता है कि डोसा नहीं होता, दिस इज डोसा होता.
1: देखो हम लोग एक नॉलेज की बात और बता दी इन लोग को
0: है.
1: हाँ, हमारे लिसनर भी जान के नहीं, डोसा नहीं, वो डोसा होता.
0: हमारे लिसनर पहले से जानते हैं, वो अलग बात है कि हमने गूगल वालों को सुन सुन के ना डोसा डोसा करना शुरू कर दिया, अदरवाइज वो डोसा ही था. तो फिलहाल के लिए
1: मैम मुझे बहुत पसंद है, सच में मुझे बहुत याद आ रहा है.
0: एंड अरविंद जी कह रहे आओ खिला देता हूँ, पैसे आप दे देना.
1: तो मुझे अगर पैसे देना है तो मुझसे खुद, मैं खुद से खा लूंगी.
0: बनाना आता है?
1: नहीं, खरीद के
0: अरविंद जी बना कर देते हैं फिर, और क्या.
1: हाँ ये सही है, अगर वो बना के देंगे तो मैं पैसे देने के लिए एग्री करूंगी.
0: ओह माय गॉड. फिलहाल के लिए आप बनवाइए, वो बनाते हैं, हम चलते हैं क्योंकि हमको कहीं और भी जाने का है. तो फिलहाल के लिए आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात होगी मेरी आपसे 3 से 4 कॉल अच्छी उन गुना में. आपकी अपनी फरमाइशों को लेकर के तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. एंड आसिफ जी ने लिखा है डोसा होता है. हाँ जी, लिखा वो डोसा जाता है, पढ़ा वो डोसा जाता है, और ये चीज़ हमने साउथ इंडिया में जाकर सीखी थी. एंड इसी के साथ आप इंजॉय करते रहिए, मैं आपको छोड़कर आती हूँ अजर फिल्म से बहुत ही प्यारे नगमे के साथ. प्रीतम का संगीत है, और आवाज किसकी है ये तो आप बताएंगे चैट बॉक्स में. इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं 3 से 4 कॉल ट्यून गोना में आपकी फरमाइशों के साथ.
1: बाय लिसनर्स.

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने ही रेडियो स्टेशन को, यानी रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और आपका अपना प्यारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। आज का एपिसोड थोड़ा खास है। हम अपनी इस श्रृंखला के पिछले बहुत सारे एपिसोड में हम बात कर चुके हैं वेक्टर बॉर्न डिसीज की, कभी फाइलेरिया की, कभी काला आजार की, कभी मलेरिया की, तो कभी डेंगू की, पर आज हम बात करेंगे एक अहम वेक्टर जनित रोग की, एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम या जापानी दिमागी बुखार के बारे में। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरजे आकांक्षा, और हम आज स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारे साथ में एक बहुत ही खास सलाहकार और इलाके के सभी के मित्र हमारे साथ में हैं, जिनका नाम है सेहतिया जी। सेहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेहतिया भैया, आज की बात शुरू करने से पहले मैं एक घटना याद कर रही हूँ। हमारे ही गांव के पास 6 साल की बिटिया चिंगी की बारिश के बाद बगल के खेत में पानी भर गया और चिंगी वहीं खेल रही थी। शाम तक उसे तेज बुखार चढ़ गया और रात में अचानक दौरा पड़ने लगा।
3: हाँ अर्जी आकांक्षा जी, वह मामला AES या जापानी एनसेफेलाइटिस का ही था। परिवार को लगा बस थकान होगी, किसी ने झाड़ फूक की सलाह दी और अस्पताल पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी है, ये इंतजार नहीं करती।
2: और दुख की बात ये है कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं है, बरसात के मौसम में कई बच्चे इसी तरह जोखिम में आ जाते हैं, बस इसलिए कि लोग समय पर पहचान नहीं पाते।
3: बिल्कुल, आज फिर कुछ काम की बातें करेंगे। आजकल मौसम ही ऐसा है कि सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए आज हमें सुनने वालों को बताना बहुत जरूरी है कि जापानी बुखार या AES क्या है, कैसे फैलता है, और गांव समाज मिलकर इसे कैसे रोक सकते हैं ताकि एक भी बच्चा चिंगी जैसी स्थिति में ना पहुंचे।
2: बिल्कुल भैया, आजकल गांव, बाजार, खेत खलिहान, हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, AES और जापानी बुखार। लोग डर भी रहे हैं, उलझन में भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे श्रोताओं को सही और सरल भाषा में पूरा ज्ञान दे दिया जाए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, AES और जापानी बुखार आखिर होता क्या है?
3: देखिए आरजी आकांक्षा जी, AES का पूरा नाम है अक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम, यानी अचानक होने वाली तेज दिमाग की सूजन वाली बीमारी, और JE जापानीज एनसेफेलाइटिस यानी जापानी दिमागी बुखार AES का ही एक गंभीर रूप है।
2: यानी AES बड़ा नाम है और जापानी एनसेफेलाइटिस इसका एक मुख्य कारण है।
3: बिल्कुल सही, जैसे बरसात में कई तरह के बाढ़ आते हैं पर उनमें से एक बहुत खतरनाक होता है, उसी तरह AES में कई वजह होती हैं, पर JE उनमें भारी बीमारी है।
2: अब सबसे बड़ा सवाल ये है भैया कि लोग कह रहे हैं कि ये हवा से फैलता है, कोई कहता है फल से फैलता है, तो कोई कहता है मच्छर से फैलता है, आखिर में सच्चाई क्या है भैया?
3: और जी आकांक्षा जी, जापानी इंसेफेलाइटिस यानी JE का फैलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं होता, इसका कारण इसका अपना पर्यावरणीय चक्र है। इस वायरस को बढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक एम्पलीफाइंग होस्ट जैसे सुअर और कुछ पक्षी, बगुला, सारस वगैरह, और दूसरा क्यूलेक्टस मच्छर जो इन जानवरों से वायरस लेकर इंसानों तक पहुंचाता है। इस वजह से जेई ज्यादातर उन इलाकों में मिलता है जहां धान की खेती ज्यादा होती है, खेतों में पानी भरा रहता है और बरसात के बाद मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। यानी ये बीमारी ना पूरे देश में फैलती है, ना हर मौसम में, या खासकर धान के खेतों वाले इलाकों और बरसात के बाद सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और ये बीमारी क्यूलेस मच्छर की वजह से फैलता है।
2: अरे सेहतिया भैया, थोड़ी और आसान भाषा में समझाइए हमें।
3: अरे बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब है कि जेई एक वायरल बीमारी है और वेक्टर यानी मच्छरों के जरिए फैलती है, खासकर क्यूलेक्स मच्छर। ये वही मच्छर होते हैं जो भारी गंदे पानी, खेतों के किनारे जमा पानी, स्वरों के पास तथा जंगल जंगल के इलाकों में ज्यादा मिलते हैं।
2: मतलब मच्छर ही इसका मुख्य कारण है।
3: हाँ, और बात यही नहीं खत्म होती। ये वायरस पशुओं, खासकर सुअर और पक्षियों में चक्कर लगाता है और मच्छर उसे इंसानों के शरीर तक पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं जूनोटिक चक्र।
2: अच्छा भैया, और AES ये क्या है?
3: AES कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, गंदा पानी, पोषण की कमी, लीची खाने से भी, अगर बच्चा भूखा हो। लेकिन जेई इसका सबसे खतरनाक रूप है।
2: अरे भैया, आपने तो हमारे लीची खाने पे भी प्रतिबंध लगा दिया, वो तो हमारा सबसे पसंदीदा फल था। चलिए कोई बात नहीं, अब लोगों को सबसे ज्यादा यही जानना है कि कौन से लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए।
3: बहुत जरूरी सवाल। AES या JE में लक्षण अचानक आते हैं। PDF में जो बताया गया है वो बिल्कुल सही है। मुख्य लक्षण: तेज और अचानक बुखार आ जाना, उलझन, बच्चा बार बार रो रहा हो, नींद ज्यादा आना या उल्टा लगातार रोना, दौरा पड़ना, बच्चा होश में ना रहे, गर्दन अकड़ना, चलने फिरने में दिक्कत, ये सारे इसके लक्षण होते हैं।
2: मतलब ये है कि लक्षण ये है कि बहुत तेजी से स्वास्थ्य खराब होता जाता है।
3: जी आकांक्षा जी, AES समय बर्बाद नहीं करता, इसलिए हमें भी नहीं करना चाहिए।
2: अच्छा सिहतिया भैया, अगर किसी को लक्षण दिख जाए तो घर वाले क्या करें?
3: कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आसान भाषा में बताता हूँ। पहला, तुरंत अस्पताल ले जाएं, समय न गवाएं, घरेलू इलाज, झाड़ फूक, देसी दवा में समय बर्बाद न करें। दूसरा, रास्ते में मरीज को सुरक्षित रखें, बच्चा बेहोश हो तो कुछ भी मुंह में ना दे, ना पानी ना दवा, बुखार ज्यादा हो तो गुनगुने पानी से पट्टी लगाएं, फिट्स आए तो बच्चे को दोनों ओर करवट दिलाकर रखें, रास्ते में गिरने से बचाने के लिए सिर को सपोर्ट दें। तीसरा, अस्पताल में बताए गए नियमों का पालन करें, किसी भी हालत में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा उपचार बीच में ना रोकें।
2: तो भैया बीमारी तो एक तरफ है, पर गांव समाज की भूमिका क्या है? हम AES और जापानी बुखार को रोकने में क्या कर सकते हैं?
3: बहुत कुछ कर सकते हैं आरजे जी।
2: जैसे
3: AES जापानी एंसेफेलाइटिस के खिलाफ असली लड़ाई गांव की ही जीत हो सकती है। जैसे जेई वैक्सीन, 1 से 15 साल के बच्चों को टीका जरूर लगे, या टीका मुफ्त उपलब्ध है और बहुत प्रभावी है। दूसरा, मच्छरों को पनपने से रोके, घर आंगन में पानी जमा ना होने दे, स्वरों के बाड़े को घर से दूर रखे, नालियों की सफाई, पानी की टंकी ढककर रखे और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। तीसरा, बच्चों को सुरक्षित रखे, खेलते समय पूरा कपड़ा पहनाए, शरीर खुला ना रहे और सुबह शाम बच्चा बाहर ना जाए। चौथा, पानी और खाना हमेशा साफ रखे, अस्वच्छ पानी AES के मामलों में बड़ा कारण है। उबला पानी दे, बासी खाना ना खिलाए और लीची खाली पेट ना दे। पांचवा, लक्षण दिखते ही बेझिझक अस्पताल जाएं, समय पर इलाज, मतलब कि जीवन बच जाना।
2: मतलब आपने हमारी लीची वाली समस्या का समाधान कर दिया। तो भैया अब आपसे ये कहना है कि हमारे एक श्रोता हैं जिनका नाम है राम भवन, जो हमें बभनान गोंडा से सुनते हैं। पिछले साल उनके पड़ोसी का बच्चा बुखार से ग्रसित हो गया। घर वाले बोले 2 दिन रुक जाओ, शायद ठीक हो जाओ, पर जब अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
3: अरे AES में 24 घंटे ही निर्णायक होते हैं, लोग समझते देर कर देते हैं, बीमारी नहीं समय देखती। भाइयों बहनों, AES या जापानी एंसेफेलाइटिस कोई आम बुखार नहीं है, यह ऐसी बीमारी है जो हमें सोचने का समय भी नहीं देती। हम जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी जल्दी जान बचेगी।
2: और सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी असली कहानी है जो हमारे श्रोताओं को समझा सके कि AES और जापानी बुखार कितनी गंभीर है और समय पर कदम उठाना क्यों जरूरी है?
3: बिल्कुल आरजे आकांक्षा जी, एक घटना आपको सुनाता हूँ जो आज भी मेरे दिल में बस गई है। ये कहानी है हमारे ही पास के एक गांव की, जहाँ सुबह का समय था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, औरतें नए ओवरहेड टैंक से पानी भर रही थी। और गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसी समय हमारे इलाके की आशा बहन ममता देवी अपने दिन की तैयारी कर रही थी। अचानक उनका फोन बजा, दीदी मेरा बच्चा बहुत तेज बुखार में है, मैंने 108 पर फोन कर दिया है, एक घबराई हुई माँ की आवाज थी। ममता ने तुरंत कहा, बहुत सही किया बहन, बस मैं अभी आ रही हूँ, हिम्मत रखिए। वो अपना स्वास्थ्य बैग उठाकर तुरंत उस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा था, सेहतिया जी यही तो हमारा काम है, जब गांव को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब पहुंचना। जब ममता ने दरवाजा खटखटाया, वो दस्तक सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो परिवार के लिए उम्मीद थी, भरोसा था, जीवन रक्षक कदम था। देखिए आरजे जी, कुछ साल पहले इसी इलाके में AES और जापानी एंसेफेलाइटिस ने बच्चों की जान ले ली थी। लोग डरते थे, समझ नहीं पाते थे कि ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है या कोई श्राप है। बहुत से माता पिता झाड़ फूंक में विश्वास करते थे और जब तक अस्पताल पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। ममता जैसी आशा बहनों ने सरकारी प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें सिखाया कि कैसे शुरुआती लक्षण को पहचाने, कैसे परिवारों को समझाएं और कैसे ई कवच पोर्टल से हर केस को ट्रैक करें।
2: जी तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि आखिर ये ई कवच किस प्रकार मददगार है?
3: बहुत जबरदस्त टूल है। ई कवच पोर्टल CHO और आशा को यह सुविधा देता है कि कौन सा बच्चा किस बीमारी के जोखिम में है, किन परिवारों को मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, पोषण NCD से संबंधित जानकारी क्या है, किसे कब रेफरल की जरूरत है। ये ऐप उन्हें कदम दर कदम मार्गदर्शन देता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे।
2: वाह भाई वाह, सियातिया भैया आपने तो बहुत ही पते की बात बताई। और अब ये भी बता दीजिए कि ममता बहन ने इन सब का इस्तेमाल कैसे किया?
3: ममता तो इस काम में मिसाल बन गई। वो रोज घर घर जाती थी, उसके बैग में पर्चे, स्टिकर, टीकाकरण रिकॉर्ड सब रहता था। शुरुआत में परिवार टीके से डरते थे, इंजेक्शन से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ऐसा उनका डर था, पर ममता ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपने ही बच्चों का टीकाकरण गांव वालों के सामने कराया और बोली, देखिए मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है, आप भी मत डरिए। और धीरे धीरे लोगों का डर भरोसे में बदल गया।
2: क्या बात है सेहतिया भैया, आपने बताया कि जापानी इंसेफ्लाइटिस बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसका बचाव कैसे हो सकता है और क्या कोई टीका भी है इसके लिए?
3: बिल्कुल आरजी आकांक्षा जी,
2: जी
3: जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव का सबसे मजबूत तरीका टीकाकरण ही है। सरकार ने इस पर बहुत साफ गाइडलाइन बनाई है। हमारे देश में बच्चों को JE के 2 टीके जरूर लगते हैं।
2: 2 टीके कब कब?
3: पहला टीका 9 महीने की उम्र में, ठीक उसी समय जब बच्चे को खसरा का टीका लगता है, और दूसरा टीका 16 से 24 महीने के बीच, जब बच्चे को DPT बूस्टर लगता है। अप्रैल 2013 से ये दोनों डोज देश के 334 अकेडमिक जिलों में रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। अप्रैल 2013 से ये दोनों डोज देश के 334 एंडेमिक जिलों में रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है।
2: और बड़े लोगों के लिए कोई टीकाकरण है क्या?
3: हाँ, जिन राज्यों में बड़ों में जेई के केस देखे गए हैं वहाँ अडल्ट वैक्सीन शुरू किया गया है।
2: अच्छा।
3: तीन राज्यों असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 26 जिलों में 15 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को जेई का टीका लगाया जाता है। इसके लिए एक खास वैक्सीन इस्तेमाल होती है, JENVAC, जो वयस्कों के लिए बनाई गई है।
2: मतलब बच्चे हो या बड़े, समय पर टीका लग जाए तो जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव काफी हद तक हो सकता है।
3: बिल्कुल हार्दिक आकांक्षा जी,
2: जी।
3: इसलिए हम आशा, ANM और CHO लगातार ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा और हर जरूरतमंद वयस्क जेई का टीका लगवाए।
2: तो भैया, आपसे अब एक बहुत ही जरूरी वाला सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ कि आपको क्या लगता है हमारा रेडियो हमारी रेडियो जैसी कोशिशें कितना फर्क डालती होंगी इन चीजों पर?
3: बहुत बड़ा फर्क। जब रेडियो से सही जानकारी गांव-गांव पहुंचती है तो लोग जागरूक होते हैं, टीकाकरण बढ़ता है, मच्छर रोकथाम पर जोर पड़ता है, अस्पताल आने में हिचक खत्म होती है। इस तरह सेहत सही लाभ कई जैसे कार्यक्रम व्यवहार बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
2: अरे वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, आज हमें AES और जापानी इंसेफ्लाइटिस का पूरा ज्ञान मिला, इसे कैसे बचना है और क्या करना है और कैसे अपने गांव को सुरक्षित रखना है।
3: हम लगातार यही कह रहे हैं, आदत बदले, सेहत सुधरेगी, साफ सफाई रखें, टीका लगवाएं, जागरूक रहें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों, ध्यान रखिए, जानकारी ही बचाव है और सही समय पर डॉक्टर ही असली उद्धारक है। चलते हैं, पर कल फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रेडियो ज्ञानस्ले 89.6 FM से जुड़े रहिए। पर जाने से पहले हमेशा की तरह अपनी सेहत की शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का
4: पालन करेंगे
1: ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
1: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
5: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
5: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।
6: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
7: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए? इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
2: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
3: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
8: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
3: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
8: अच्छा।
3: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
8: अच्छा भैया, तो आप ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
3: बहुत सारी,
8: जैसे?
3: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
8: जी।
3: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
8: और बाकी?
3: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है, बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
8: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
3: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है, और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है, 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
8: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए?
3: देखिए आकांक्षा जी,
8: जी,
3: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
8: जी,

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
0: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और आपका बेहद पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली। बिल्कुल लिसनर्स हम आ गए हैं और अपने अपने काम पर बैठ गए, यानी कि भाई देखिए आज के दिन की हम क्या ही बात करें, क्योंकि जो ये दिन होते हैं ना, ये नवरात्रि वाले दिन जो होते हैं, ये बेहद सुखमय वाले दिन होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी आती है, अच्छा सा मन करता है और बहुत कुछ खाने का भी मन करता है। आज हम जो बात करेंगे ना, आज जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्यों ही एवी नहीं होने वाला है, वो टॉपिक बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक होने वाला है। लेकिन उसके पहले आइए हम सुन लेते हैं इस प्यारी सी माँ की धुन को, क्योंकि नवरात्रे हो और माँ की धुन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। साचे दरबार की जय। और आप सभी को पता है कि पिछले 3 सालों से हम करते आ रहे हैं नवरात्रि के दिनों में 1:30 से 3 बजे तक माता की चौकी का आयोजन। तो माता की चौकी तो यानी कि हम माता की भेंटों को लेते हैं, बहुत एक सुखमय वाला ये जो 1.5 घंटा बीतता है हमारा, बहुत ही अच्छा वाला बीतता है। लेकिन उसको और भी अच्छा बनाने के लिए आज हमारे साथ फिर से आ गई हैं हमारी मास्टर शेफ यानी कि रंजना मैम। तो आइए उनसे जानेंगे आज के

0: साहस और बुराइयों को मारने वाली देवी भी कहा जाता है।
1: जी जी जी,
0: इसीलिए इनका बड़ा नाम है। और चूंकि नवरात में हर दिन माता का है, और माता का दिन जो है वो हर दिन हम लोग बहुत शुभ और अच्छा मानते हैं।
1: जी जी,
0: इन दिनों तो जानती हो कि सब पूरा शहर, हाँ। पूरा जो है सब बिल्कुल भक्ति में डूबा हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। सुबह 4 बजे से घंटे बजने लगते हैं, हाँ। और सबसे अच्छी बात, अगर आपके यहाँ फूल लगे हैं तो 4 बजे चोरी हो जाएंगे,
1: चोरी।
0: और आपको एक भी फूल नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल सही बात कही मैं।
0: और चाहे आपने एक पेड़ बोया हो चाहे 4 पेड़, समझिए आप बिल्कुल खाली है, है ना।
1: बिल्कुल,
0: ये बात है कि सबको चढ़ाना भी है पर हाँ, चोरी भी करनी है
1: हाँ, चढ़ाना भी है, मतलब हाँ, जैसे कहते हैं कि अब कौन जाए बाजार लेने
0: नहीं, और बाजार में इतने फूल भी नहीं मिलते ताजे ताजे,
1: हाँ, ये तो है।
0: तो और फिर चोरी में तो मजा भी बहुत
1: चोरी
0: आता
1: में तो मजा
0: कि
1: बहुत
0: जिसका पेड़ है उसने देखा भी नहीं और हम तोड़ लाए, तो कहीं जीत का आभास तो होता ही है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, चाहे फूल हो चाहे फल
0: हो,
1: जितना चोरी करके मजा आता है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो वो खरीद करके खाने में नहीं आता है। सच्चाई है तो है,
0: ये तो है, जो परसी थाली रखी रहती है उसमें वो स्वाद नहीं रहता, जो छीन झपट के खाओ उसी
1: में स्वाद होता है। तो मैम, आज के दिन के बारे में जैसे आपने अभी हमको जानकारी दी, और जैसे कि सभी घरों में आजकल जो है वो व्रत रखे जा रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, तो बड़े मैम ठीक है व्रत रख लेते हैं, पर जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी कि मम्मियाँ ना हम लोगों से छिपा के, मतलब उस दिन बोलती नहीं थी कि व्रत है, क्यों ऐसा क्यों होता था कि ज्यादा बनाना पड़ेगा व्रत का सामान,
0: हाँ।
1: है ना, और फिर हम लोग उससे झूठ बोलती थी, अरे पापा नहीं है व्रत, अरे हम नहीं है व्रत, तुम्हारे लिए दाल चावल बनाए हैं, तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाई है, तुम ये खाओ, और फिर हम लोग को बहलाया फुसला जाता था कि व्रत में ये भी खाया जाता है,
0: हाँ।
1: तो हम लोग भाई छोटे छोटे होते थे, हम लोग उसको ही
0: उसी को खा लेते थे
1: और लगता था कि हाँ व्रत है, पर ये जो मतलब ये बात है, तो इसको किस तरीके से हम लोग
0: समता, देखो पहले के खाने में और अब के खाने में बहुत अंतर आ गया,
1: हाँ।
0: हम ही अपने को देखा कि आज से 20 साल पहले जो हम खाते थे अब वो हम नहीं बनाते, हम नई नई चीजें बनाते,
1: जी, जी, जी।
0: ठीक है ना,
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो और बच्चे, हम तो ये कह रहे हैं बच्चे जो हैं व्रत जब आप रहती हैं तो बहुत शौक से खाना खाते हैं,
1: जी,
0: है ना,
1: जी जी।
0: तो 300 दिन तो आप दाल चावल ही खिलाएंगी,
1: हाँ।
0: तो चलिए इस समय जितने भी पौष्टिक भोजन है वो उन्हें जरूर कराइए, जैसे बच्चे सूखा आलू के संग आलू की टिकिया बहुत पसंद करते हैं,
1: बहुत बहुत, हाँ।
0: अब आप उस टिकिया में था थोड़ा सा कूटू का आटा मिला दीजिए,
1: हाँ।
0: बहुत से लोग साबुदाना भिगो के साबुदाना मिला, नहीं है तो आप सिंघाड़े का पेस्ट बनाइए, उसमें डुबो के टिकिया बना लीजिए,
1: हाँ, जैसे लगेगा उनको कि जैसे,
0: हाँ।
1: कुछ एक वैरायटी बन
0: कुछ
1: जाएगी,
0: अलग, हाँ। चीज, मतलब टिकिया चाहे ऐसे सेक के दीजिए,
1: हाँ।
0: चाहे जाए, एक तो आलू की टिकिया, पहले हम लोग छोटे थे तो साबुदाने की खिचड़ी हमारी मम्मी बहुत बनाती थी, और जब देखो तो मूंगफली दाना डाल के हम लोग वही चबाते मिलते थे,
1: सही कह रही,
0: हाँ। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब मान लो साबुदाने को तुमने पीस लिया,
1: जी,
0: पीस करके तुमने उसको घोल लिया,
1: हाँ,
0: अप्पम बना लिया, या उस कल हमने बताया ही था
1: जी,
0: कि उसमें आलू भर करके
1: अच्छी वाली रेसिपी
0: वाली, हाँ। अच्छा, और बच्चे जब खाते हैं तो अब आप जो है मान लीजिए आलू की टिकिया ही आपने बनाई है, उसमें नाक मुंह सब बना दीजिए जरा काट पीट के,
1: जी जी,
0: है ना, और उसमें जैम है जेली है, ये तो व्रत में खा ही लेते हैं क्योंकि इसमें प्याज लहसुन नमक कुछ नहीं रहता है, फल है और चीनी है, और अगर वैसे तो हम तो घर में रहते हैं तो प्रिजर्वेटिव नहीं डालते,
1: जब मतलब जो घर पे बनाई जाती है,
0: जो घर में बनाते हैं उसमें हम नहीं डालते हैं, एक तो घर वाली जल्दी खत्म भी हो जाती है और दूसरे हमें मालूम है कितने दिन तक ये चलने वाली,
1: हाँ,
0: है,
1: हाँ।
0: बाजार वाली रहती है वो प्रिजर्वेटिव डालते जरूर हैं पर व्रत तोड़ने वाला कुछ भी नहीं रहता,
1: हाँ, ये तो है,
0: है ना। तो जैम है जेली है आप उसको करके दीजिए, आप उसको चिल्ला बनाइए, चाहे आप इसका साबुदाने का बनाइए,
1: हाँ।
0: चाहे ये जो कहते हैं रामदाना इसको पीस लीजिए,
1: हाँ।
0: कुटू के आटे के जो भी आपको बनाना है,
1: बिल्कुल,
0: तो आप उसको चिल्ला बना लीजिए चाहे पूड़ी बना लीजिए, उसमें जैम भरिए आलू भरिए कचौड़ी की तरह आप दीजिए,
1: हाँ।
0: जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो बच्चे जरूर खाएंगे।
1: अच्छा, ये बात तो है मैम कि जब हम लोग सिंपल कोई चीज रख देते हैं ना तो कहते हैं अरे ये कौन खाएगा,
0: हाँ।
1: अगर उसी चीज को थोड़ा घुमा फिरा के रख दो
0: तो बच्चे पसंद करते हैं ना,
1: उनको लगता है अरे आज कोई नई चीज,
0: उनको लगेगा कि आज नई चीज,
1: नई चीज।
0: तो इसी तरह से सब कुछ सेट रहता है और बच्चे हमने देखा मूंगफली दाना भुना आलू सारा दिन खाते
1: सारा दिन सही कह रही है ना, मतलब किसी के लिए भी बन रहा है मैम, तो उसमें वो जरूर कहते हैं हमें दे दो।
0: उतना फ्रूट्स नहीं खाते

0: फल नहीं खाते हैं वो, उनको जब भी कोई होगा कि चार दाना दे दो खा ले मूंगफली का दाना
1: जी।
0: और मूंगफली का दाना जो है वो नुकसान नहीं करता।
1: अच्छा मैम एक बात पूछनी थी, जैसे खाली पेट अगर जैसे हम कभी भी व्रत रखते हैं तो जैसे खाली पेट अगर हमने मूंगफली का दाना सुबह चाय के साथ खा लिया या आलू खा लिया तो तुरंत जैसे लगता है कि एसिडिटी बनने लगती है, तो क्या मूंगफली में कुछ ऐसा होता है कि उसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए?
0: नहीं ऐसा तो होता नहीं है, तो सोच की बात है। जैसे तुम सोच लेती हो कि हमें एसिडिटी बन रही
1: है,
0: जैसे हम लोग जो है बादाम भिगो के या कच्चा सुबह जो है खा लेते हैं चार बादाम या दो बादाम तो उससे एसिडिटी थोड़ी ना। और जो मूंगफली है वो गरीबों का मेवा कहा गया है,
1: मेवा कहा जाता है, बिल्कुल
0: है ना। कि जो तो मतलब लोग नहीं अलग से काजू बादाम नहीं खा पाते वो मूंगफली खा सकते हैं।
1: वैसे आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि हमारी सोच जो होती है ना,
0: बस
1: मतलब मैंने वो बना लिया है कहीं ना कहीं कि हम खाएंगे तो
0: हमको ये होगा।
1: तो
0: और सच बात है कि ये सब चीजें मन में भाव नहीं आना चाहिए। आप 8 बजे खा रही हैं सुबह मूंगफली का दाना या आलू, 8:30-9 से पहले कोई खाता भी नहीं,
1: कोई खाता ही नहीं है। हाँ,
0: तो उस समय आपको एसिडिटी नहीं बनेगी बल्कि आपकी भूख है। हम लोग जो है ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि रात में हम लोग 9-10 बजे खा लेते हैं, उसके बाद बहुत लंबा समय होता है तो हम 8-9 बजे ही खाते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: इसीलिए तो उसको हम लोग ब्रेकफास्ट
1: कहते हैं
0: है ना, लंबे समय। और सुबह उठ करके तो हम नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर में खाना खाएंगे, फिर फल खाएंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर है ना ऐसे हमारा रूटीन चलता रहता है। तो सुबह की चीज तो बहुत अच्छी लेनी चाहिए,
1: और बल्कि हमको लगता है कि व्रत के दौरान वो ज्यादा ही हो जाता है।
0: हाँ,
1: कि
0: ये तो है,
1: हाँ ना, जब भी मन करे चलो लाओ थोड़ा सा खा लो।
0: नहीं नहीं, और व्रत में व्रत का खाना स्वादिष्ट
1: बहुत बनता है।
0: हाँ,
1: ये तो
0: बात अच्छा। चूंकि हम लोग रोज सरसों के तेल और रिफाइंड यूज करते हैं, उस दिन देसी घी या डालडा जो भी जो कोई खाता है जैसा भी वो वैसा करता तो उसकी महक और स्वाद ही अलग हो जाता है ना।
1: जी,
0: आलू रोज उबाल के भून के बनाती हूँ लेकिन व्रत वाला आलू बहुत ही अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, ये तो बिल्कुल।
0: हाँ, तो हम आ रहे हैं बच्चों के लिए।
1: जी,
0: क्योंकि बच्चों को खाना देने के लिए आप जो है कुछ भी दे सकते हैं, फ्रूट चाट दे सकती हैं। तो अगर चाट में आप मसाला वसाला मिला के दे रही है ठीक है, नहीं फ्रूट क्रीम मिला दीजिए है ना, क्रीम मिला दीजिए खूब। लेकिन इसके लिए आपको चॉपिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कोई चीज, बच्चे कोई फल खाते हैं कोई नहीं खाते हैं। लेकिन अगर महीन महीन पीस खूब कटा हुआ है और उसमें क्रीम मिलाइए, जरा से चीनी या उसमें रू अफजा डाल दीजिए या शरबत है ना, कुछ भी डाल दीजिए तो देखिए सुंदर भी लगेगा। और बच्चों को इससे मतलब नहीं है कि हम व्रत में क्या खा रहे हैं और हमें क्या पूजा पाठ करनी है,
1: ये तो है।
0: तो आप इन पर रू अफजा भी डाल सकती हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करके आप दीजिए सुंदर सा, तो वो फ्रूट क्रीम भी खा लेंगे बच्चे।
1: बिल्कुल, मतलब ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए।
0: हाँ, और बच्चे उन सबको पसंद करेंगे। हो सकता है बार बार कहें मम्मी वो व्रत में वही वाली चीज बना जो उस दिन बनाई थी,
1: ये तो है
0: ना। अच्छा, पापड़ भी, कचरी पापड़ भी बच्चे पसंद करते हैं।
1: जी जी।
0: तो अब जो बाजार के चिप्स तो भाई बाजार के ही होते हैं, पर हम लोग तो घर वाले चिप्स खाते हैं। पर उनको जरा अच्छे से करके आप उसमें उनको दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना।
1: तो यानी कि मैम के कहने का मतलब सिर्फ साफ साफ यही है कि अगर आपके बच्चों को व्रत की चीजें भी अगर वो दो वो खा रहे हैं तो आप उन्हें भी दीजिए। लेकिन उनको प्रेजेंटेशन उनका अच्छा होना,
0: थोड़ा सा चेंज कर दो तो वो शौक से खाएंगे,
1: शौक से खा लेंगे
0: और हमें लगेगा। और जब मेरा बच्चा संतुष्ट रहता है तो हमें भी तो कितनी संतुष्टि रहती है,
1: होती
0: है ना।
1: ये
0: आधा एक घंटा दोपहर में खूब तान के सो लिए कि अब बच्चा खींचेगा नहीं कि उठो हमको कुछ दो खाने को।
1: ये तो है, ये तो। और सबसे ज्यादा दोपहर में ही बच्चे तंग करते हैं,
0: दोपहर में, क्योंकि स्कूल से आ चुके होते हैं और उनको लगता है कुछ करना ही है,
1: कुछ करना ही है
0: तो बस उसमें हिलाते रहते हैं।
1: जी,
0: तो ये सब चीजें हैं और हमें बच्चों की सेहत के हिसाब से जरूर ध्यान रखना चाहिए।
1: जी, बिल्कुल।
0: और हमें अपना पूजा पाठ उनके सर पे नहीं थोपना चाहिए।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे तब वो जानेंगे पूजा क्या होती है, कैसे करी जाती है। छोटे छोटे मन में छोटी छोटी बातें धर दो। अब एक लड़की थी, उसने हमसे कहा, बड़ी थी
1: जी,
0: कहने लगी कि हमारे यहाँ नवरात में कपड़ा कोई काट दे तो सिल ले, हम लोग काट के सिलते नहीं।
1: अरे,
0: हमने कहा लो ये भी क्या कोई बात हुई है ना। तो कहने की हमारी दादी ऐसे ही कहती थी, हम लोग आज तक नहीं करे हैं। तो गलत बात बच्चों के मन में ज्यादा बैठ जाती है और अच्छी बात कम बैठती है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी हो आप बच्चों को भगवान पे विश्वास दिलाइए पर अंधविश्वासी मत बनाइए।
1: बिल्कुल, ये तो बात है,
0: है ना। हाँ। क्योंकि अंधविश्वास रहता है वो बच्चों को बहुत खराब रास्ते पे ले जाता है। हाँ,
1: कहीं ना कहीं फिर उसका जो परिणाम होता है मैम,
0: हाँ,
1: वो हम ही
0: मतलब आगे हम ही भुगतेंगे।
1: हाँ, वही बात है ना, कि हम ही लोगों को देखना पड़ता है,
0: हम ही लोगों को देखना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: तो हम बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे एक अच्छे सभ्य नागरिक बने, और चाहते हैं कि बच्चे अच्छा भोजन करें।
1: हाँ।
0: अच्छे से रहें, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखें, और जो भी चीजें हैं उसका वो पालन करें। तो आप व्रत रहिए, बच्चों से भी व्रत रहिए। हाँ, अगरबत्ती जलवा लीजिए।
1: हाँ।
0: भगवान के आगे हाथ जोड़वा लीजिए, अगर फूल ज्यादा के ऊपर है तो एक एक दो दो फूल जड़वा दीजिए।
1: हाँ।
0: ये तो अपने कुछ छोटे बच्चे 5-6 साल के होते हैं, और 12-11 साल तक इस समय बहुत जिद करते हैं।
1: हाँ।
0: उसके बाद जिद नहीं करते हैं थोड़ा, क्योंकि समझने लगते हैं कौन व्रत है कौन नहीं व्रत।
1: हाँ।
0: है तो इस समय बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं
1: जी,
0: उनको बिल्कुल आपका ही अनुसरण करेंगे। अगर आप जोर से गा रही हो तो वो भी जोर,
1: वो भी। हाँ,
0: और
1: हाँ,
0: भले उनके हाँ, शब्द ना सही हो पर सुर ताल वो आपसे बहुत अच्छा मिला लेंगे।
1: ये तो बात सही है ना, बिल्कुल 100%
0: वो उसे मिला लेंगे
1: 100%।
0: तो फिर उसमें आप जो है बच्चों को वही सिखाइए जो उनके भविष्य में काम आए। जब भविष्य अच्छा होगा तो आपका भी तो भविष्य अच्छा।
1: एग्जैक्टली, उनको देख के क्या हमारा भविष्य नहीं अच्छा होगा। बिल्कुल। तो मैम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम छोटी सी जानकारी आपसे और चाहेंगे, और फिर आपको इजाजत देंगे। तो चलिए लिसनर्स, हम यहाँ लेंगे एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हमने लगा दिया है बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि है बंगला दिया गाड़ी दी, और बहुत ही प्यारा सा भजन है। आइए सुनते हैं इस प्यारे से भजन को, और उसके बाद में हम आएंगे लौटेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में हमारे हैं हमारी मास्टर शेफ यानी रंजना मैम। आइए जानते हैं उनसे कुछ और बातें। मैम, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, वो बात ये है कि अब हम लोग ने देखा है कि आपके घर के पास में या हमारे घर के हमारे चौक में ही कम से कम 15 से 20 माताओं के दर्शन रखे जाते हैं, और उसके बाद में मतलब उनका जो विसर्जन होता है, चाहे वो गणेश विसर्जन हो, चाहे माता जी का विसर्जन हो, किस तरीके से उनका विसर्जन किया जाता है, और जगह जगह पर इस तरीके से माँ के दर्शन रख करके फिर पूजा पाठ भी अगर उस ठीक तरीके से ना किया जाए तो इसका प्रभाव क्या हम पर पड़ सकता है, या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियां वही सीखेंगी जो हम करेंगे।
2: फिर देखो, ये सच बात है। पहले हम लोग के इधर की तरफ उत्तर भारत में जो था वो गणेश चतुर्थी नहीं होती थी
1: जी, जी।
2: उसको तो हम लोग पत्थर चौथ मानते थे।
1: हाँ।
2: कि अगर उस दिन चांद देख लो तो कलंक लगेगा।
1: हाँ।
2: है ना।
1: हाँ,
2: अब आजकल लोग गणेश जी रखने लगे।
1: हाँ।
2: जबकि गणेश जी जो हैं उनको रखने का मतलब है कि ये लंबी कहानी है।
1: हाँ।
2: कि जब शंकर भगवान ने जो बंटवारा करा तो गणेश जी ने तो उनके चक्कर लगा लिए थे, तो उन्हें अपने पास कर लिया,
1: अपने
2: था,
1: पास रख लिया था,
2: और कार्तिकेय जी को महाराष्ट्र का वो क्षेत्र दिया था।
1: हाँ।
2: वो वहाँ के राजा थे। ठीक है। तो उन्होंने अब कृष्ण इनको गणेश जी को था कि रिद्धि सिद्धि इनके साथ है, और अगर इनकी पूजा प्रथम नहीं की जाती है तो वो फलित नहीं होता।
1: हाँ।
2: है ना। तो कार्तिकेय जी ने क्या करा कि इनको बुलाया अपने यहाँ, जब अपना राज का विस्तार किया।
1: हाँ।
2: सब राजा बनने चले, तब उन्होंने इनको बुलाया, गणेश जी को, उनके संग रिद्धि सिद्धि आई, तो वो 15 दिन तक वहीं रहे।
1: हाँ।
2: उनके यहाँ मेहमान बन के रहे
1: जी।
2: तो गणेश चतुर्थी का यही है, है ना।
1: हाँ।
2: क्योंकि महाराष्ट्र में वो गए, वो क्षेत्र उनका है। अब लोग कहते हैं एक के पीछे एक चलने वाले लोग,
1: वो परंपरा, फिर वो
2: परंपरा बन गई, और उसको बना दिया कि ऐसे अब सब जगह होने लगी गणेश चतुर्थी। इसी तरह पहले ये दुर्गा जी जो थी ये बंगालियों की मेन थी,
1: मेन है ना, और आज भी बंगाल साइड में मैम बहुत ही अच्छे से,
2: बंगाल में तो खैर उनके यहाँ तो बिल्कुल जो होता है ये उनके घर का साल भर का सबसे बड़ा त्योहार होता है।
1: बिल्कुल।
2: और इसमें वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। पर आप दुर्गा जी की मूर्ति लाके, गणेश जी की मूर्ति लाके क्या इंजॉय करते हैं?
1: हाँ।
2: बिल्कुल नहीं करते हैं।
1: हाँ।
2: आपने इसको हमारे हिसाब से धर्म के नाप पे कमाई का धंधा बना रखा।
1: Exactly, मैम।
2: हाँ। और रस्ते चलते रुक के छोटे बच्चे डोरी बांध लेंगे।
1: हाँ।
2: आपकी बाइक ये सवारी को जाने नहीं देंगे।
1: हाँ।
2: पैसा दीजिए, पैसा दीजिए।
1: हाँ।
2: उसके बाद उससे लाते हैं, और हमने देखा नदी में पानी नहीं है, इतनी बार जानते हैं कि जो कलर्स हैं उससे प्रदूषण फैलता, कितनी मछलियां, पानी के जानवर मर जाते हैं। उसका आप लोग को कोई ध्यान नहीं है कि बस दुर्गा जी ले आए, धर दिया।
1: हाँ।
2: और उसके आगे प्रसाद में लइया और वो जो भी दिया।
1: हाँ,
2: आपने
1: हाँ।
2: तो इलायची दाना रामदाना, बस इतना आपने खर्चा किया या पंडित जी को जो दिया, बाकी आपने अपने उसमें रखा। और दिखाते हैं आप कि आप बहुत भक्ति कर रहे हैं, कोई ना भगवान की, अगर नवरात है तो अगर आप है 9 दिन तक नौ चंडी का पाठ कराइए, आप पूजा करिए विधि विधान से, आप ब्राह्मण को बिठा लिए, खुद भी नहीं वहाँ बैठिए, पूजा करिए। पर ये सब है नहीं, नदियों में पानी नहीं रह गया है, तालाब सब सूखे ही धरे हुए हैं। आप जब जाते विसर्जन करने बस उनको फेंका, आप उनको श्रद्धा से नीचे नहीं उतारते हैं, आप उनको अपने ट्रैक्टर से गिरा देते हैं
1: जी।
2: वो चाहे मुंह के बल गिरे, चाहे बाहों के बल गिरे।
1: हाँ।
2: चाहे सर के बल गिरे
1: जी,
2: है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैम इतने बुरे तरीके
2: बुरे तरह से गिराते हैं, और
1: है?
2: इतनी सारी सब नदियों में पानी नहीं। आप सब लोग मिल करके बैठ करके तय कर लीजिए।
1: हाँ।
2: कि जैसे पहले चुंगी गोदाम में रहता, चलो दो ही बनती थी, एक बड़गांव में बनता था, एक चुंगी गोदाम में। आप लोग आपस में तय कर लीजिए कि एक बाजार की बन जाएगी, 3-4 ठीक है, पर हर गली हर मोहल्ले में दुर्गा जी सजी हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं, अब आगे चलेंगे लक्ष्मी जी आ जाएंगी।
1: हाँ, मैम रखी जाती है और, हाँ? और आपको बता दे काली माँ की भी रखी जाती है,
2: बिल्कुल
1: भरत मिलाप चौराहे पे भी काली माँ की रखी जाती है, मतलब जगह जगह पर
2: आप
1: दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा
2: है, लोगों में कंपटीशन होने लगा। और आप किस चीज का कंपटीशन कर रहे हैं पहले हमें यह बताइए, आप ना तो पूजा पाठ समझ रहे हैं ना धर्म समझ रहे हैं, आप बस शो है,
1: शो है।
2: आपने क्या करा, सातवें सुर में बाजा बजा दिया और आप चले गए अपने दोस्तों से खड़े बात कर रहे हैं कुछ, और जय माता दी जय माता दी का आप दिखा रहे हैं, आप बैठ रही है ताली पीटिए, दो घंटा तीन घंटा कीर्तन करिए बिना माइक के, अगर चलिए माइक भी लगाया है तो भी आप मुंह से कीर्तन करिए ताली बजाइए, हम तब देखते हैं आपको, तब हमें लगे कि आप श्रद्धा विश्वास से कुछ कर रहे हैं, है ना, कुछ इसमें श्रद्धा विकास पहले ही था। वही तो हम अभी बता रहे थे कि अब एक पुराना हम संस्मरण है वो सिखा रहे हैं कि 84-85 की बात है कि तब चुंगी गोदाम में एक दुर्गा जी सस्ती थी, आज में यहाँ गोंडा में बहुत विख्यात रहे दद्दन जो बहुत अच्छा तबला बजाते थे, नई पीढ़ी के लोग तो नहीं जानते हैं लेकिन दद्दन को पुरानी पीढ़ी के लोग सभी लोग जानते हैं क्योंकि दद्दन बहुत अच्छा तबला बजाते था, लेकिन उसकी आदत इधर बजाओ उधर छोड़ के भाग गया, पकड़ के फिर बुला लाओ बहुत, तब वो अकेला ही था बजाने वाला। और रघुवंश डॉक्टर रघुवंश बिहारी थे, उनके एक लड़का है आलोक, तो आलोक जो है बहुत अच्छा गाना गाता है। हम कहीं से डिनर से लौट रहे थे और तब मेरी शादी हुई थी 2-1 साल हुए होंगे कि मैं रात में वो तबला दद्दन का और जो आलोक गाना गा रहा था उसकी तो हम आज तक मेरे कानों में वो आवाज़ है, क्या इतना बढ़िया था कि वो गाना है उनका आलोक का कि आए सावन जुआ फूले फूल झूला रही राधिका जून, हम अब ज़्यादा हमें म्यूजिक व्यूजिक का इतना ज्ञान नहीं, पर वो गाना और दद्दन का तबला एकदम अलग, और जितने बंगाली या सबको कुर्सी मिली हुई थी सब इतना एकाग्रचित हो करके वो गाना सुन रहे थे, कोई ये नहीं था माता का भजन बज रहा कोई गा रहा कोई ऐसा नहीं था, सब भाव भक्ति में बैठे हुए थे। क्या अब पंडालों में हम जाते हैं क्या हमें ऐसा मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, है ना। अब सब जो है एक तो छोटे छोटे लड़के ले लेते हैं, सब ट्रैक्टर पे चिल्ला रहे हैं, सड़क घेर लेंगे, आप जाम कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, ये नहीं सोचते हैं निकलने वालों को कितनी परेशानी।
1: सही बात है मैम, बिल्कुल है?
2: और हमको जब घूम के जाना पड़ता है तो हमको बताओ कितनी गुस्सा आती है, कभी हमारे पास समय कम है या हमारे घर कोई बीमार है हमें दौड़ के देखने जाना है, आपने तो सड़क बंद कर दी उधर से जाओ उधर से जाओ, कह देना बहुत आसान है पर प्रैक्टिकल में देखो ये अच्छी बात नहीं।
1: बिल्कुल,
2: मैं आप सबसे कहती हूँ कि अपनी भक्ति बराबर रखिए, सब रखिए, मूर्ति भी रखिए पर मिलजुल के जरा कम मूर्तियाँ रखिए, कम मूर्तियाँ रखने से ये होगा कि मेरी नदियाँ तालाब सब अच्छे भी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है आप श्रद्धा से अपनी मूर्तियों का विसर्जन कर पाएंगे। अगर आप श्रद्धा से विसर्जन करेंगे तो देखिए आपको कितनी ताकत मिलेगी अगले साल के लिए, और एक संतुष्टि मिलेगी कि हमने माता को बहुत अच्छी तरह से विसर्जित हुआ, और अगले साल के लिए आप उन्हें बुला लीजिए कि अगले साल मुझे फिर आइएगा, हम ऐसे ही आपको विसर्जित करेंगे।
1: बिल्कुल,
2: तो सब लोग आपस में मिलके जितनी भी पंडालों में बनती है हमारी सबसे यही दरखास्त है कि आप सब लोग कम से कम मूर्तियां रखिए, श्रद्धा विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, दिखावे की तरफ ध्यान मत दीजिए, और यही आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। अगर आपकी अच्छी मूर्ति है, अच्छा सब कुछ है, पूजा पाठ अच्छा है, तो भगवान भी आपको आशीर्वाद देने से पीछे नहीं हटेंगे, वो हर हालत में आपको आशीर्वाद देंगे।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी मैम ने दी है, वाकई में ऐसी जानकारियाँ हम लोग समय समय पर मैम से बिल्कुल लेते रहेंगे, और एग्जैक्टली ये जो मेन मुद्दा है ना हमारे सभी
2: बिल्कुल सभी
1: शहरों के लिए है मैम,
2: और सभी धर्मों के लिए,
1: सभी धर्मों के लिए।
2: आप देखो वो जो मुस्लिम समुदाय है वो ताजिए कितने सारे छोटे छोटे सा, और ये देखो कोई उधर पड़ा कोई उधर पड़ा, चाहे कोई भी धर्म हो इधर उधर गिरे पड़े भगवान किसके खराब लगते,
1: किसके खराब लगते, एग्जैक्टली
2: सब खराब लगते हैं सब, बिल्कुल कोई नहीं पसंद करता।
1: तो
2: कि
1: ये हर धर्म के लिए मैम
2: बिल्कुल हर
1: धर्म सलाह दी है कि हमें अपने ईश्वर का, हमें अपने अल्लाह का, हमें अपने वाहेगुरु, हमें अपने ईसा मसीह, हमने चारों धर्म के जितने भी भगवान है सबका सम्मान करते हुए ये बात कही गई है,
2: और सभी को सम्मान करना चाहिए, भगवान तो एक है।
1: बिल्कुल,
2: पर हमने अपने धर्म को बांट रखा है, इसलिए कोई इधर इधर करते रहते हैं।
1: बिल्कुल
2: ठीक है,
1: बहुत ही अच्छी जानकारी मैम दी है आपने, और इसी तरीके से हमें और आपके से जानकारियां मिलती रहेंगी, एंड आई होप सो कि आप समय समय पर आप हमें यूं ही टाइम।
2: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मेरे सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार
1: जी,
2: आप लोग का प्यार ही हमको खींच लाता है।
1: थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए मैं तो आती हूँ और मैम को छोड़ के बाहर, तब तक आप सुनिए इस प्यारे से गीत को जो कि अभी लिख भेजा है मुझे शायद अरविंद जी ने, हे जगरात्रि हे जगदम्बे। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, लौटते हैं ब्रेक के बाद।

क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हमारे हैं निधि। तो निधि आज कुछ बताएंगी आपको, एक मोरल स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छी वाली होने वाली है। लेकिन उसके पहले आज के व्रत के बारे में कि निधि व्रत हो तुम?
2: जी मैम नहीं,
1: व्रत नहीं हो ना जी? तो व्रत नहीं हो, लेकिन व्रत के दिन मुझे लग रहा है कि एक अजीब वाली एक कशिश होती है ना व्रत।
2: जी मैम बहुत अच्छी सी।
1: तो क्या फील होता है आपको?
2: मैम मुझे तो सुबह बहुत पॉजिटिव सा फील होता है। मुझे लगता है मुझे आज उतनी एनर्जी नहीं लग रही जितना मुझे कल लग रही थी।
1: अच्छा,
2: कल मेरा फास्ट था। और बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। आप जैसे आपका उपवास रहता है तो आपने देखा होगा, आप कितना भी काम कर लें या कुछ भी कर लें तो आपको वो पता ही नहीं चलता है ना, आपको भूख लगती है। क्योंकि शायद हमें पता होता है कि उपवास है और शायद कहीं ना कहीं हमारे ऊपर माता रानी की बहुत कृपा भी होती है।
1: एग्जैक्टली बिल्कुल।
2: तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगली कहानी की तरफ जो मैं बताऊंगी। ये कहानी शायद आपके जीवन में भी ऐसा कुछ रहा
1: लेकिन
2: हो।
1: ये कहानी है किसके लिए?
2: मैम वैसे तो बच्चों को लिए है, क्योंकि बच्चे होते हैं जो शुरू से उन्हें सिखाया जाता है। जैसे कहते नहीं, बच्चे हैं छोटे
1: बच्चे
2: हैं,
1: बच्चे मन के सच्चे,
2: बच्चे मन के सच्चे, लड़ाई ना करो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: तो ऐसा ही माना जाता है। और ये कहानी बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी अच्छी है। मुझे लगता है बड़े भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो सीखेंगे।
1: चलो तो फटाफट शुरू करें।
2: जी मैम। नन्ही
1: तो अभी हम सुनेंगे बहुत ही प्यारी सी मॉरल स्टोरी जो कि निधि बताएंगी। हाँ निधि।
2: जी बिल्कुल। जी फिर हम चलते हैं अपने नन्हे चीकू की ऊंची उड़ान पे।
1: जी
2: एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल में चीकू नाम का एक नन्हा गौरैया का बच्चा रहता था। चीकू का आकार अपने भाई बहनों से थोड़ा छोटा था और उसके पंख भी थोड़े कमजोर थे। जब भी उसके भाई बहन आसमान में ऊंचे उड़ते, चीकू सिर्फ छोटे डालियों तक ही पहुंच पाता था। जंगल के दूसरे पक्षी अक्सर चीकू का मजाक उड़ाते और कहते, चीकू तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कभी ऊंचे आसमान में नहीं उड़ पाओगे। दूसरों की बातें सुनकर चीकू बहुत उदास होता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, चीकू बेटा तुम्हारी ताकत तुम्हारे पंखों में नहीं बल्कि हौसले में, मेहनत में है।
1: जी।
2: अगर तुम ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: माँ की बात चीकू के दिल में बैठ गई। उसने तय किया कि वह हर बार हार नहीं मानेगा। अगले ही दिन चीकू ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। जब बाकी पक्षी दोपहर में आराम करते, चीकू उड़ने का अभ्यास करता। वह बार बार गिरता, उसे चोट भी लगती, लेकिन वह खड़ा होता।
1: अच्छा।
2: और फिर उड़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी पंखों की ताकत बढ़ने लगी और उसका डर गायब होने लगा। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। सभी पक्षी डरकर अपने घोंसले में छिप गए। उसी समय चीकू ने देखा कि एक छोटा खरगोश का बच्चा बहती हुई तेज नदी के किनारे एक सूखी लकड़ी पर फंसा हुआ है और रो रहा है। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था। कोई भी पक्षी तेज हवाओं के डर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, लेकिन चीकू ने अपनी जान की परवाह किए बिना भारी तेज हवाओं ने उसे कई बार पीछे धकेला, लेकिन उसकी महीनों की मेहनत और मजबूत हौसले के सामने तूफान भी हार गया। चीकू तेजी से उड़ा, अपनी पूरी ताकत से खरगोश के बच्चों के पास पहुंचा और अपनी चोंच व पंजों की मदद से उसे खींचकर नदी से बाहर सुरक्षित झाड़ी में पहुंचा दिया। जब तूफान थमा तो जंगल के सभी पक्षी चीकू की बहादुरी देखकर हैरान रह गए। जो पक्षी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वे सब चीकू के लिए तालियां बजा रहे थे। चीकू ने साबित कर दिया था कि कद छोटा होने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि बड़े हौसले और सच्ची मेहनत से कोई भी महान बन सकता है। मेहनत और हौसला, हमारी शारीरिक कमजोरी तब तक रुकावट नहीं बनती जब तक हमारा हौसला मजबूत है और हमारे अंदर बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करते रहने की एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ये भावना हमें सफलता तक जरूर पहुंचाती
1: है। यानी कि हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और यही आज का उद्देश्य, मतलब नवरात्रि के उसमें पावन दिन पर यही आज का उद्देश्य है कि भाई बच्चों को कभी भी अपनी मेहनत से मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना निधि?
2: जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा।
1: चलिए तो चलते हैं, अब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में मेरे पास अर्जी आ गई है जो कि है वो अर्जी है प्रमुख जी की। तो जी। प्रमुख जी की अर्जी को लगाते हैं और सुनते हैं फिर प्यारी सी जो कि मुझे सुनाई दे रही है कि ये अर्जी जो है, अर्जी किसकी आई है? अर्जी मुझे लग रहा है प्रमुख जी की, है ना?
2: जी बिल्कुल।
1: तो चलो सुनते हैं इस प्यारी सी अर्जी को।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यस एग्जैक्टली, इतना ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जो चल रहा है, जो माँ का, जो कि अभी माता के दिनों में, और इस प्यारे से गाने को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट क्या करें, हमारा टाइम जो है वो टिक टिक घड़ी बोल रही है निधि
1: जी, बिल्कुल,
0: और चलना चाहिए अब, और आज जाएंगे नहीं तो कल आएंगे कैसे, तो कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय बाय, फिर मिलते हैं सुन सहेली में।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9861-976-9860-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
7: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
8: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
9: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हेलो हाय नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी। खड़ी में वक्त हो चला है 3:07 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त आजुनती मौजूद हैं। प्रोग्राम चल रहा है कॉलर ट्यून गोंडा, यानी कि आपके अपने फरमाइशों का कार्यक्रम। तो फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश की ओर, जो कि तेलंगाना से आई है मोहम्मद आसिफ जी की, और आप इंजॉय करने जा रहे हैं खुदा गवाह। हम मिलेंगे इस गाने के उस पर, तब तक के लिए अपनी फरमाइशें करने के लिए उठाइए अपना फोन, डायल करें 6393316429, आई रिपीट 6393316429, और भेज दीजिए अपनी फरमाइश हम तक, यानी कि अपने शहर का नाम, आपका अपना नाम, अपने गाने की बोल भेजिए मेरे पास, यानी कि आशीर्वादी के पास।

और जब तक हमारे आसिफ जी वापस आते हैं तब तक के लिए हम आपको बता दें कि आपका वापस स्वागत करते हैं आपके अपने वाले शो कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आशुनती, और वक्त है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ मुड़ने का, क्योंकि आपके चैट बॉक्स में आ चुके हैं मैसेजेस। एंड लेट्स सी आज सबसे पहले मैसेज किसका आया था। अरिबा शेख जी लिख रही हैं, हेलो गुड आफ्टरनून नदी मैम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूं अरिबा जी, आप बताइए लखीमपुर का हाल कैसा है और लखीमपुर के गुलाब जामुन आप खा रही हैं क्या? एंड इसके बाद है गुलाब शाह सिद्दीकी जी का मैसेज, गुड गुड आफ्टरनून नदी मैम, आपके डबल गुड से मेरी दोपहर और भी ज़्यादा गुड हो चुकी है, गुड आफ्टरनून टू यू। इसके बाद है हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई थिंक ये फ्रेंड्स ही बता सकते हैं कि वो कैसे हैं। फिलहाल के लिए आशु मिश्रा जी जुड़ गई हैं लखनऊ से, आपका भी वेलकम करते हैं, और आई थिंक आपने सुन सहेली की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, हेलो मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ धर्मेश जी, आप बताइए आप कैसे हैं? मोहम्मद मुसीफ की एंट्री हो चुकी है, गुड आफ्टरनून डियर आशुती मैम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मुसीफ जी, आप बताइए आप कैसे हैं? मुस्तफा जी फ्रॉम सऊदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून टू यू, सुपर सॉन्ग, थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज टू ऑफकोर्स हमारे आसिफ जी की तरफ आता है। जारा खान हमारे साथ जुड़ गई है, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? जारा जी एंड हेलो गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। महेंद्र दीपन फ्रॉम राजस्थान लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून नमस्ते आशुनती मैम जी, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, क्या आपका बुखार कम हुआ, क्या वो ठीक हो चुका है? प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपने लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम, आई एम लिसनिंग बट आई एम बिजी विद सम इम्पॉर्टेंट वर्क, इट्स ऑल राइट प्रमुख जी, बस आप बने रहिए, इन्जॉय करते रहिए सबकी फरमाइश, और आपका भी वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। अरिबा शेख जी का भी आ गया कि आज हम कॉल नहीं करेंगे, काहे भैया हमारा दिल काहे तोड़ रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। इसके बाद पप्पू जी का मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू यू, अरे वाह मेरी ही फर्स्ट है, हां जी आज आप ही ने सबसे पहले कॉल कर दिया, तो आज आप ही की फरमाइश कंप्लीट कर दी गई है। इसके बाद धर्मेश जी लिख रहे हैं, 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात ना रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही इस महफिल की रौनक बढ़ेगी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने स्वागत कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, भैया तारीफों के बोल बांधते रहिए, क्योंकि हमारे रीना शर्मा जी की एंट्री भी हो चुकी है उत्तराखंड से, और आपका भी वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना बहुत लंबी लिस्ट के साथ आया है, डेडिकेटेड मुझे है, अनु पांडे जी को है, अरविंद जी को है, महेंद्र जी को है, रोशनी जी को है, आसिफ जी को है, अरिबा जी को है, जारा जी को है, और गाने का नाम है तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको मैं छोड़ के गोंडा शहर चली जाऊंगी, यही धमकी हमको मिली थी भैया। तो आइए हम आपके लिए गाना प्ले कर देते हैं जो कि हमारे गुलाबजा जी की है, और मैं इतना ही चाहूंगी कि आप इन्हें थोड़ी मोहब्बत की नजरों से देख ले, नहीं तो गोंडा छोड़ने की धमकी दे चुकी है।

और भाई गुलफ्शा जी ने जिन जिन का नाम लिया है वो जरा यही करें कि जरा उनको मोहब्बत की नजर से देख लें, प्यार की नजर से देख लें, नहीं तो उनका शहर छोड़ के जाना तय हो चुका है। और उन्होंने अलका जी की आवाज में सबको बता भी दिया है, राधा तुमसे आप इंजॉय कर रहे थे, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, अब मुझे नहीं पता प्यार से कैसे देखा जाता है, मैं तो नॉर्मली देख लेता हूँ, अगर वो आपके लिए मोहब्बत की नजर होगी तो बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि ये गाना लिखा था समीर साहब ने, नदीम श्रवण का संगीत था, और आप बढ़ेंगे हमारी अगली फरमाइश की ओर। वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद मुशीर जी ने लिखा है वेरी डांसिंग सॉन्ग, तभी ये नाचिए, मजे कीजिए, वाइब कीजिए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने के लिए तो कॉलेजिन गुना बना हुआ है। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, गुना शहर की धड़कन पर आपकी आशरती मौजूद है, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फरमाइशों का कार्यक्रम कॉलेजिन गुना। अपनी फरमाइशें करने के लिए बस उठाइए अपना फोन, डायल करें 6393316429, अपने गाने के साथ साथ अपना नाम प्लस अपने शहर का नाम भी जरूर बताइएगा। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग है आजकल कुछ याद रहता नहीं श्रीदेवी को देखने के बाद, और ये गाना है हमारी धर्मेश त्रिपाठी जी की फरमाइश पर, तो एंजॉय करते रहें। हम मिलेंगे इस गाने के उस पर, नगीना फिल्म से है, मोहम्मद अजीज की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के लिखे बोल।

बहुत ही प्यारा नगमा आप एंजॉय कर रहे थे मोहम्मद अजीज की आवाज में, और हमारे साथ अमित जी जुड़ गए हैं। क्या बात है नदी मैम, बड़ी शायरियाँ चल रही हैं आपके शो में। अच्छा, ये तो हमारे लिसनर्स का टैलेंट है जो शायरियाँ लिख लेते हैं, नहीं तो भाई हम जैसे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं जिनको शायरी आती नहीं है, लेकिन हम अपने लिसनर से सीखते जरूर हैं। उनकी बेहतरीन शायरियों को देखकर मैंने खुद भी शायरी करने लग गई हूँ। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और पेश करते हैं हमारा नेक्स्ट सॉन्ग, जो कि एक प्यारा सा रोमांटिक गाना है, डुएट वर्जन है, और आप एंजॉय करने चाह रहे हैं सुमरीन जी की फरमाइश पर वारिया। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड धर्मेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है आपने, एंड आपके फेवरेट गाना है। ओके, प्रमुख जी का फेवरेट गाना है आज कल कुछ याद रहता नहीं।

हां जी, और आप एंजॉय कर रहे थे वारिया समरीन जी की फरमाइश पर, बहुत ही प्यारा सा नगमा था। अरविंद जी का लिखना है, ना खुशी अच्छी लगती है ऐ दिल ना मलाल अच्छा है, ना खुशी अच्छी लगती है ऐ दिल ना मलाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। उन्नति मैम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा लिखा है आपने। इसके बाद मोहम्मद मुसीर जी की तरफ से कुछ अल्फाज आए हैं कि आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है दिल मेरा बस तुम्हारी ही आरजू, मैं फिर कैसे ना कहूँ कि मेरी जान हो तुम। क्या बात है भाई, लगता है आज सबका शायराना मिजाज हो रखा है और हर दूसरा बंदा इतनी गजब की शायर। आप लोग ला कहाँ से रहे हो, ये खुद लिख रहे हो या किसी से इंस्पायर्ड हो चुके हैं आप सभी, मुझे बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए वह आसिफ जी की तरफ से मैसेज आ चुका है एंड आपका स्वागत करते हैं। बाबू अंसारी जी लिख रहे हैं बाराबंकी से, गुड आफ्टरनून अति मैम जी, कैसी हैं आप, आज फ़ोन में देर से कर रहा हूँ, पता नहीं सॉन्ग पूरा बजेगा या नहीं। अब ये तो भैया आपके सॉन्ग पर डिपेंड करता है और कब आपने कॉल किया है इस पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे अरविंद मौर्या जी की तरफ से है और ये गाना हमारे सारे मेल लिसनर्स के लिए डेडिकेटेड है।

और आप सुन रहे थे अरविंद मौर्य जी की फरमाइश। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, पेश करते हैं हमारे मुशीब जी की फरमाइश है ऐ मेरे दोस्तों। एंड इसी के साथ आपके चैट बॉक्स में जो मैसेज आ रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। हमारे पास जो मैसेज आया है वो आया है आसिफ जी का फ्रॉम हैदराबाद, और आप लिख रहे हैं, हर धड़कन में एक राज होता है, हर बात को बताने का एक अंदाज होता है, जब तक ठोकर ना लगे बेवफाई की, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। अरे वाह, मतलब दिल तोड़ने वाली शायरी कहाँ से लाए आप। एंड इसके अलावा भैया ये बताइए कि हमने आरी वजह से कौन सी शर्त हार गई। अरीबा जी हमने क्या कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया हमसे जो आप अपनी शर्त हार गई।

0: वो सितम है कहीं बे वफा।
1: और आप इंजॉय कर रहे थे हमारे मुसीब जी की फरमाइश जाल फिल्म से है मेरे दोस्त। मिथुन चक्रवर्ती पे फिल्माया गया गाना मोहम्मद अजीज की आवाज थी, अनु मलिक साहब का संगीत। और अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास देवी प्रसाद जी की तरफ से आया है, हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है। तो एंजॉय करते रहिए देवी प्रसाद जी की फरमाइश। हम मिलते हैं अगले गाने पर जो कि हमारे सतीश जी की है फ्रॉम हरदोई।

और ये फरमाइश थी माई देवी प्रसाद जी की। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और हम एंजॉय करेंगे मुझे नौ लखा दिला दे फ्रॉम शराबी फिल्म। फरमाइश है हमारे सतीश जी की फ्रॉम हरदोई, तो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पर। लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं। राज मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गोंडा से, आपका स्वागत करते हैं। एंड ओके देवी प्रसाद जी का गाना बहुत सही है, थैंक यू सो मच आसिफ जी। इसके अलावा तू साथ हो तो दुनिया भी हंसी लगती है, वरना ये जिंदगी भी अधूरी लगती है। क्या बात है भैया। अरीबा जी ने लगाई थी शर्त, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं अरीबा जी, जिसका कॉल पहले था उसकी गाने भी पहले बज गए।

बहुत ही प्यारी फरमाइश थी और मुझे लगता है ये हर शादी की जान है, मुझे 9 लाख मंगा दे रहे। अभी फिल्म से आप इंजॉय करते सतीश जी की फरमाइश। अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ जो कि हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति की है फ्रॉम मथुरा, और वो सुनना चाहते हैं गुटरगू। यानी कि मुझे लगता है ना हमारे शारदा जी को कबूतर बहुत ज़्यादा पसंद है, अगली बार तोहफे में हम आपको कबूतर ही देने वाले हैं। तो इन्जॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने पर। ये गाना डेडिकेटेड है अनु जी को। अगली फरमाइश हमारे पास है रीना शर्मा जी की, अमित कुमार जी की, निशा जी की, और उसके बाद हमारी फरमाइश है रईश जी की, ज़ारा खान की, अरीबा जी की, अरीबा के बाद शानिया जी की, जो सॉरी शनाया जी की। ओके, तो आपका भी वेलकम करते हैं, आप हमें चैट बॉक्स में नजर आ चुकी हैं, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून कोना में।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, जो कि हमारे पास आया है उत्तराखंड से। इंजॉय करते रहिए एंड हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के हमारी अगली फरमाइश। मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप इंजॉय कर रहे हैं अरे ओ शोख कलियां, मुस्कुरा देना जब किसी की याद आती है।

वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं अगले गाने पर, पेश करते हैं अमित जी की फरमाइश पर और क्यों कि भैया नवरात्रि चल रही है और ये गाना ना प्ले हो तो क्या नवरात्रि चल रही है। गाने का नाम है नगाड़े संग ढोल बाजे, क्योंकि भैया डांडिया बहुत जगह होने वाला है गोंडा में, तो अगर आप जा रहे हैं तो मुझे बताइए। हाय एवरीवन, हेलो प्रमुख जी, वापस स्वागत करते हैं आपका कॉलर ट्यून गोंडा में।

और ये फरमाइश थी हमारे अमित कुमार जी की, नगाड़े संग ढोल बाजे, वैसे बाजेंगे बाजेंगे सब बाजेंगे। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। और ये क्या भाई, हम बहुत ही एनर्जेटिक बीट के बाद चलने वाले हैं सीधे एक हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग की तरफ, और वो सॉन्ग कुछ और नहीं, निशा जी की फरमाइश है, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। ओके, क्यों मिलके आ रहे हैं, बस ये सवाल जरूर कीजिएगा उनसे। एंड यहाँ पे किसी को सोना नहीं है, आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोना, रीवा जी आपका स्वागत करते हैं। अब आंख खुली मेरी ये सॉन्ग सुन के। ओके, तो आपकी आंखें खुल चुकी हैं, जाके पानी से मुंह धोकर आइए, इसके बाद हम आपकी फरमाइश में मिलते हैं।

और ये फरमाइश थी हमारी निशा जी की, फिर बेवफाई 2007 में रिलीज किया गया था। बहुत ही प्यारा सा नगमा था, या फिर कहें तो बहुत ही दर्द भरा नगमा था। एंड यहाँ पर रोने की तैयारी हो चुकी है हमारे चैट बॉक्स में, भैया रो लीजिए लेकिन साथ में नैपकिन भी रखिएगा, क्योंकि रोते टाइम मेरी तो नाक ही बंद हो जाती है, इसलिए रोते भी नहीं है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अब रोना धोना बंद कीजिए, क्योंकि हमारी शादी में बचे हैं हफ्ते चार, ऐसा कहना चाहते हैं हमारे रईस साहब। चार हफ्ते बाद सबको दावत मिलेगी दोस्तों, पहुंच जाइएगा चौक।

हूँ तो मैं बिरयानी ही खाने जाऊंगी और उसको लेकर वापस आ जाऊंगी अपनी कुर्सी पर। फिलहाल के लिए आप सुन रहे थे रईस साहब की फरमाइश। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, और अगला गाना है जब तुम आ जाते हो सामने। कौन आ जाता है? अरीबा जी और हमारी गुलफशा जी। किसके सामने? जारा जी के सामने। अब आइए देखते हैं कि इस गाने के अंदर और क्या कुछ कहना चाहती है हमारी जारा जी, अरीबा जी और गुलफशा जी से। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 90s का बेहद ही प्यारा सा नगमा, सोनू निगम कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, जब तुम आ जाते हो सामने। हम मिलते हैं अगले गाने पर, जो कि हमारी अरीबा जी का है, शनाया जी का है, बाबू अंसारी जी का है और इम्तियाज जी का है।

एंड वक्त को मद्देनजर रखते हुए इस गाने को यहीं पे रोकने के लिए माफी चाहेंगे। फिलहाल आइए ट्यून करते हैं हमारी अगली फरमाइश, जो कि हमारे महेंद्र जी की है। बहुत देर से आपकी फरमाइश पड़ी हुई थी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका नाम अनाउंस नहीं किया था महेंद्र जी। और इसके बाद है हमारे अरीबा जी की फरमाइश, इसके बाद है शराया जी की, बाबू अंसारी जी की और इंदिराज जी की।

बहुत ही प्यारा फरमाइश था आपका महेंद्र जी एंड रोशनी जी की एंट्री हो चुकी है, आपका स्वागत करते हैं। और आते कहा है, अरे भैया क्या हो गया भैया। इसके बाद लिखा है हमारे कुमार जी ने, हे आरजी अनहोनी, ओहो फायर मोड ऑन। हां जी, और आप आए हैं बहुत देर से लेकिन दुरुस्त आए हैं, इसके लिए अच्छी बात है, आपका वेलकम करते हैं। कॉल ट्यून गोना में अग्नि फरमाइश को पेश करते हैं जो कि ओके, तो आपका कल वाला गाना है अरीबा जी, और कल का गाना अब हमको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कल का गाना खो चुका है। क्या ख्याल है, ढूंढ लिया जाए? चलिए ढूंढ लेते हैं, और हमको ये गाना मिल भी चुका है, और ये ऑफ कोर्स ये गाना है अक्सर इस दुनिया में धड़कन फिल्म से। आप इंजॉय करते रहिए अरीबा जी की फरमाइश। हम मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, जो कि ऑफ कोर्स आपकी अपनी कॉल ट्यून में होने वाली है हमारी शनाया जी की। स्टे ट्यून्ड।

और ये गाना तो था भैया हमारे अरविंद जी को डेडिकेटेड, एंड थैंक यू सो मच मुझे डेडिकेट करने के लिए हमारी अरिबा जी। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और अगला सॉन्ग पेश करते हैं हमारी शनाया जी की फरमाइश पर। इसके बाद बैक टू बैक हम एंजॉय करेंगे दो और नगमे और उसके बाद हम आपसे चाहेंगे इजाजत।

चुराया मेरे यार। और ये फरमाइश थी हमारी बाबू अंसारी जी की, और इसी के साथ अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जो कि हमारी आखिरी फरमाइश है। इसको प्ले करने के बाद रेनु तिवारी जी, आपसे मैं माफी चाहूंगी, आज आपने बहुत देर से कॉल किया है जिसकी वजह से आपकी गाने को हम प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्त हो चला है अब विदा लेने का। पर कल आपका वह गाना जरूर से प्ले किया जाएगा, प्लीज आप कल थोड़ा जल्दी कॉल कीजिएगा आपके अपने कॉल ट्यून गोना में। और आप रखिए अपना ख्याल, कल तो भैया है वेंसडे, और आप जानते हैं कि वेंसडे को हम मिलते हैं सुबह 8:30 से 11, देन 3 से 4, यानी कि कल दो बार मुलाकात होने वाली है आपसे। मेरी तो जाएगा कहीं नहीं, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। आज का शो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। एंड बहुत बहुत शुक्रिया राज मौर्य जी आपका, इट्स कुमार जी आपका, प्रमुख जी, गुलाब शाह जी, अरविंद जी, इट्स कुमार जी, पप्पू जी एंड रोशनी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे शो में। एंड अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है विज्ञान शाला में, और मैं हूँ आपके अपने आज बिना लाइव आपके फेवरेट शो, और जहाँ बातें होती हैं विज्ञान की, ज्ञान की, और आप सीखते हैं आपके जिज्ञासा से, यानी कि लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। आज आपसे बात करने के लिए तो मैं बैठी हूँ, लेकिन आपको बहुत कुछ बताना है किसी खास दिन के बारे में। आप सोच होंगे आज कौन सा खास दिन है, तो मैं आपको बिना देर के बताना चाहती हूँ एक खास दिन के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें जागरूक करने के लिए होती है, अवेयरनेस। यानी कि बहुत सारी चीजें हम लोग को आसपास लोग बताते हैं, हम लोग सुनते हैं, कभी सुनते हैं तो कभी इग्नोर कर देते हैं। पर अगर कुछ खास और कुछ बेहतरीन की बात करें, तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सीखना, ये जानना कि अवेयरनेस किस चीज़ की ज़रूरी है। अभी हाल ही में हमने जंक फूड डे मनाया, तो जंक फूड की अच्छी चीज़ें भी हमने डिस्कस की, और जंक फूड की बुरी चीज़ें भी, कि मतलब जंक फूड अगर खा रहे हैं तो कैसे खाएं, फ्रिक्वेंसी क्या हो, कौन सा जंक फूड सही है, कौन सा जंक फूड सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस हर चीज को लेके होनी चाहिए, चाहे वो आप हाथ में यूज कर रहे हैं मोबाइल हो, या कोई भी चीज जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जो हमारी लाइफ में डेली हम यूज कर रहे हैं, या हमारे कह सकते हैं कि हमारी लाइफ को हैप्पीली जीने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं बात करना चाहूंगी आप सभी के साथ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा डे है, अब इसके बारे में क्या पता चलने वाला है। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये दिन पहले तो क्यों मनाया जा रहा है, और इसके लिए मैं जागरूकता की बात क्यों कर रही हूँ। तो हर साल 28 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस या वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसका उद्देश्य है वायरल, यानी कि एक ऐसी डिजीज की बात करना जो कि लीवर में सूजन का कारण बन सकती है, और ये बीमारी वैश्विक रूप में फैली बीमारी है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीजों की बात आज हम लोग करेंगे। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये दिन मनाया क्यों जा रहा है, 28 जुलाई को क्यों मनाया जा रहा है। अक्सर आपके दिमाग में जब भी कोई स्पेशल डे मनाते हैं तो ये जरूर आता है कि इसी तारीख को क्यों, और कोई तारीख क्यों नहीं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये दिन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलबर्ग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इसके निदान यानी कि इसके टेस्ट और टीके का विकास किया। यानी कि सबसे पहले तो टेस्ट से हमें पता चलना चाहिए ना कि हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी का या ए का या जो भी हेपेटाइटिस है उसका वायरस है या नहीं है, तो टेस्ट के माध्यम से ही पता चलता है। हेपेटाइटिस के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी बात करने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि क्या आपने बचपन में वैक्सीनेशन कराया है या नहीं कराया है। अगर कराया है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन कौन सा वैक्सीनेशन आपने कराया है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मुख्य रूप से हेपेटाइटिस जो वायरस है वो 5 प्रकार का है, ए बी सी डी और ई। हेपेटाइटिस बी और सी मिलकर सबसे आम संक्रमण करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष की अगर मैं बात करूँ तो 1.3 मिलियन मौतें होती हैं, और 2.2 मिलियन नए संक्रमण होते हैं। तो बहुत ही खतरनाक है, और निदान उपचार की अगर बात करें तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें परीक्षण करना है, उपचार करने के बाद इसको समझना है किस हद तक फैला हुआ है ये वायरस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी भी त्वरित कार्रवाई की अगर बात करें तो 2030 तक WHO ने उन्मूलन लक्ष्य तक पहुंचाने की संभावना बताई है। तो सबसे पहले तो हेपेटाइटिस डे का जो इतिहास है उसकी थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलबर्ग ने हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की, इसके बाद इस वायरस से जो जुड़े जो कहते हैं टेस्ट है उनकी खोज की और वैक्सीन का विकास भी किया। डॉक्टर बलबर्ग की इस खोज के सम्मान में हर साल उनके जन्म दिवस को 28 जुलाई को हाइपेटाइटिस डे मनाते हैं एज अ विश्व मतलब सेलिब्रेशन के तौर पे, वर्ल्ड सेलिब्रेशन के तौर पे। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2008 से की गई। अब इसके महत्व को भी समझते हैं। हाइपेटाइटिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके प्रति लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। लोगों को इस बीमारी के प्रति सचेत करने के लिए इस खास दिन का महत्व लोगों तक पहुंचाने के लिए आज मैं बात कर रही हूँ। जागरूकता के अभाव में दुनिया भर में लोग हाइपेटाइटिस की चपेट में आ जाते हैं। लीवर से जुड़ी इस बीमारी के कारण जान का खतरा बन जाता है। दुनिया भर में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए खास जो कहते हैं ना कि प्रोग्राम या जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब को भी इस चीज से जुड़ी मतलब जितनी भी जानकारी है वो इकट्ठा करनी चाहिए और इकट्ठा करने के साथ साथ आपको समझना होगा कि ये बीमारी किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो ना सिर्फ हम अवेयर हों बल्कि हर वो छोटी बड़ी चीज की जानकारी अपने तक रखें कि कैसे ये बीमारी कहां से आती है, कैसा संक्रमण होता है। और मैं आप लोग को सच्ची बताऊं तो मैं आज इस पूरी डिजीज के बारे में विश्लेषण करना चाहती हूं। और आप लोग अगर मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोग को अच्छे से इस जानकारी, इस बीमारी से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान से एकदम सुनिए कि कैसे क्या ये बीमारी है और इससे आपके शरीर में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और अगर प्रभाव दिख भी रहे हैं तो आप कैसे खुद को बचा सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बस सबसे पहले तो समझिए कि हाइपेटाइटिस क्या है। ये एक तरह से आपके लिवर का सूजन है, लिवर में आने वाली सूजन है जो कि वायरस की वजह से आती है जो आपके लिवर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसका महत्वपूर्ण जो कार्य है जैसे कि आपके लिवर का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको रोक देती है। हाइपेटाइटिस अक्सर हाइपेटाइटिस वायरस के कारण होती है। वायरल हाइपेटाइटिस अमेरिका में सबसे आम हाइपेटाइटिस ए सी बी में से एक है। ठीक है, लोगों में लिवर के अतिरिक्त जो वसा है यानी कि फैट है इसके अलावा आपके वायरस के अलावा किससे हो सकता है, तो बहुत ज्यादा शराब के सेवन से भी आपका लिवर डैमेज हो सकता है मतलब लीवर में सूजन आ सकती है। नशीली दवाइयों का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो भी आपके मतलब लीवर में सूजन आ सकती है और कोई विषैली चीज आपके शरीर में जा रही है उससे भी आपके हाइपेटाइटिस हो सकता है। मतलब सिर्फ वायरस से ही नहीं इन चीजों से भी आपको जो ये संक्रमण है वो हो सकता है। अब अन्य वायरल संक्रमण की बात करूँ तो एप्स्टीन बार वायरस जिसे ईबीवी भी बोलते हैं, इसके अलावा सी एमवी भी बोलते हैं जिसको साइटोमेगालो वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ दवाइयों से सही हो सकता है। कुछ चिकित्सीय स्थिति है जैसे मधुमेह, मोटापा, इन सब चीजों की वजह से भी आपका लीवर में सूजन आ सकता है। अब हाइपेटाइटिस से पीड़ित कई लोगों में लक्षण जो है वो अलग अलग दिखते हैं, इनमें पता नहीं चलता है कि संक्रमण कैसा है। तीव्र हाइपेटाइटिस की अगर बात करूं तो हल्का बुखार रहेगा, थकान, भूख नहीं लगेगी, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, गहरे रंग का पेशाब, हल्के रंग का या भूरे रंग का मल होगा और मांसपेशियों में बहुत दर्द होगा, खुजली होगी त्वचा में, पीलिया हो सकता है और आप बहुत अस्वस्थ महसूस करेंगे। अगर क्रॉनिक वायरल हाइपेटाइटिस की बात करूं तो 2 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक या फिर दशकों तक समय लग सकता है इसका इलाज करने में। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में वायरल हाइपेटाइटिस एक गंभीर और जानलेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। जीवन रक्षक उपचार प्राप्त करने का पहला कदम जांच करना है और सभी वयस्कों को हाइपेटाइटिस बी और हाइपेटाइटिस सी की जो जांच है वो हमेशा करानी होती है। हाइपेटाइटिस के 5 प्रकार जो कि मैंने पहले भी बताए ए बी सी डी और ई, ठीक है, हाइपेटाइटिस बी और सी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं यानी कि ये दुनिया भर में फैलने वाले सबसे ज्यादा हाइपेटाइटिस है। हाइपेटाइटिस के कई अन्य प्रकार भी हैं, इनमें शामिल हाइपेटाइटिस एफ जो कि एचएफ के नाम से फेमस है, हाइपेटाइटिस जी भी है इसमें, टी भी है इसमें और ये काफी सारे मतलब इसके प्रकार है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, लोगों में ये बीमारी कम कॉज होती है ये। ठीक है, तो हम मेन जो है उनके में बात कर लेते हैं कि हाइपेटाइटिस ए बी सी डी और ई में अंतर क्या क्या है। हाइपेटाइटिस ए बी और हाइपेटाइटिस सी ये 3 अलग अलग वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इनके जो प्रत्येक लक्षण है वो समान होते हैं, इनमें फैलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ये लीवर को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। आगे मैं बात करूँ हाइपेटाइटिस ए को आमतौर पर अल्पकालिक भी कहते हैं। हाइपेटाइटिस बी और सी जो है ये अल्पकालिक के साथ शुरू होते हैं लेकिन आगे आपके शरीर में लंबा संक्रमण पहुंचा सकते हैं। कुछ ही देर में हम लोग फिर बात करेंगे हाइपेटाइटिस के बारे में, तब तक के लिए छोटे से म्यूजिकल ब्रेक को एंजॉय करिए और वापस से आरजेबीना लाइव होंगी आपके लिए एक अवेयरनेस वाली जानकारी के साथ। तो बिल्कुल जागरूक होंगे आरजेबीना के साथ, लेकिन अगर आप लाइव हैं, सुन रहे हैं आरजेबीना के साथ शो आपका वाला विज्ञान शाला, तो डेफिनेटली आपका फेवरेट फ्रिक्वेंसी 99.6 FM आपके लिए तैयार है।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा। गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: वापस से आरजे बीना आपके साथ लाइव है आपके वाले शो विज्ञान शाला में, जहां लर्निंग होती है बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। तो जिज्ञासा तो आपकी बरकरार होगी कि और कौन कौन से हाइपेटाइटिस के बारे में आरजे बीना बताने वाली हैं। तो बिल्कुल अपनी जो क्यूरियोसिटी है, अपनी जिज्ञासा, उसको बरकरार रखिए और जानिए कि और कौन कौन से टाइप के हाइपेटाइटिस हैं। तो ए बी सी के बारे में तो बात हो ही गई थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपेटाइटिस बी और सी ये जो हैं, शुरुआत तो इनकी अल्पकालिक होती है, थोड़े टाइम के लिए दिखते हैं, लेकिन वायरस शरीर में जो है वो बना रहता है, यानी कि लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगा और धीरे धीरे संक्रमण करेगा और लीवर को डैमेज करेगा। अब बात करते हैं हाइपेटाइटिस ए और बी को रोकने के तरीके की। तो इनके टीके उपलब्ध हैं, लेकिन हाइपेटाइटिस सी का कोई भी टीका भी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं हाइपेटाइटिस डी की। HDV वायरस के कारण ये बीमारी कॉज करता है, और साथ ही साथ हेपेटाइटिस ई की बात करें तो HEV वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं, जो कि अमेरिका में आम नहीं है लेकिन लोगों में होती हैं और देशों में फैली हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस एफ के बारे में, जो एक मतलब काल्पनिक वायरस है जिस पर शोध किया जा रहा है, और इसका संबंध जो है वो वायरल हेपेटाइटिस से ही है। मतलब लोग कह रहे हैं हेपेटाइटिस एफ ही है, लेकिन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, लोगों को लग रहा है। अब जी की बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस जी जो है वो HGV वायरस से होने वाली बीमारी है, जो कि यकृत यानी कि आपके लिवर में सूजन की नई खोज पाई गई है। मतलब पहली बार ऐसा देखा गया कि एक ऐसा वायरस है जो सीधे तौर पे सूजन कॉज कर रहा है, ठीक है, और इसके लिए अभी तक कोई टीका वगैरह नहीं ढूंढा गया है। अब आपसे बात करते हैं हेपेटाइटिस टीटी के बारे में, जो कि ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड वायरस है, जिसे टॉर्क टेनो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एक प्रकार का वायरस है, ये खास तौर पे धीरे धीरे फैलता है, रक्त के माध्यम से फैलता है और फिर आपके जो लिवर है उसको क्षति पहुंचाना शुरू करता है। वर्तमान तौर पे अभी इसका अध्ययन चल रहा है, इसके बारे में और रिसर्च की जा रही है। तो आप सोचिए कि ये बीमारियां कॉज करने वाले जो वायरसेस हैं, ये धीरे धीरे हमारे शरीर में अपनी जगह बना रहे हैं और हम अपनी जिंदगी में मस्त घूम रहे हैं, बिल्कुल भी परवाह नहीं अपनी कर रहे हैं। तो आगे मैं बात करूंगी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की। ये तब होता है जब आपके शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली जो प्रतिरक्षा जो क्षमता है, यानी कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, तभी हमारे शरीर में जो हमारी लिवर की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन पे हमला करता है। अगला है नवजात हेपेटाइटिस। ये जो है लिवर में सूजन कॉज करता है, ये केवल प्रारंभिक यानी कि जो जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं 1-2 महीने के, उनमें कॉमन होता है, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है। अब बात करते हैं कैसे फैलता है, एक इंसान से दूसरे में कैसे जाएगा। तो वायरल हेपेटाइटिस का जो संक्रमण है वो आमतौर पे जो हम आसपास लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उससे भी होता है। सभी वायरस का संक्रमण जो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग तौर पे होता है। अब मैं बात करूंगी जो ए बी सी डी ई की है, तो इनके तरीके की। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से होता है। हेपेटाइटिस बी सी डी जो है वो संक्रमण जो है व्यक्ति के रक्त के संपर्क में होता है, यानी कि अगर किसी को संक्रमण है वो अपना रक्त किसी दूसरे को, ब्लड किसी और को दे दे तो ये फैल जाएगा, ठीक है। और ये नसों में ड्रग्स के तौर पे भी, सुइयों के माध्यम से भी जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और डी यौन संपर्क से भी फैलता है, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाने से भी ये फैलता है, और प्रसव के दौरान माँ से बच्चे में भी जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। तो हेपेटाइटिस से पीड़ित कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उन्हें हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हर 2 में से 1 व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है, और ये जो संख्या वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में भी हेपेटाइटिस से जुड़े मामले सामने आते हैं, पर उतने नहीं जितने अमेरिका में है। अब मैं बात करूंगी कुछ खास चीजों की जिनके बारे में बात होनी चाहिए। और अभी 15 मई को हिस्पैनिक हेपेटाइटिस जागरूकता दिवस मनाया गया था, और आज यानी कि 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस ए एक अत्यधिक संक्रमण करने वाला, आम तौर पर अल्पकालिक यकृत संक्रमण की बीमारी है, जो एक व्यक्ति से दूषित भोजन और पानी की वजह से फैलती है दूसरे में, और भाई टीकाकरण ही एक तरीका है जो इसको रोक सकता है, ठीक है। तो हमें जो है खास तौर पे उन व्यक्तियों की सुरक्षा करनी है जो हेपेटाइटिस ए की दर जो है 30 से 39 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इनको हमें कहीं ना कहीं बचाना है, और इनके शरीर में जो वैक्सीन है वो भी इजीली काम नहीं करती, इनकी बॉडी एंटीबॉडी ऑलरेडी बना चुकी होती है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की, जो कि दुनिया में सबसे आम और गंभीर बीमारी मानी जाती है और ब्लड से इसका संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये एक प्रकार से लीवर संक्रमण की एक खास तरह की बीमारी है। ये अल्पकालिक होने के साथ साथ भी दीर्घकालिक है, क्योंकि इसके वायरस आपके बॉडी में हमेशा रहते हैं। ये आपकी बॉडी में आपके ब्लड, आपके बॉडी के शुक्राणु और आपकी बॉडी में मतलब जितने भी तरल चीजें उन सब में मौजूद हो सकता है इसका वायरस। तो ये संक्रमण सबसे पहले तो हमें अपनी जांच कराना रेगुलर तौर पे बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी रेगुलर जांच नहीं कराएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें ये बीमारी है। हेपेटाइटिस बी जो है बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो बच्चे में माँ से फैलता है, और हालांकि जन्म के तुरंत बाद दिए जाने वाले जो टीके होते हैं वो कुछ ही हफ्तों में इसका जो संक्रमण है वो रोक देते हैं और 100% सुरक्षा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जागरूकता आप लोग के लिए जरूरी है कि बच्चे के जन्म के बाद जो भी इंजेक्शंस लगने होते हैं, जो कार्ड बना के सरकार देती है, उसको बिल्कुल अपने साथ मतलब आप एक समझ लीजिए कि आप अपने आप को भूल जाइए। 5 साल तक जितने भी इंजेक्शंस लगने हैं, जितनी भी वैक्सीन्स लगनी है, वो कार्ड आपके साथ हमेशा होना चाहिए। आप एक बार अपना आधार कार्ड भूल जाइए कहीं आते जाते समय, लेकिन वो वैक्सीन कार्ड आपको 2-3 साल तक तो नहीं भूलना होता, क्योंकि उसमें 2-4 महीने पे ही वैक्सीन लगनी होती है और उसमें हेपेटाइटिस के कई सारे वैक्सीन हैं। तो मेरे तरफ से तो ये जो था मतलब आप लोग को जानकारी वो एक अवेयरनेस के तौर पे थी, और मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बताना चाहती हूँ जो आपको समझनी है। वो है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो बच्चों में आम है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा। बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। ये एक अगेन लीवर संक्रमण की बीमारी है जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस यानी कि HCV से होती है, और ये रक्त के संपर्क से ही फैलती है इंजेक्शंस या इंजेक्टेबल के माध्यम से। और कहते हैं कि ये बीमारी जो है वो उपकरणों के साझा करने से भी फैल जाती है। कुछ लोगों के लिए हेपेटाइटिस सी एक अल्पकालिक बीमारी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यानी कि 80% लोगों के लिए दीर्घकालिक बीमारी है, क्योंकि उनके बॉडी में ये वायरस हमेशा रहता है। इलाज की बात करें तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी के परिणाम स्वरूप साइरोसिस, लीवर कैंसर और मृत्यु भी हो सकती है। तो इतना हल्के में मत लीजिएगा कि हेपेटाइटिस बीमारी आ रही है ऐसे ही है, नहीं। अगर आपने इसको हल्के में लिया तो आपके शरीर में ये अपना घर बना लेगी और आने वाले समय में आपका शरीर जो है इसका मतलब कह सकते हैं शिकार हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ खास जानकारी हुई जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़े से आंकड़े आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ, जिनकी बात काफी देर से सोच रही थी बताऊंगी। आंकड़े सुन के आपको थोड़ा सा और गंभीरता महसूस होगी इस बीमारी को लेके, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आंकड़ों के बारे में डिस्कशन करूंगी। लेकिन तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वापस से आप सभी का स्वागत है विज्ञान शाला में। और आपको बता दूं कि मैंने आंकड़े बताने की आपको बात कही थी, और देखिए चलते चलते कुछ ऐसी चीजें भी जान लेनी चाहिए जिनके बारे में हमें ना पता हो। तो अगर HCV हेपेटाइटिस है आपको, तो ये ना तो भोजन, ना पानी या मच्छरों के माध्यम से नहीं फैलता, बल्कि ये आपके जो कहते हैं ना पीड़ित लोग होते हैं जिनको ये बीमारी होती है, वो खास तौर पे अपने जो कहते हैं ना संक्रमण को रोक सकते हैं, वो भी एंटी स्टेज जो डिसीज से जुड़ी जो वैक्सीन होती है उनको लेकर। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और जो लक्षण की बात करें तो 2 से 12 दिन के अंदर हेपेटाइटिस के लक्षण आपको दिख जाते हैं। ज्यादातर लक्षण यही है कि आपको भूख नहीं लगती, हल्का बुखार रहता है और ये त्वचा में पीलापन आ जाता है आपके, क्योंकि ये लीवर की डिजीज है तो पीलापन जरूर आएगा। पीलिया भी आपका इसी लीवर से होने वाली बीमारी है, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ आंकड़े जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2022 के दौरान लगभग HCV के जो आंकड़े थे 93,805 आए थे, और अगर 2022 की बात करें तो 67,400 तीव्र HCV के संक्रमण थे, जिनमें 4,848 मामले नए थे, पुराने जो थे वो थे 67,400। अब मैं बात करना चाहूंगी, पुरानी HCV संक्रमण दो आयु समूहों में सबसे अधिक होता है, एक तो 25 से 45 वर्ष और दूसरा है 55 से 70 वर्ष। और अगर मैं बात करूं 30 से 39 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों की, तो इसकी दर इसमें सबसे अधिक होती है, यानी कि तीव्र HCV फैलता है, यानी कि जो हेपेटाइटिस HCV है वो तेज फैलता है। ठीक है, 2013 से 2020 के बीच की बात करें तो तीव्र HCV संक्रमणों की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है। फिर 2022 में लगातार एक दशक से अधिक समय तक वार्षिक वृद्धि के बाद पहली बार एक HCV संक्रमण की अनुमानित संख्या में गिरावट आई, लेकिन फिर भी 67,400 मामले अपनी उच्च स्थिति पर बने रहे। हालांकि 2022 में तीव्र HCV से जो मामलों की संख्या है 2015 की तुलना में दोगुनी ही थी अभी। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगी क्रोनिक एचसीवी की, जो कि 65% जो है पुरुषों में पाई जाती है, और गैर हेपेटाइटिस या गैर हैप्पी नेक जो अमेरिकी भारतीय या जिनको बोलते हैं अलास्का मूल निवासी, इन व्यक्तियों में जो क्रोनिक एचसीवी मामले हैं वो उनका दर जो है 2022 में काफी अधिक था। अब एक्यूट एचसीवी की बात करें पुरुषों में तो 30 से 39 वर्ष की आयु में होता है। ये जो है AN व्यक्तियों में ज्यादा, NRI व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये बाहरी देश से आते हैं। तो सबसे पहले तो 2022 के हेपेटाइटिस की जो संख्या है उसमें 12,717 मौतें भी हुई थी 2022 में। SCV से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई पहले की तुलना में, लेकिन मौतें इतनी हुई थी। तो ये डराने वाले आंकड़े हैं। इन सबसे हमें कहीं ना कहीं समझना है कि ये बीमारी किस हद तक हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपसे यही कहूंगी कि आप लोग को जो चाहे आपका TT वायरस हो, चाहे G वायरस हो, चाहे F वायरस हो, ये भले कॉमन नहीं है, दिखते नहीं है, इनके लिए भी आपको बचाव कार्य करने हैं। और हमें अपने शरीर को बचाने के लिए जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जाती है उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो ऑटो इम्यून की बात हम लोग फिर कभी करेंगे, लेकिन हाँ मैं आपसे ये बताना चाहूंगी, शराब से प्रेरित जो हेपेटाइटिस है उससे तो हम बच सकते हैं। तो कम से कम आप लोग आसपास जो भी इंसान शराब का सेवन कर रहा है उसे जरूर बताएं कि आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, आपका लीवर फेल हो सकता है। लीवर फेल होने का मतलब ही यही है कि आपको हेपेटाइटिस हो गया। तो आप बस अपना ध्यान रखिए, जो भी निर्देश है उनका फॉलो करिए, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना ध्यान रखिए और जागरूकता अपने तक मत रखिए, लोगों को भी बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना रेडियो स्टेशन गैंसली 89.6 FM सुनते रहिए। आप सुन रहे थे विज्ञानशाला RJ बिना के साथ।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ipbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाकर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय माता दी, वट एवर फो यू फील कनेक्टेड विद। और मैं आपकी अपनी आरजे बीना, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो, जहां बातों में अपनापन, गानों में मिठास और हर दिल के लिए है कुछ खास। गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, आप सभी का स्वागत है। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब नित्य ही जो ये ऊर्जा है इसका संचालन बढ़ता जा रहा है और हम अंधकार से उजियारे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में हर दिन उतना ही खास है जितना कि पहला, दूसरा या तीसरा। चाहे कितनी भी कोशिशों करने के बाद आपको रास्ते ना दिख रहे हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि मुश्किलें धीरे धीरे कम होंगी। आपके मन में विश्वास और हृदय में साहस है तो हर चुनौती का आप सामना कर पाएंगे। आज का दिन माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र घंटे के आकार का दिखाई देता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। माँ का स्वरूप हमें दिखाता है और समझाता भी है कि नारी केवल ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने वाली शक्ति भी है। आसमान में आज अगर आप चांद को देखेंगे तो माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। कोई भी कहीं भी बैठा है तो वो एक बार आसमान में जाके एक बार मेरे कहने से चंद्रमा को जरूर देखें। आपको महसूस होगा कि चांद भी आज माँ चंद्रघंटा को समर्पित अपनी छवि दिखा रहा है। नवरात्रियों का जो तीसरा दिन है, आज की जो आराधना है वो भी बड़ी महान है। ये शांति, साहस और वीरता का प्रतीक है। माँ के 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है। उनके स्वरूप में जहाँ एक और दिव्य तेज दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर भक्तों के प्रति करुणा भी दिखाई देती है। पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो माँ दुर्गा के रूप में देवताओं और संसार के लिए रक्षा की भावना है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बुराई के विरुद्ध शक्ति और धर्म की रक्षा करने का संदेश देता है। माँ का मस्तक हमें विश्वास देता है कि उनके हाथ में कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके सिंह हमें निर्भय होकर आगे बढ़ने की जो एक संदेश है वो देते हैं। जीवन में क्या जरूरी है? हाँ, हर परिस्थिति में शांत रहना, सही निर्णय लेना, जब बात सत्य की हो तो पूरे साहस के साथ उसके पक्ष में खड़े रहना। तो आज फिर से शुरुआत करते हैं। आज अध्यायों को शुरू करना था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हम माता के, जो कहते हैं ना कि स्वरूपों का वर्णन तो करते रहेंगे जिस दिन जो भी होगा, अब हम शुरू करते हैं चमन की पुस्तक से सप्शती का हिंदी वर्जन और शॉर्ट वर्जन। अल्प समय में भागदौड़ की ज़िंदगी में अगर आपके मन में भी कुछ है कि हम सुन लें और हमारा कल्याण हो जाए, और ऐसा कहा है वेदों ने भी कि श्रद्धा भाव से एक शब्द आप श्रवण भी कर लें, सुन भी लें, तो आपको उतना ही फल मिलता है जितना कि संपूर्ण पूजा पाठ करने में। तो चलिए सुनते हैं ये सबसे पहले कवच। कहते हैं माँ का कवच जो है वो हमें 10 दिशाओं से रक्षा करता है। इसे नित्य पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए मैं आज आप लोग के लिए पढ़ रही हूँ कि ध्यान से सुनिएगा, आपके मन में ऊर्जा भर देगा ये। और जो जहाँ जहाँ से सुन रहा है वो अपनी अपनी हाजिरी ज़रूर लगा दे। गुड इवनिंग आशु, गुड इवनिंग दीपेन, सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले कवच से शुरुआत करते हैं। अगेन मैं बता देती हूँ, चमन लाल भारद्वाज ने एक छोटी सी कोशिश की थी माँ की सप्शती का सार हिंदी में बताने की और उसे काव्य के रूप में या कहें चौपाइयों के रूप में उन्होंने लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में है, आसानी से समझ में आ जाएगा।

बैल चढ़ी माहेश्वरी हाथ लिए हथियार, हंस सवारी वाराही की मोर चढ़ी दुर्गा को मारी, लक्ष्मी देवी कमला सीना ब्राह्मी हंस चढ़ी ले वीणा, ईश्वरी सदा बैल असवारी भक्तन की करती रखवारी, शंख चक्र शक्ति त्रिशूला हर मूसल कर कमल के फूला, दैत्य नाश करने

जीभा की माता सरस्वती, दांतों की माँ कुमारी सती, इस कंठ की माँ चंडिका चंद्र, घंटा घंटी की कामाक्षी माँ, ठोड़ी की माँ मंगला, इस वाणी की ग्रीवा की भद्रकाली माँ, रक्षा करे बलशाली माँ, दोनों भजाओं की मेरी रक्षा करे धनुधारिणी, दोनों हाथों के सब अंगों की रक्षा करे जगतारिणी, शूलेश्वरी कुलेश्वरी माँ, देवी शोक विनाशिनी,

इसे बनाया। चमन जिसने श्रद्धा से इसको पढ़ा है, सुना जो मुँह मांगा वरदान पाया। जो संसार में अपनी मंगल को चाहे, तो हरदम यही कवच गाता चला जा। बियावान जंगल दिशाओं में तू शक्ति की जय जय जलाता चला जा। तू जल में, तू थल में, तू अग्नि पवन में कवच पहन कर मुस्कुराता चला जा। निडर हो विचार मन जहाँ तेरा चाहे, चमन कदम आगे बढ़ाता चला जा। तेरा मान धन धाम इससे बढ़ेगा, तू श्रद्धा से कवच दुर्गा का जो पढ़ेगा। यही मंत्र यंत्र है, यही तंत्र तेरा, यही तेरे सिर को ही के ही संकट हटाए। यही भूत और प्रेत है भय का नाशक, यही कवच श्रद्धा का भक्ति बढ़ाए। इसे नित्य प्रति चमन श्रद्धा से पढ़कर, जो चाहे वो नित्य मुँह मांगा वरदान पाए। इस स्तुति के पाठ से पहले कवच पढ़ें, कृपा से आदि भवानी की बल और बुद्धि बढ़े। श्रद्धा से जपता रहे जगदम्बा का नाम, सुख भोगे संसार में।

तो ये रही बात कवच की, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए इसलिए पढ़ा गया जिससे कि आपके मन में किसी भी तरह की संशय है कि कहीं पे भगवान ऐसा तो नहीं हमारी रक्षा नहीं कर रहे। जी हाँ, आपके हर क्षेत्र से, मतलब इनफैक्ट अर्श फर्श तन हर अंग की, हर दिशाओं की, इवन ट्रेवलिंग के लिए भी भगवान के लिए हमने प्रार्थना की। तो इसे जिसने भी सुना होगा डेफिनेटली सबके लिए बेनिफिट होगा ये। और हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी जो कहते हैं ना लिगेसी, बहुत छोटेपन पे मैंने सुना था कि इसे सुन के बड़ा अच्छा फील होता था, तो उसी एनर्जी को रिवाइव करने के लिए आपको आज सुनाया गया। वैसे अभी अध्याय पढ़ने का तो मुझे लग रहा है टाइम नहीं बचा है, तो हम कल शुरू करते हैं। एंड चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन और शुरू करते हैं आज की शाम। एंड यस, आपको पता होना चाहिए कि आज लव स्टोरी डे है, लेकिन लव स्टोरी का आज कोई तुक नहीं बनता। तो मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जिसके बारे में सुन के आपके मन में अध्यात्म और पॉजिटिविटी, अध्यात्म तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ कहते हैं ना लिगेसी कैसे बरकरार रखी जाती है वो मैं आपको बताऊंगी, रेडियो से जुड़ी कहानी है वो सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो वापस आ चुके हैं हम आपके पास करने बहुत सारी बात। जैसा कि पता है कि नवरात्रि पर दुर्गा पूजा की जो परंपरा है वो परंपरा ना सिर्फ हमारे क्षेत्र में बनाई जाती है बल्कि पूरे देश भर में अब तो मनाई जाने लगी है, महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना तक हर जगह। और कुछ ऐसे ही मतलब मुझे लगता है गिने चुने क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी ये जो नवरात्रि में दुर्गा पंडाल रखने का आयोजन है वो शुरू हुआ है। कई सालों पहले तक ये बहुत लिमिटाइज था लेकिन अभी ये बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अगर हम अपने इस क्या कहते हैं पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र में दुर्गा पूजा का चलन तो नहीं था, पर हाँ हमारे यहाँ रामलीला का चलन था। रामलीलाएँ होती थीं और दशहरे पर जब रावण का वध होता था तो इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया जाता था। फिलहाल दुर्गा पूजा से भी इस त्यौहार की जो कहते हैं ना गरिमा और बढ़ चुकी है। तो इसी के साथ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो ये आपका हमारा त्यौहार है ये ना सिर्फ कहते हैं कि भक्ति भावना का त्यौहार है बल्कि आप सभी के साथ मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि इस त्यौहार को कहाँ से शुरू किया गया। मतलब मैं दुर्गा पंडाल या दुर्गा पूजा की बात करूँ तो ये सब हम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल से हुई। और कैसे हुई इसी यात्रा को आज समझते हैं बिल्कुल शुरू से। मतलब हमारे मन में भी ये कामना होती है ना कि हाँ कैसे शुरू से बताना, कोई अगर शुरू कर दे तो मज़ा आ जाए। ठीक है, सबसे ख़ास बात तो ये है कि हम सभी को इस पूरी के पूरी वाइब को समझना होगा और जानना होगा कि ये कैसे संभव हो पाया। इतने सालों का जो सफ़र है ये नवरात्रि का और बाकी सारी चीज़ों का, कैसे ये मतलब इतना खूबसूरत बना हुआ है। तो सबसे पहले ये है हमारी डिवोशनल कनेक्टिविटी जो एक दूसरे से एक दूसरे को जोड़ती है, साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि कैसे हम हर दिन हर किसी के साथ इतना नहीं जुड़ते जितना हम फेस्टिवल्स के टाइम पे जुड़ते हैं। तो आज इसी बात की हम बात करेंगे कि कैसे ये शुरू हुआ और कैसे इसको हम और सलीके से समझ सकते हैं। तो पहले तो मैं बात करूँगी वेस्ट बंगाल में जो ये दुर्गा पूजा का चलन है ये कैसे शुरू हुआ और वहाँ पे माँ की जो छवि होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे पंडाल देखे होंगे या मूर्ति देखी होगी, तो वहाँ पे माता की मूर्ति को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनाते। ये चीज़ मुझे बहुत ख़ास लगती है। मतलब हम लोग के इधर जो है अगर अपने इधर की बात करें पूर्वांचल की और इधर हर क्षेत्र की बात करें, मतलब ईश्वर के और मतलब छवि को हम इतना ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज करना, तो वो वहाँ पे नहीं होता है। आपने जितनी भी वहाँ के दुर्गा पंडाल देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में हर जगह,

कि इंतज़ार का भी एक प्रतीक है। ये 9 दिन माता ने, सीता ने बहुत इंतज़ार किया होगा और कामना की हो कि भगवान श्री राम की विजय हो। तो हमें भी मतलब धैर्य रखना चाहिए माता सीता की तरह। और देखिए, सीता माता का धैर्य ही था, जो प्रभु श्री राम, कोई आधुनिकता नहीं थी, आपको पता है कि वो भगवान थे, लेकिन भगवान होने के बावजूद उन्होंने पद यात्रा की थी। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो एकदम मानव के रूप में थे, और वो हमें यही सीख दे रहे थे कि धैर्य नहीं खोना चाहिए। एंड यस, धैर्य ना खोने से आपको हमेशा एंडलेस सक्सेस मिलती है। तो कौन कौन कहाँ से, सविता दुबे जी भी आ चुकी हैं, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, स्वागत है सभी का। तो आज की कहानी, आप लोग कहानी क्या, मैं एक जर्नी पे आपको ले चल रही हूँ, वो जर्नी जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी, और मैं आपको पूरी वेस्ट बंगाल वाली फीलिंग देने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे बंगाली तो नहीं आती, पर हाँ, वहाँ पे जो दुर्गा पूजा का चलन है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई, और ये जर्नी कैसी है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं एक और गाना सुनाती हूँ आप लोग को, जो आपको और कनेक्ट करेगा आपकी इस डिवोशनल जर्नी में। तो अभी काफ़ी ज़्यादा आपने भक्ति सॉन्ग सुन लिए, तो एक और प्यारा सा गाना जो है तो बॉलीवुड से, लेकिन वाइब अच्छी देता है। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

तो जी हाँ, इतना प्यारा सा गाना सुनने के बाद आज की जर्नी और अच्छी होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा ना कि आज उस लिगेसी से शुरुआत करेंगे कि आखिर कब शुरू हुई ये दुर्गा पूजा की परंपरा। ये तो हमने पहले कभी किसी अपने मतलब आध्यात्मिक पुस्तक में या कहीं ये लेख पढ़ा नहीं, लेकिन दर्ज तो है। तो चलिए बात करेंगे आज की, और आज की जो शाम है वो सुरीली होने के साथ साथ बहुत कुछ आपको बताने वाली है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या क्या कुछ होने वाला है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम टुडे। तो चलिए हम आपको बताते हैं और उस जर्नी पे ले चलते हैं कि आखिर वो कौन सा दिन, कौन सा साल और कौन सा समय था जब इतिहास के पन्नों पे हमने दुर्गा पूजा का आवाहन किया। बंगाल के इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएं तो हमें पता चलता है कि 16वीं शताब्दी के अंत में 1576 की ईस्वी थी जब पहली बार दुर्गा पूजा हुई। ध्यान रखिएगा, साल था 1576 और पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन। अब दिमाग में होगा कैसे, उस समय बंगाल अविभाजित था जो वर्तमान समय में बांग्लादेश है। इसी बांग्लादेश में ताहिरपुर में एक राजा कंस नारायण हुआ करते थे। कहा जाता है कि 1576 में राजा कंस नारायण ने अपने गांव में देवी दुर्गा की पूजा की शुरुआत की थी। कुछ और विद्वानों के अनुसार मनु संहिता की टीकाकार कुलुक भट्ट के पिता उदय नारायण ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। मतलब ये दो हमें जानकारियां मिलती हैं कि 1576 में राजा कंस नारायण ने, जो मतलब ये रिसेंट्स में है, इसकी दुर्गा पूजा की शुरुआत की। लेकिन अगर मनु संहिता को पढ़ें तो एक टीकाकार यानी कि ट्रांसलेटर बोलते हैं, मैंने कल भी बताया था, कुलुक भट्ट के पिता उदय नारायण ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। उसके बाद उनके पोते कंस नारायण यानी कि जो राजा थे ताहिरपुर के, उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद उनके पोते कंस नारायण ने शुरू की, और फिर कोलकाता में दुर्गा पूजा पहली बार 1610 ईस्वी में कोलकाता के बड़ीछा यानी कि बेहला

खेर के बाजार में शुरू की गई राय चौधरी के परिवार के द्वारा 8 चाला मंडप में आयोजित की गई थी। तब कोलकाता शहर नहीं था, तब कोलकाता एक गांव था जिसका नाम था कोलिकाता। कोलिकाता गांव था जब पहली बार वहां दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। अब बात करते हैं अश्वमेघ का विकल्प बनी दुर्गा पूजा क्या था। हमारे जो इतिहास को अगर हम पढ़े तो हमें पता चलता है कि पहले अश्वमेघ यज्ञ किए जाते थे। पर अश्वमेघ यज्ञ आप सभी को पता है कि क्या होता है इसमें। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब भाई अश्वमेघ यज्ञ क्या, नाम तो बड़ा सुना है लेकिन इसमें होता क्या है बेसिकली। अब मैं इसके ऊपर से भी पर्दा उठा देती हूँ कि ये अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है। दिमाग में जो सवाल है उनका उत्तर पाना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी की तह तक किसी को ना जाने तब तक हमें समझ में नहीं आता। तो प्राचीन भारत में जो ऐतिहासिक और धार्मिक वैदिक अनुष्ठान हुआ करते थे, शक्तिशाली राजा जो थे, चक्रवर्ती सम्राट जो थे, वो सार्वभौम सत्ता साम्राज्य के सिद्ध करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करते थे। अगर शब्द को तोड़ा जाए तो अश्व मतलब घोड़ा, मेघ मतलब यज्ञ। घोड़े की स्वतंत्र यात्रा यानी कि इस यज्ञ में एक विशेष रूप से चुने हुए पूजित घोड़े को राजा की सेना के साथ 1 वर्ष के लिए खुला छोड़ा जाता था। आगे हम बात करें तो यह घोड़ा जिस राज्य में सीमा से होकर गुजरता था उस क्षेत्र को यज्ञ करने वाले राजा के अधीन माना जाता था। यदि कोई राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे घोड़े के साथ चल रही सेना से युद्ध करना पड़ता था। अब आगे बात करते हैं, यदि कोई राजा विरोध नहीं करता था तो वह बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार करता था। पूर्णता और आहुति 1 वर्ष की यात्रा पूरी होने के बाद घोड़ा वापस राजधानी आता था। फिर 3 दिन तक चलने वाले मुख्य यज्ञ अनुष्ठान सोम रस आहुति और वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा ये जो यज्ञ है वो संपन्न किया जाता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि चक्रवर्ती सम्राट कौन होता है, वही होता है जो अपनी सेना की शक्ति से हर किसी को जीत लेता है। तो चलिए कहते हैं कि इससे जो पाप किए होते हैं राजा ने, अक्सर क्या होता है राजा युद्ध युद्ध करते हैं तो बहुत सारे निर्दोष लोगों की भी उसने जान जाती है। तो इस यज्ञ का विकल्प था ये दुर्गा पूजा, ऐसा लोग मानते हैं। विवेकानंद विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन के प्रोफेसर राकेश दास बताते हैं कि राजा कंस नारायण ने अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ की कामना की थी। उन्होंने इस बात की चर्चा अपने कुल पुरोहितों से की। ऐसा कहा जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ की बात सुनकर राजा कंस नारायण के पुरोहितों ने कहा कि अश्वमेघ यज्ञ कलयुग में नहीं किया जाता, इसे भगवान राम ने सतयुग में किया था, अब कलयुग में इसका कोई फल नहीं, इस काल में अश्वमेघ यज्ञ की जगह दूसरा विकल्प ढूंढा जाए जो कि दुर्गा पूजा हो सकता है। तब पुरोहितों ने उन्हें दुर्गा पूजा महात्म्य के बारे में बताया और पुरोहितों ने ही बताया कि कलयुग में शक्ति की देवी महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा सभी सुख समृद्धि ज्ञान और शक्ति का को प्रदान करने वाली हैं। इसी के बाद राजा कंस नारायण ने धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा की। तब से आज तक बंगाल में दुर्गा पूजा का सिलसिला शुरू हो गया। प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि इतिहास के अनुसरण करते हैं हम तो हमें ये भी पता चलता है कि राजा कंस नारायण की पूजा के पहले दुर्गा पूजा की व्याख्या देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्शती में मिलती है। दुर्गा सप्शती और देवी भागवत पुराण में शरद ऋतु में होने वाली दुर्गा पूजा का वर्णन है। देवी भागवत पुराण में इसका भी उल्लेख है कि भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले शक्ति के लिए देवी माँ दुर्गा की पूजा की थी। देवी भागवत पुराण की रचना की तिथि पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक प्राचीन पुराण है और 6वीं शताब्दी ईस्वी से पहले रचा गया था। इस तरह अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विचारधारा दी गई है। तो हमें मतभेद से क्या मतलब, हमें तो बस ये जानना है कि किसने इसको शुरू किया है कि नहीं। तो आज कहानी तो सुन रहे हैं लेकिन पुरानी कहानी सुन रहे हैं, 500 साल पुरानी। बंगाल में 550 साल से अधिक पुरानी पूजा में विधियों को लेकर थोड़ा परिवर्तन है। फिर भी राजपरिवारों में होने वाली परंपरा दुर्गा पूजा 4 अलग अलग विधियों में होती है। विद्वानों की माने तो पहली विधि है कालिका पुराण की विधि, जिसमें कालिका पुराण के अनुसार। दूसरी विधि है बृहदनदीश्वर विधि के अनुसार। तीसरी है विधि देवी पुराण के अनुसार और चौथी है आखिरी विधि जो कि मत्स्य पुराण के अनुसार है। राज्य के हर जिलों में होने वाली
इन्हीं चार विधियों में पूजा जो है वो संपन्न की जाती है। आगे बात करना चाहूँ तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर सुब्रत मंडल भी कहते हैं कि बंगाल की सदियों पुरानी पारंपरिक दुर्गा पूजा भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी की को ही शुरू हो जाती है। हिसाब से ये पितृपक्ष में भी पड़ती है। कोलकाता के शुभा बाजार राजबाड़ी बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के प्रसिद्ध राज परिवार की दुर्गा पूजा भी इसी दिन से शुरू हो जाती है। इसके बाद षष्ठी के दिन माँ दुर्गा का बोधन होता है। इसमें माँ का आवाहन किया जाता है, बेल के पेड़ की पूजा की जाती है। सप्तमी के दिन नवपत्रिका पूजन होता है। नवपत्रिका पूजन में धान मान अरवी हल्दी का पेड़ जयंती अशोक अनार की डाली बेल की डाली केले के पेड़ के साथ बांध कर पूजा की जाती है। उसके बाद गंगा में स्नान कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवपत्रिका पूजा माँ दुर्गा के नौ रूपों की प्रकृति शक्ति स्वरूपा में पूजा की जाती है। इसके बाद अष्टमी नवमी की संध्या को संधि पूजा होती है। दशमी के दिन पारंपरिक रूप से माता दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। तो ये रही यात्रा, बहुत लंबी सी यात्रा, जिसको सुन के आप लोग का मन भी कहेगा अरे वाह क्या सुनने को मिल गया। तो ये तो था इतिहास, जिसे जान के हर किसी के मन में सोचने के मतलब एक भावना आ जाएगी कि यार ये ऐसे शुरू हुई माँ दुर्गा की पूजा। जी हाँ, और अगर थोड़ा सा और चलें तो ये आयोजन वेस्ट बंगाल से ही शुरू किया गया और लोग कहते हैं कि उस दौरान बैटल ऑफ पलासी भी लड़ा जा रहा था जब ये दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। तो इतिहास में जाके तो हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन अगर हमें अनुसरण करने की बात कही जाए तो हम हमारे पूर्वजों द्वारा जो भी सीख दी जाती है, जो भी परंपराएं दी जाती है, हम उसका अनुसरण करते हैं। बस उसमें दिखावे की भावना ना रख के अगर हम सच्ची आस्था के साथ चीजों को करें तो मुझे लगता है सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं। तो आज ये महात्म में जान लिया आप लोगों ने। अब मैं बात करने वाली हूँ एक और खास चीज की, यानी कि पश्चिम बंगाल में रेडियो पर एक सुबह के सुबह म्यूजिक बजाया जाता है। वो म्यूजिक है एक स्पेशल आवाज में महिषासुर मर्दिनी का स्त्रोत, जो कि मैं थोड़ा सा भी आपको सुनाऊंगी और आप लोग सुन के बताना कि वो स्त्रोत आपको कैसा लगा। हाँ, बस सोच रहे होंगे कि हैं आरजे बिना स्त्रोत सुनाने वाली हैं। जी हाँ, मैं बताने वाली हूँ कि एक ऐसे इंसान जिनको जानना आप लोग के लिए भी ज़रूरी है, एंड वेस्ट बंगाल में लोग एक शख्सियत को भूलना नहीं चाहते। नाम है बीरेंद्र कृष्ण भद्र। बीरेंद्र कृष्ण भद्र खास क्यों है अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले उनकी आवाज़ को थोड़ा सा आप सुनिए।

0: बाबा हूँ।
1: ठीक है काम कर लो तो आ जाऊंगी।
2: सारे काम कारवा में।

0: यैतत् कापे स्तुति सद्य परापरोक्ति स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी वंसूता सुतये कावा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य निधि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादि रूपेण।
1: अब आप लोगों ने ये स्त्रोत नारायणी नमस्तुति सुन ली, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानिए। अब मैं बात करने वाली हूँ बीरेंद्र कृष्ण भद्र की, जिनका जन्म हुआ 4 अगस्त 1905 को और एक प्रसिद्ध बंगाली रेडियो प्रसारक थे, ठीक है। और ये नाटककार भी थे, अभिनेता भी थे और कथावाचक भी थे। वे मुख्य रूप से ऑल इंडिया रेडियो में प्रसिद्ध कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी में अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले चंडी पाठ और श्लोक उच्चारण के लिए जाने जाते थे। जन्म तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनका कोलकाता में हुआ था। उनके पिता राम बहादुर काली कृष्ण भद्र 14 भाषाएं बोल सकते थे। उन्होंने महिषासुर मर्दिनी और महालया 1930 के दशक में कोलकाता के रेडियो स्टेशन से प्रसारित कराया। उन्होंने बणी कुमार द्वारा रचित और पंकज कुमार मलिक के संगीत में निर्देशित बने 90 मिनट के कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी में अपनी आवाज दी। महालया की सुबह उनके चंडी पाठ के बिना बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत नहीं होती। और एक बार तो ये हुआ कि लोगों ने, मतलब जो रेडियो प्रसारण करने वाले थे, उन्होंने इनकी आवाज़ की जगह एक नई आवाज़ को रिकॉर्ड किया, लेकिन लोगों ने इसका पूरा विरोध किया। उन्होंने कहा हमारी सुबह इन्हीं की आवाज़ से होती है। उन्होंने कई शास्त्रीय कहानियों को रेडियो पर नाटक के रूप में दिया था अपनी आवाज़ में। उनका लिखा निर्देशित प्रसिद्ध नाटक मेस मेंबर 49 बहुत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने बिमल मित्र के उपन्यास साहब को मंच पर प्रस्तुत भी किया था। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। कंट्रोवर्सी यानी कि इनके बारे में जब लोगों से पूछो तो उनके मन में एकदम मोहब्बत सी रहती है, पर जब बात आती है कि हाँ परिवर्तन की, तो लोग इनकी आवाज़ से के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये होती है कनेक्टिविटी। अगर हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं दिल से ख़ास तौर पे, तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। और ऐसा कनेक्शन अगर हमारा किसी के साथ हो जाए तो बात ही कुछ और हो। ये सुबह 4 बजे बजाया जाता है, और 4 बजे यानी कि मॉर्निंग में सुबह 4 बजे महालया, जब ज़्यादातर बंगाली जो हैं वो सो रहे होते हैं, लोगों के घरों में जैसे ही आवाज़ गूंजती है उनकी आंखें खुल जाती हैं, ठीक है। यानी कि अगर सरल भाषा में कहूँ तो इनकी आवाज़ के बिना शाम अधूरी है, दुर्गा पूजा अधूरी है। और इसी बात को मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहती थी। इतने साल बीत जाने के बाद, यानी कि 8 दशक बीत जाने के बाद भी बीरेंद्र कृष्ण भद्र की श्रुति मधुर चंडी पाठ पर लोगों का अभी भी अटल विश्वास है। महालया आते ही अब लोग सोच रहे होंगे ये महालया क्या है। अब ये भी बता देती हूँ कि महालया क्या है। वैसे आप में से कोई जानता है तो मुझे चैट रूम में बता सकता है कि ये महालया क्या है। अब आप लोग ने भी सोचा होगा कि ये हम लोग के इधर तो नहीं होता, लेकिन हमें जानना चाहिए। और कहानियाँ जैसे यही होती हैं। और चलिए समझाती हूँ। पितृपक्ष के अंतिम दिन, और इसी दिन से दुर्गा पूजा का जो शुरुआत होती है इसी को महालया बोलते हैं, ठीक है। इस दिन तर्पण श्राद्ध ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद माता का आगमन किया जाता है। जल तिल और कुशा की घास अर्पित की जाती है माता को, ठीक है। और भोर में सुबह 4 बजे महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत, जो कि बीरेंद्र कृष्ण की आवाज़ में चंडी पाठ प्रसारित होता है, इसी को सुन के लोग अपनी सुबह करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महालया के दिन माँ दुर्गा भगवान शिव के निवास कैलाश से अपने मायके यानी कि पृथ्वी पर आने की यात्रा शुरू करती हैं। इस दिन कुमारतली और अन्य स्थानों पर जहाँ माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, महालया के दिन मूर्तिकार देवी की प्रतिमा की आगे आँखें बनाते हैं। इसी पारंपरिक अनुष्ठान को चक्षुदान भी कहते हैं, जिसके बाद मूर्ति को पूर्ण माना जाता है। मतलब आँखें पहले नहीं बना देते, आँखें इसी दिन बनाई जाती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे अब महालया क्या है। महालया पृथ्वी पर देवी दुर्गा की यात्रा की शुरुआत है। पिछले 8 दशकों में अभी तक इतना परिचित चंडी पाठ किसी ने नहीं सुना होगा। हजारों घरों में ये रेडियो शो पर सुना जाता है, इसीलिए बंगाल के लोग अभी भी रेडियो से जुड़े हुए हैं। बंगाली परिवारों में कई वर्षों से ये एक रीति बन गई। जैसे कहते हैं ना कि शादी में रेड कलर पहनना, वैसे ही नवरात्रि में महालया के दिन ये चंडी स्त्रोत सुनने की एक परंपरा बन चुकी है। अब इतनी सारी आपने ज्ञान की बातें जान ली, अब आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इतना कुछ सीखने के बाद क्या जाना, आपको क्या क्या अच्छा लगा। फिलहाल आगे बातें करेंगे, लेकिन जब पॉजिटिविटी और थोड़ी सी स्पिरिचुअल बातें होती है तो आप लोग की संख्या थोड़ी कम हो जाती है, जैसा कि चैट रूम में देख पा रही हूँ। तो चलिए कुछ सवालों के जवाब दीजिए और आप सुनिए अपने पसंद के कुछ गाने, जिससे शाम और सुरीली और मधुर हो जाए। तो सबसे पहला जो गाना मैं आप लोग को सुनाना चाह रही हूँ, गाना है, मतलब सवाल जो करने वाली हूँ वो ये है कि दुर्गा सप्तशती में टोटल कितने अध्याय हैं। जिसको भी आता है वो सबसे पहले आंसर देगा और अपनी पसंद का गाना सुन लेगा।

आंसर आया है आशु का, बिल्कुल सही आंसर है। और पाठक सर हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग, कैसे हैं, आपका भी स्वागत है। तो चलिए हम आशु की फरमाइश का गाना सुनेंगे, जब तक ये फरमाइश करें।

तो चलिए अगले गाने पे चलते हैं और अगले सवाल पे भी चलते हैं। तो चलिए आपसे जानते हैं कि पहली बार भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था, मतलब रेडियो प्रसारण पहली बार भारत में किस वर्ष हुआ था, साल कौन सा था, आपको बताना है। और चलिए सुनते हैं आशु की आवाज़ में गाना, आशु की फरमाइश का गाना, आवाज़ में बता रही हूँ, आशु की फरमाइश का गाना। और ये भी जानना है कि जुगल जी कैसे हैं, जुगल जी क्या हाल है, कैसी चल रही है।

तो भाई आज की शाम रंगीली रही और फिर से आंसर आशु जी ने ही दिया है, तो आशु को फिर से अपनी पसंद का गाना सुनना है तो सुन सकती हैं, बाकी आशु की जगह कोई और गाना कह सकता है तो सुन सकता है। तो भाई आज की शाम में बातें कर ली, लेकिन कल होगी नवरात्रि स्पेशल अंताक्षरी, देखते हैं कौन अपनी जो कहते हैं ना कि जो धूम धड़ाका है उसको बनाए रखेगा और अपनी टीम को जिताएगा। तो कल आप लोग आइएगा नवरात्रि वाली वाइब के साथ खेलेंगे अंताक्षरी, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, एंजॉय करिए ये नवरात्रि की धुन हमारे साथ। आप सुन रहे थे शो गोंडा, मैं सुन मसाला आरजे बीना वाला विद योर फेवरेट आरजे बीना। हैप्पी नवरात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ippbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करें। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
5: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब?
6: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: अरे सुना
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
10: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
11: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
12: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
13: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
14: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94 50 944 999।

सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। क्या हाल चाल है पब्लिक? हाल चाल जरूर बताना, लेकिन इसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली, ओ माई गॉड, अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशा मिश्रा जी लखनऊ से, प्रीति शुक्ला जी बहराई से, प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, धर्मेश त्रिपाठी जी गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, विजय रावत मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, मोहित मालवीय नगर गोंडा से, मालवीय नगर से राजेश कुमार सिंह जी और राजेश कुमार सिंचाई विभाग गोंडा से, राजू सीतापुर से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, निधि कश्यप सीतापुर से और उषा जी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से।

बजरानी बाजार सुनार गली गोंडा से मुमताज अंसारी जी गोंडा से सबीहा गोंडा से आप सभी का स्वागत है। निशा पटेल नगर गोंडा से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश दोस्तों। और पहली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। उनको सुनना है गाना मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सो एंजॉय करते हैं पायल देव और जुबिन नौटियाल का ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आशु जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट्स और सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों माँ चंद्र घंटा का है आज दिन और उनकी महिमा कितनी निराली है आप सभी तो जानते होंगे। मिलेंगे इस बहुत ही खूबसूरत से डिवोशनल सॉन्ग के बाद। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया है आशु मिश्रा जी की फरमाइश पे ये गाना, और आशु मिश्रा जी हैं लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रीति शुक्ला जी की बहराइच से। प्रीति शुक्ला जी को बहराइच से सुनना है गाना आरती उतारू भोली माँ। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा देवी भजन प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आज का दिन समर्पित है माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित होता है। और जी हाँ दोस्तों, माँ चंद्रघंटा हैं शांति, सौम्यता और अदम्य साहस का प्रतीक। सो थोड़ी सी बातें और करेंगे हम माँ चंद्रघंटा के बारे में, लेकिन फिलहाल चलिए एंजॉय करते हैं प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

माँ भोली माँ, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर जो की है बहराइच से। और आज है दोस्तों माँ चंद्रघंटा का दिन। सो क्या आप जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों माँ चंद्रघंटा के हाथ में है खड़क, बाण और धनुष, जो हमें सिखाते हैं कि अपने आत्म सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा निडर रहना चाहिए। पर साथ ही उनके चेहरे की सौम्यता हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति सिचुएशन कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मन में शांति और वाणी में मधुरता बनी रहनी चाहिए। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश है प्रमुख कुमार की लुधियाना से। प्रमुख कुमार को लुधियाना से सुनना है गाना गूगल बताओ खुश रहने की दवाई। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही अतरंगी सा गाना सिर्फ और सिर्फ प्रमुख कुमार की फरमाइश पर।

गूगल बता दो खुश रहने की दवाई। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही अतरंगी सा गाना हमारे बहुत ही अतरंगी से प्रमुख कुमार जी की फरमाइश पर जो की है लुधियाना से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। एंड दोस्तों यू नो वॉट, जो अगले गाने की फरमाइश आई है ये गाना मैं घर से निकलते वक्त अपने घर पे लास्ट यही गाना सुन के आई हूँ और अब इसी गाने की फरमाइश हुई है। सो फाइनली हम इंजॉय करेंगे धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश जो की है गोंडा से, और धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है गाना कासा टुक्का। आहां, सो इंजॉय करते हैं यो यो हनी सिंह का ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा। आहां, धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। म्यूजिक तो अच्छा है और मुझे नहीं पता, फिलहाल यो यो हनी सिंह भी अच्छा है यो ना। Oh, rock the floor, everyone.

कासा चुपका टकीला हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर हिट यो यो हनी सिंह का सॉन्ग से पहले धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से वाओ व्हाट अ सॉन्ग हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। अब बढ़ेंगे थोड़े से सूदिंग से थोड़ी से रिलैक्सिंग से सॉन्ग की तरफ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जेके शाह जी, आपका स्वागत है और इसी के साथ में अरविंद वेलकम इन योर शो। जेके शाह का कहना है किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। आए हाय, इसी के साथ में स्वागत करते हैं नागेश्वर धाकड़ का और एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से, उनको सुनना है गाना कुमार सानू की आवाज में और ये गाना होने वाला है बहुत ही ज्यादा रोमांटिक। सो एंजॉय करते हैं फूल और अंगार पिक्चर का गाना चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और हद से गुजर जाएंगे। आए हाय, एंजॉय करते हैं व्हाट अ लवली सॉन्ग अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

आके दूर फिर ना जाएंगे। आए हाय, हमने एंजॉय किया है कुमार सानू का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, फूल और अंगार पिक्चर का, और ये बहुत ही बेहद रोमांटिक सॉन्ग है दोस्तों। सो एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश है। तो फरमाइश थी अनुष्का की श्रावस्ती से, और जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, और हमारे जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना लखबीर सिंह लखा की आवाज में। जी हाँ दोस्तों, हम एंजॉय करेंगे। मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, ओ माय गॉड। एंजॉय करेंगे बचपन से पचपन तक फेवरेट रहने वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर। एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। इसी के साथ में जेके शाह का कहना है, इनका कहना है कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। आए हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सविता दुबे जी और सोनिया तिवारी। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया लखबीर सिंह लखा की आवाज में ये डिवोशनल सॉन्ग देवी भजन जग्गू दादा की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय रावत की। विजय रावत को सुनना है गाना माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया। सो एंजॉय करते हैं नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से एक और सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, आवाज है सोनू निगम की। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

से नहलाने तेरा बेटा आ गया, माँ शेरा वाले तेरा शेर आ गया। सोनू निगम की आवाज में हमने एंजॉय किया है गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा की। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना, सच्चा है तेरा दरबार माता झूठा ये संसार सारा। सो एक बार फिर से एंजॉय करेंगे सोनू निगम की आवाज में गाना आरजू पिक्चर का, लेकिन इस बार मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। आरजू पिक्चर का ये गाना सोनू निगम की आवाज में हमने इंजॉय किया है। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश को दोस्तों। एंड अगली फरमाइश भी है नवरात्र प्लेलिस्ट से। जी हाँ, सोनू निगम और अनुराधा जी की आवाज में हम इंजॉय करेंगे मोहित की फरमाइश जो की है मालवीय नगर गोंडा से। मोहित को मालवे नगर गोंडा से सुनना है गाना आए तेरे भवन दे दे अपनी शरण। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से ये डिवोशनल सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

में भक्ति ज्योत तेरी ए माता जलती रहे, सोनू निगम अनुराधा जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है नवरात्रि स्पेशल प्लेलिस्ट से ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है दोस्तों गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में और आशा जी की आवाज में। सो मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में हम इंजॉय करेंगे 100 बरस के जिंदगी से मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सर मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज़ में हमने एंजॉय किया सच्चाई पिक्चर का ये गाना मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले जेके शाह का कहना है कि तुम जमाने की राह से आए, तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। से एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। राजू को सीतापुर से सुनना है गाना, एक बात बता मेरे यार मैं सोच सोच के हारा। से एंजॉय करते हैं ये गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: आंधे आंधे आंधे, अरे आंधे यार।
1: एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच

थी राजू की सीतापुर से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की गोंडा से। कार्तिक कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू और मोहम्मद अजीज की आवाज में आंखें पिक्चर का ये गाना सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आखिर पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे। आंखें पिक्चर का ये गाना कुमार सानू, मोहम्मद अजीज और सपना मुखर्जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। और अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि कश्यप की गोंडा से। निधि कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना मेरा नाम है चमेली। ओ माय गॉड, बहुत दिनों बाद, कितने दिनों बाद एंजॉय करने जा रहे हैं हम ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। जी हाँ, आवाज है लता जी की, पिक्चर का नाम है राजा और रंग। राजा और रंग पिक्चर का ये गाना हम लता जी की आवाज में एंजॉय करेंगे निधि कश्यप की फरमाइश पर, जो की है सीतापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओह वाओ, थैंक यू सो मच।

0: मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ माला नलबेली। हमने एंजॉय किया लता जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनंग मनाओ। लेट्स गो टू अगली फरमाइश की तरफ। उषा कश्यप जी को गोंडा से सुनना है गाना कैसे रहूं चुप, सो एंजॉय करेंगे एक बार फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, लेकिन इस बार उषा कश्यप जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। लेकिन उसके पहले दोस्तों, जेके शाह का कहना है कि भाप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, भाप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। सो मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। सो एंजॉय करते हैं उषा कश्यप जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: सुर में गाना सीख।

0: की और जरा सी वाह हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही एंटिक सा ओल्ड इज गोल्ड ओह वाह वाला गाना एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश को दोस्तों। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश गीत को एंजॉय करने के लिए? बोलो ना हाँ, अगर एक बार बोल दोगे हाँ तो कहीं कुछ चला नहीं जाएगा, जो है सब यहीं रह जाएगा, कहीं कुछ नहीं जाएगा। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश को दोस्तों, बिना बिना बिना बिना किसी देरी के। और अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, उनको सुनना है दोस्तों गाना बदन पे सितारे लपेटे हुए, उजान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। सो चैन भी लाएंगे, करार भी लाएंगे और एंजॉय करेंगे ये गाना निब्बर जी की फरमाइश पर।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए,
0: ओह रियली

0: बैठे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए।
1: सो जरा पास आओगी तो चैन तो आ ही जाएगा। हमने एंजॉय किया मोहम्मद रफी जी की आवाज में। निकबर जी की फरमाइश पर ये गाना बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इंजॉय करते हैं उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का। और ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई है शिवम सिंह की तरफ से, जो कि है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट्स और सिंपल के साथ में, और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। इसी के साथ में जेके शाह का कहना है कि बात उल्टी वो समझते हैं जो कुछ कहता हूँ, बात उल्टी वो समझते हैं जो कुछ कहता हूँ, अब की पूछा तो ये कह दूंगा कि हाल अच्छा है। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है मीनू कश्यप की सीतापुर से, उनको सुनना है दलाल पिक्चर का गाना उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज में। एंजॉय करते हैं हम लोग मीनू कश्यप की फरमाइश और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए।

0: पर जिसकी पीर सही ना जाए, हमने एंजॉय किया उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में दलाल पिक्चर का ये गाना। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश गीत को एंजॉय करने के लिए? अगली फरमाइश जेके शाह की, जेके शाह को सुनना है गाना इशारों इशारों में दिल लेने वाले। सो एंजॉय करेंगे ओल्ड इज गोल्ड सुपर डुपर डुपर हिट हाउ रोमांटिक नगमा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आशा जी की आवाज में, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, जेके शाह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल,
0: नहीं करना डाउनलोड, क्यों? स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना।

प्यार की जाने जहां लाखों में तुम एक हो, हमने एंजॉय किया है आशा जी की और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे जी की शाह जी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। एंड यू नो व्हाट, अगली फरमाइश हमारे पास में है अरविंद की। अरविंद को सुनना है गाना, हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया तो साथ ही कोई भूला याद आया। एंजॉय करेंगे ये बहुत ही दर्द भरा सा गाना, बहुत ही प्यारा सा गाना, सिर्फ और सिर्फ अरविंद की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, टन टन टन। आय हाय आय हाय। अच्छा

लखनम और दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया। हमने एंजॉय किया है ये दर्द भरा नगमा अरविंद की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। सो एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर ये गाना। स्टे ट्यून्ड। ओहो ओहो

0: वाओ, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर हिट नगमा नागेश वधाकड़ की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइशी गीत की तरफ। उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो एस कुमार और मुस्तफा जी सऊदी से आपका स्वागत है। और अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से और मुस्तफा जी की सऊदी से। निशा को पटेल नगर गोंडा से और मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है गाना मेरे पास तुम हो। एंजॉय करते हैं ये गाना। इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो बस यही इतना कहना चाहूंगी दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉर्थ से सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉर्थ से सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए ओहो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट्स और सिंपल के लिए आप सबकी तरफ से, आप सबके लिए बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट्स और सिंपल की तरफ से। स्टे ट्यून, लव यू ऑल। कुल मिलाकर ओवरऑल इस तरफ से भी प्यार उस तरफ से भी प्यार, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। मिलते हैं कल नई बात, नई प्यार, नई जज्बात और नई गीत के साथ में। स्टे ट्यून एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। ओ माय गॉड,
1: जाने का हुनर
0: आए हाय
1: मुझको।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 92-981-976-9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, पादाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, ये बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन। और आपके इस प्यारे से कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, नमन है, स्वागत है। इस्तकबाल आप सभी का। हमारे साथ जुड़े हैं भाई अरविंद जी। हेलो मनु सर जी, जय माता दी, आपको भी जय माता दी। आज बहुत दिन बाद आपके शो में आया हूँ, अभी रात वाले शो में। हाँ अरे साहब, रात रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात कुछ ख्वाब दिखाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। ये चाहने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है साहब। और ये जो वक्त होता है ना, ये मिलन का वक्त होता है। हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा करके जब घर लौटते हैं तो एक सुकून का पल चाहिए होता है। और उसी सुकून के पल को देने की ख्वाहिश हमारी रहती है कि आपको वो सुकून मिल सके, वो प्यार मिल सके। जी हाँ, कभी कभी खामोशी भी चीखती है, बस सुनने वाला चाहिए। कल मैंने शायद ये बात बोली थी अपने शो में कि नाना पाटेकर की बहुत ही प्यारी सी मूवी है खामोशी द म्यूजिकल, और बहुत कुछ कहती है अपने आप में। मेरे साथ जे.के. शाह जी हैं, वेलकम, खैर मकदम करते हैं आपका भी। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जी आज जिस इस कार्यक्रम के तहत हम बात करते हैं न्यू के उन नीटों की जो हमको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन जिन पर टिकी होती है पूरी की पूरी इमारत। हम बात करते हैं कलमकारों की, दानिश्वरों की, जिनकी लेखनी से लिखे हुए शब्द संगीतकारों की धुन और गायक कलाकारों की आवाज़ के साथ जब मिलते हैं तो हमें एक खुशी, एक उमंग, एक तरंग, एक एहसास, एक अपनापन। और आपने कभी शायद महसूस किया हो कि कुछ गज़लों से, कुछ गीतों से आपका कुछ रिश्ता सा बना रहता है। आप सभी के जीवन में कोई ना कोई, लगभग लगभग जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, कोई ना कोई एक बहुत ही फेवरेट गीत होता है। द बेस्ट कैन नॉट बी टू, सबसे अच्छा कभी दो नहीं हो सकता, वो हमेशा एक होता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा नगमा कौन सा है, गीत कौन सा है, गज़ल कौन सी है, तो आपकी ज़ुबान पर वो एक नाम तुरंत आ जाएगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल हमने आपको मोहम्मद रफ़ी साहब, नूर जहाँ साहिबा की आवाज़, यशुदास की आवाज़, जगजीत सिंह की प्यारी सी आवाज़, इन सभी आवाज़ों से आपको कराया था रूबरू। गज़लों की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसने इल्म से लेकर के फिल्म तक का सफ़र तय किया, उनका नाम है शकील आज़मी। आज उन्हीं के बारे में आपसे करेंगे गुफ्तगू, बातचीत। उन्होंने कहा कि पदों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है।

बहुत ही प्यारी सी गजल उन्होंने कही कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। अब देखिए साहब, यहां पर बात जब हुस्न की हो रही है तो केवल हुस्न की नहीं बल्कि एक पद की हो रही है कि आपको अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो उसकी हिफाजत कीजिए आप। अगर लता जी को उन्होंने गला दिया, आवाज दी, तो लता जी ने कभी चप्पल पहनकर कभी कोई गीत नहीं गाया, वो कभी भी नहीं गाई, उन्होंने उसकी हिफाजत की। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई, कनीज कहते हैं नर्तकी को, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, शाहजादी मतलब राजकुमारी, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। घटाएं उठती हैं बरसात होने लगती है, घटाएं उठती हैं बरसात होने लगती हैं, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। फलक मतलब आसमान। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, मतलब जो बात मैं कह दूं वो बात सब लोग मानते थे। और हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है कि जो वो कहता है वो लोग उसकी बात को मानते हैं। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जुबान देखता है। अब मैं बोल दूं तो मुझ पर तंज कसने वाले लोग आ जाते हैं। वक्त वक्त की बात है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। अब देखिए साहब, शायर कहाँ है कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो घर मुझको देखता है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, लेकिन एक शायर कहता है कि कल खुदा जाने यहां किसका बसेरा हो, आज इस घर पे जो तख्ती है वो मेरे नाम की है, आज आपका है। हमेशा से कुछ नहीं रहा है, किसी का नहीं रहा है और किसी का नहीं रहेगा। हाँ, वादियों में आपकी आवाज गूंजेगी, आपके अच्छे अमाल जो हैं, आपके जो अच्छे कर्म हैं उनकी चर्चा होगी, आवाज गूंजती रहेगी। जब बात आवाज की आती है तो भाई यहां पर जब मैंने सदाओं की बात की है तो मेरे जहन में एक नगमा बहुत प्यारा सा आता है, आप सभी ने सुना होगा और आप सभी उस नगमे से परिचित होंगे। हमारे साथ श्रीमती सविता शास्त्री जी है, चरण स्पर्श करते हैं आपको। और बात जब हुई कि मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूं, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है, तो साहब वास्तव में मकान कहता है कि आप ये कहते हो कि ये घर आपका है, आपके पहले जो थे वो भी कहते थे कि ये घर उनका है, लेकिन नहीं,
कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा हो। आज इस घर पे जो तख्ती है वो मेरे नाम की है। नाम मिट सकता है साहब, लेकिन आवाज़ वादियों में गूंजती रहती है, और एक ऐसी आवाज़ जो वादियों में गूंजती ही रही है। चलिए आज एक प्यारी सी गज़ल से शुरुआत करते हैं, और आज का के कार्यक्रम की शुरुआत, कल हमने भाई से शुरुआत की थी, रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी सी गज़ल सुनाई थी आपको, और आज उनकी बहन जिनसे वो राखी बंधवाते थे, हम सभी की प्रेरणा स्रोत लता मंगेशकर जी की एक प्यारी सी गज़ल से आज को करते हैं शुरुआत। जी हाँ, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता जी की इस प्यारी सी गज़ल के साथ। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये गोंडा ही नहीं अब बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए। छूने दो बच्चों के हाथों को,

जी हाँ, अगर एक बहन को याद किया गया और दूसरी को न याद किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। तो मेरी आवाज़ ही पहचान है के साथ मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। आशा भोसले जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में ये बहुत ही प्यारी सी गज़ल हमने सुनी और एक पल के लिए तो लगा कि हाँ किसी दूसरी दुनिया में खो गए, पहुँच गए। यही कलम की ताकत होती है जो हमको ट्रांसपोर्ट कर देती है एक डिवाइन वर्ल्ड में, एक दैवीय दुनिया में। हमारे साथ अरविंद जी हैं। जी हाँ, प्रणाम करते हैं आपको। भाई गीत पसंद आ गया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद भाई, गज़ल अच्छी लगी। और अनिल शास्त्री जी, जी चरण स्पर्श करते हैं आपको। दादा कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आइए अब चलते हैं साहब, शकील आज़मी लिखा उन्होंने, बहुत ही प्यारी गज़ल लिखी कि मुझ पे है सैकड़ों इल्ज़ाम, मेरे साथ न चल। मुझ पे है सैकड़ों इल्ज़ाम, मेरे साथ न चल। तू भी हो जाएगा बदनाम, मेरे साथ न चल। मुझ पे है सैकड़ों इल्ज़ाम, मेरे साथ न चल। तू भी हो जाएगा बदनाम, मेरे साथ न चल। तू नई सुबह के सूरज की है उजली सी किरण। तू नई सुबह के सूरज की है उजली सी किरण। मैं हूँ एक धूल भरी शाम, मेरे साथ न चल। अपने को छोटा बनाकर सामने वाले को बड़ा बना लेना, यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है कि तू नई सुबह के सूरज की है उजली सी किरण। मैं हूँ एक धूल भरी शाम, मेरे साथ न चल। अपनी खुशियाँ मेरे आलाम से मंसूब न कर। आलाम मतलब तकलीफ, मंसूब मतलब मिला देना। अपनी खुशियाँ हमारे गम में न मिलाइए। अपनी खुशियाँ मेरे आलाम से मंसूब न कर। मुझसे मत मांग मेरा नाम, मेरे साथ न चल। मुझसे मेरा नाम मत मांगो, हम बदनाम हैं। और अगर हमारे साथ आपका नाम जुड़ेगा तो आप भी बदनाम हो जाएंगे। अपनी खुशियाँ मेरे आलम से मंसूब न कर। मुझसे मत मांग मेरा नाम, मेरे साथ न चल। अरे तू भी खो जाएगी टपके हुए आंसू की तरह। तू भी खो जाएगी टपके हुए आंसू की तरह। देखे गर्द से अय्याम, मेरे साथ न चल। मतलब इस समय गर्द से अय्याम मतलब मेरा बुरा वक्त चल रहा है, इस समय आप मेरा साथ छोड़ दीजिए। और मेरी दीवार को तू कितना संभालेगा शकील, शायद अपना नाम लेते हैं, कि मेरी दीवार को तू कितना संभालेगा शकील। टूटता रहता हूँ हर गाम। गाम का मतलब होता है जब हम चलते हैं तो एक पैर से दूसरे पैर के बीच की जो दूरी होती है उसको उर्दू में गाम कहा जाता है, जो लगभग आधे गज की होती है। मेरी दीवार को तू कितना संभालेगा शकील। टूटता रहता हूँ हर गाम, मेरे साथ न चल। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, लेकिन मेरे साथ अगर आप चलेंगे तो हो सकता है आपकी दुश्वारियाँ, आपकी मुसीबतें बढ़ें। और वास्तव में यही तो सच्ची मोहब्बत है साहब, हम सामने वाले को कामयाब होता हुआ देख लें। और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि इस दुनिया में अगर हम पुरुष की बात करें तो दो पुरुष ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि कोई उनसे आगे निकले। पहला पिता, जो ये चाहता है कि उसका बेटा उससे भी आगे निकले। और दूसरा अध्यापक,
वो चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी उससे बहुत आगे निकले। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे शायद कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिला या मैं ढूंढ ना पाया हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया

मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं, तो उनका ईश्वर की कृपा से चयन हो गया परीक्षा में। खुशी की लहर गूंजी घर में, मैं भी गया। उनके बड़े भाई भी थे और उनके पास पत्नी भी थी, फिर वो लोग अपने कमरे में गए तो भाभी जी ने कहा कि देखा तुम्हारा छोटा भाई तुमसे आगे निकल गया, कम से कम अपने ऊपर शर्म करो। समझ में आया कि उन्होंने मुबारकबाद तो दी कि भाई बहुत अच्छा हुआ, चयन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उस खुशी के पीछे कोई गम कचोट रहा था उनको कि मेरे हस्बैंड का नहीं हुआ। भाई सोच रहा था कि हाँ यार उसका हो गया, मेरा नहीं हो पाया। तो मैंने रिश्तों को पढ़ा, समझने की कोशिश करी और जहाँ तक मैं समझ पाया, मेरी अल्प बुद्धि जहाँ तक है, वहाँ तक मैंने दो रिश्ते ऐसे पाए। तीसरे रिश्ते की तलाश में हूँ जहाँ पर एक पुरुष की कामयाबी पर एक पुरुष खुश हो। जी हाँ, आइए अब आपको ले चलते हैं भाई। आपने कल हमने आपको जिन जिन की गजलें सुनाई थी, आज थोड़ा सा हटते हैं और आपको ले चलते हैं सदाबहार गायक कलाकार सोनू निगम साहब की एक बहुत ही प्यारी सी गजल है। आइए आपको सुनाते हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये प्यारी सी गजल। सुनते रहिए और रेडियो 89.6 FM, क्योंकि ये अब गोंडा की ही नहीं बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन।

क्या बात है, वो जब याद आए बहुत याद आए। और ये नगमा वादियों में इसलिए गूंजा क्योंकि मुझे एक गजल पढ़नी थी और उस गजल को पढ़ने के लिए कुछ पंक्तियां चाहिए थी जो पंक्तियां इस नगमे में हैं। वैसे तो हर गीत की सभी पंक्तियां बेमिसाल होती हैं, लेकिन जब कहा गया कि दिल सुलगने लगा अश्क बहने लगे, दिल सुलगने लगा अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, पंक्त पर आइएगा, मगर रोते रोते हंसी आ गई है। कमाल की पंक्ति है साहब, विरोधाभास पैराडॉक्स। मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, वो जब याद आए बहुत याद आए। शकील आजमी साहब ने लिखा उनकी गजल को पढ़ने के लिए ये नगमा मैंने सुनाया। उन्होंने कहा कि हंस रहा हूं मैं बहुत मुझको रुलाने के लिए, मैं इसलिए हंस रहा हूं ज्यादा ताकि मैं रो दूं। आप सभी हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं और आपने अनुभव किया होगा कि अगर आप बहुत देर तक हंस लेते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये बात शायद आप सच मानेंगे इस बात को। हंस रहा हूं मैं बहुत मुझको रुलाने के लिए, आ आ हवा मेरे चिरागों को बुझाने के लिए, आ हवा मेरे चिरागों को बुझाने के लिए, शम मतलब मोम कहिए आप या कपूर, शम गुल करके हवा देख रही है मुझको, आखिरी तीली है माचिस में जलाने के लिए। अब देखिए पंक्ति आती है कि जख्मे दिल, दिल का जख्म, जख्मे दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, जख्मे दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, अरे कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। अब मोहब्बत की इम्तिहा की एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए, एक झलक आपको देख ले फिर चले जाएंगे, यहां कौन सी जिंदगी, कौन हमेशा के लिए आया है। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, अरे बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। और अब एक कलमकार का दर्द, उसका कल्ब, उसकी पीड़ा सामने आती है जब शकील आजमी साहब ने मुल्क फिल्म में काई तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन के साथ उसके संवाद लिखे तो उनका नाम फिल्मी पर्दे पर आया और वहां उन्होंने एक कलमकार की हैसियत बताई। उन्होंने कहा कि फिल्म के पर्दे पे छपना कोई आसान नहीं, फिल्म के पर्दे पे छपना कोई आसान नहीं, अरे मरना पड़ता है यहां नाम कमाने के लिए। नाम कमाने के लिए इंसान को मर जाना पड़ता है, लगता है कि एक जिंदगी मुकम्मल हो गई। ये शकील आजमी है। और आइए अब आपको एक ऐसी गजल सुनाते हैं, शायद आपने ऐसा मौजू कलमकार से शायद एक, ये तो नहीं कहेंगे कि न सुना हो, लेकिन ये कहेंगे कि एक अनूठा अंदाज, मेरी मौत पे मैं ही न रो सका। बहुत प्यारी सी आवाज है, आपकी जानी हुई आवाज है,
रूप कुमार राठौर साहब की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारी सी गज़ल है, आइए अब एक गज़ल आपको सुनाते हैं रूप कुमार राठौर साहब की आवाज़।

0: 6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ
1: और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी फर्स्ट चॉइस। खुशी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसके कॉलेज में रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही थी। दो कंपनीज में उसका भी नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था और दोनों ही कंपनीज रिप्यूटेड थी। बस थोड़ा सा पैकेज में अंतर था। खुशी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो कौन सी कंपनी ज्वाइन करे। आप सोच रहे होंगे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भाई, जिसमें ज्यादा पैकेज मिल रहा हो वही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बाकी पूरा पोर्टफोलियो तो ऑलमोस्ट सेम था। खुशी ने ज्वाइन की वो कंपनी जिसमें उसने इंटर्नशिप भी की थी और इंटर्नशिप के दौरान उसकी मुलाकात रोहन से हुई थी। तरह तरह के बहाने बनाए उसने लोगों को कन्विंस करने के लिए कि आखिर वो कंपैरेटिवली कम पैकेज वाली कंपनी क्यों ज्वाइन कर रही है। और घर वालों को तो बताया ही नहीं कि उसके पास एक और कंपनी का ऑफर भी था। 3 महीने के इंटर्नशिप में हल्की फुल्की दोस्ती ही हुई थी रोहन से, पर न जाने क्या कशिश थी उसमें कि खुशी उस दोस्ती को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहती थी। बातों बातों में उसे इतना तो कंफर्म था कि फिलहाल उस कंपनी को स्विच करने की वो नहीं सोच रहा है। सो शी फाइनली डिसाइडेड और वो उसका ऑफिस का पहला दिन था। रोहन और उसका जॉब प्रोफाइल लगभग सेम ही था, तो बॉस ने रोहन से बोला खुशी को काम समझा दो। जी बिल्कुल, रोहन ने कहा और खुशी से बोला प्लीज कम विथ मी, और उसे अपने केबिन में ले जाकर सबसे पहले उसकी तरफ पलटा और उससे हाथ मिलाते हुए बोला आई एम सो हैप्पी यू आर बैक हियर। खुशी को यूं लगा मानो रोहन भी यही चाहता था कि खुशी ये कंपनी ज्वाइन करे। रोहन उसे काम समझा रहा था और खुशी रोहन को देखे जा रही थी। सॉफ्ट स्पोकन, टॉल, फेयर, हैंडसम, गॉट इट खुशी? रोहन ने कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ समझाकर खुशी से कंफर्म करने के लिए उसकी तरफ देखा, पर वो तो जैसे कहीं और ही खोई हुई थी। खुशी, खुशी, हाँ हाँ, क्या हुआ? रोहन ने पूछा। आई थिंक यू आर टायर्ड, वैसे भी आज पहला दिन है, आज के लिए इतना ही काफी है, अब बस करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। खुशी बोली हाँ ठीक है। अब वो ये कैसे बताए कि उसके दिमाग में तो रोहन को देखकर गाना चल रहा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फर्स्ट चॉइस। अब तक आपने सुना, खुशी ने जॉब के लिए उस कंपनी को चुना जहां से उसने इंटर्नशिप की थी, क्योंकि वहां उसकी मुलाकात रोहन से हुई थी। फॉर्चुनेटली बॉस ने रोहन को ही उसे ट्रेन करने के लिए अपॉइंट किया। अब आगे, रोहन के गाइडेंस में खुशी का काम शुरू हो चुका था। खुशी की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। धीरे धीरे करके पूरा दिन निकल गया, पर खुशी तो बस खोई हुई थी रोहन की बातों में, उसकी पर्सनालिटी में। शाम को घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, कैसा रहा पहला दिन? अगर ये सवाल माँ की जगह खुशी की बेस्ट फ्रेंड ने पूछा होता तो खुशी घंटों उसे न जाने क्या क्या बताती रहती, दिल का सारा गुबार निकाल देती। पर माँ से सिर्फ इतना ही बोली, सब बढ़िया है मम्मी, अच्छी कंपनी है, काम भी समझ में आ रहा है, और फिर अपने कमरे में चली गई। आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी तो बंद आंखों में भी उसे रोहन का ही चेहरा नजर आ रहा था। जल्दी रात बीते, सुबह हो और वो फिर रोहन के पास पहुंच जाए। दूसरे दिन ऑफिस में अपने फ्लोर पर जाने के लिए खुशी लिफ्ट का बटन सेट कर रही थी, तभी रोहन भी दौड़ता हुआ लिफ्ट में आ गया। गुड मॉर्निंग खुशी। खुशी फिर से उसे देखने लगी। वो उसकी आवाज की, उसकी पर्सनालिटी की ओर ना चाहते हुए भी खिंचती चली जा रही थी। वो बार बार अपने आप से बातें करने की कोशिश करती, क्या मुझे प्यार हो गया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई इतना अच्छा कैसे लग सकता है? आज तक तो कोई इतना अच्छा नहीं लगा, फिर अब क्यों? घर जाते वक्त वो अपने आप को समझाती, कल से कम बात करूंगी, लेकिन उससे मिलते ही अपने आप में ही नहीं रहती, धीरे धीरे बातें ज्यादा ही होने लगती। अब तो काम के अलावा भी दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगे थे, कभी कॉफी कभी मूवी, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से साधारण दोस्ती की हदों से आगे बढ़कर कभी कोई बात नहीं की थी। कभी खुशी को लगता कि शायद रोहन भी उसे पसंद करता है, और कभी लगता कि उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानता है। खुशी हर दिन इन सवालों के जवाब ढूंढती रहती। वो बातों ही बातों में रोहन से उसके परिवार के बारे में पूछती, उसकी हॉबीज, उसकी पसंद नापसंद, उसके फ्रेंड्स, वो खाली समय में क्या करता है, उसके पुराने दोस्त कौन हैं। जब कभी वो फोन पर किसी से बातें करता तो खुशी सुनने की कोशिश करती कि वो किससे कैसी बातें कर रहा है, कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, उसके घर में उसकी शादी को लेकर क्या बातें होती हैं, अगर वो गर्लफ्रेंड बनाएगा तो क्या उसके घर वाले उससे शादी के लिए मान जाएंगे, या आगे चलकर उसे अरेंज्ड मैरिज ही करनी है। वो रोहन के साथ अपना भविष्य देखना चाहती थी, पर ऐसे कैसे खुलकर पूछ ले वो किसी लड़के से कि वो उसके लिए क्या मायने रखती है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फर्स्ट चॉइस। अब तक आपने सुना, खुशी ने जॉब के लिए उसी कंपनी को चुना जहां से उसने इंटर्नशिप की थी। कारण था रोहन। धीरे धीरे रोहन और वो काफी अच्छे दोस्त बन गए, पर प्यार के इजहार जैसी कोई बात उनमें अभी तक नहीं हुई थी। अब आगे। उस दिन खुशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। दोपहर में रोहन का फोन आया। क्या हो गया, आज ऑफिस क्यों नहीं आई? खुशी बोली, कुछ नहीं, शायद वायरल है। रोहन बोला, आराम करो, कोई जरूरत हो तो बताना, मैं आ जाऊंगा। खुशी बोली, नहीं नहीं, सब ठीक है, ठीक हो जाऊंगी एक दो दिन में। पर फिर खुशी दो तीन दिन तक ऑफिस नहीं जा पाई। तीसरे दिन शाम के वक्त रोहन सुंदर सा बुके और गेट वेल सून का कार्ड लेकर उसके घर पहुंच गया। डोरबेल बजाई और माँ ने दरवाजा खोला। जी, मैं रोहन, खुशी के साथ उसके ऑफिस में काम करता हूँ। माँ ने उसे बैठाया और खुशी को आवाज लगाई। उसका नाम सुनते ही खुशी की तो जैसे आधी बीमारी तुरंत ही ठीक हो गई। रोहन ने उसकी तरफ कार्ड बढ़ाते हुए कहा, गेट वेल सून, जल्दी वापस काम पर आओ, तुम्हारे बिना ऑफिस में अच्छा नहीं लगता। रोहन के जाने के बाद खुशी बुके और कार्ड लेकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके उसने कार्ड में लिखे एक एक शब्द को 10-10 बार पढ़ा। डियर खुशी, गेट वेल सून, कम बैक सून, योर्स रोहन। ओ माय गॉड, आई थिंक ही ऑल्सो लव्स मी। खुशी को यकीन सा होने लगा था कि रोहन भी उसे प्यार करता है। ठीक होने के बाद जब उसने वापस ऑफिस ज्वाइन किया तो कुछ दिन तक रोहन ने उसका बहुत ख्याल रखा। उसकी टेबल पर चाय पहुंच जाती, टाइम पर उसे काम बंद करके खाना खाने के लिए कहता और कुछ दिन के लिए खुद एक्स्ट्रा काम करके उसका वर्कलोड भी कुछ कम कर दिया था। कितना केयरिंग है, कितना सेंसिटिव। एक दिन रोहन ने खुशी को एक एनवेलप लाकर दिया। ये क्या है, बोलते हुए खुशी उस एनवेलप के अंदर का लेटर निकालकर पढ़ने लगी। जॉइनिंग लेटर, वाओ, कांग्रेचुलेशंस रोहन, तुमने तो बड़ा बढ़िया अपग्रेड किया। रोहन को दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई थी, वो भी यहां से डबल पैकेज पर। खुशी उसके लिए खुश थी, पर उससे अलग होने का गम भी था। अब तुम चले जाओगे रोहन? रोहन बोला, नहीं, तुम्हें छोड़कर थोड़े ना जा रहा हूँ, नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, हम फ्रेंड्स रहेंगे ना और मिला भी करेंगे। खुशी का मन तो कर रहा था कि वो उसका ये ज्वाइनिंग लेटर फाड़कर फेंक दे, लेकिन अच्छे दोस्त ऐसे थोड़े ही ना होते हैं, वो तो दूसरे की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। बेमन सही सही खुशी ने इस बात के लिए खुद को समझा लिया कि अब वो रोज दिन भर रोहन के साथ नहीं रह पाएगी, कभी कभी ही मुलाकातें होंगी। बस उसे डर इस बात का था कि कहीं समय के साथ ये मुलाकातों का सिलसिला कम ना हो जाए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फर्स्ट चॉइस। अब तक आपने सुना खुशी और रोहन कोलीग्स भी थे और बेस्ट फ्रेंड्स भी। फिर एक दिन रोहन ने बेटर पे आउट के लिए कंपनी स्विच कर दी। अब रोहन दूसरी कंपनी में काम करने लगा था, लेकिन उसका मैसेज फोन लगातार खुशी के पास आता ही रहता था। रोज शाम को वो खुशी को उसके ऑफिस से पिक करके घर भी छोड़ता था। कई बार तो वो लोग फोन पर देर रात तक बातें भी करते रहते थे। खुशी को यकीन होने लगा था कि रोहन भी उसे प्यार करता है। क्या हुआ जो उसने कभी कुछ कहा नहीं? मैंने भी तो कभी कुछ नहीं कहा। प्यार की कोई जुबान नहीं होती, प्यार तो एक एहसास होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्यों ना मैं अपने घर में भी सब कुछ सच सच बताकर शादी के लिए बात बढ़ाने को कहूं। खुशी, यस सर, कहां खोई हुई हो? जी कुछ नहीं। प्रेजेंटेशन बन गया? जी बना रही हूं, बोलकर वो फिर से अपने काम में जुट गई। सर के टोकने पर वो अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आई थी। इधर कुछ दिनों से रोहन का कोई मैसेज नहीं आया था, ना फोन, और बिना बताए ही उसने मिलना भी छोड़ दिया था। खुशी ऑफिस के बाद कुछ देर उसका वेट करती, फिर कैब करके घर चली जाती। उसने एक दो बार मैसेज भी किया, पर रोहन के पास वो मैसेज डिलीवर हुआ ही नहीं। क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या वो किसी ऐसी जगह पर है जहां नेटवर्क नहीं आ रहा? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? खुशी ये सब सोचकर बहुत परेशान थी। तभी उसके फोन पर मैसेज टोन बजी। उसने देखा तो फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन था, किसी प्रीति का। खुशी ने उसका प्रोफाइल खोलकर देखा, वो रोहन की कॉमन फ्रेंड थी। रोहन की वजह से खुशी ने प्रीति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन लिया दोनों ने एक दूसरे का। अच्छा लगा खुशी को उससे बातें करके। प्रीति भी उसी कंपनी के एक्सटेंशन में काम करती थी। फिलहाल वो 2 साल के लिए इसी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पर अब्रॉड गई हुई थी। इतनी सारी बातों के बाद भी खुशी उससे ये पूछना तो भूल ही गई कि वो रोहन को कैसे जानती है, या शायद उसे ये सवाल इतना जरूरी लगा ही नहीं। सेम कंपनी में काम करने वाले फ्रेंड्स, सो ऑब्वियस। तभी उसे रोहन भी ऑनलाइन दिखा। खुशी ने उसी प्लेटफॉर्म पर रोहन से चैट की। कहाँ हो रोहन, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? रोहन ने रिप्लाई किया, कुछ अर्जेंट काम था, घर चला गया था, मंडे से वापस ज्वाइन कर लूंगा। खुशी रोहन से फिर प्रीति के बारे में पूछना भूल गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है फर्स्ट चॉइस। अब तक आपने सुना, खुशी रोहन को पसंद करती थी। कुछ दिन साथ काम करने के बाद रोहन ने कंपनी स्विच कर दी। एक बार कुछ दिन के लिए रोहन छुट्टी पर गया, उसी समय खुशी के पास प्रीति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रीति और रोहन पहले से ही उस प्लेटफॉर्म पर एडिट थे। खुशी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उन दोनों से ही एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अब आगे कुछ महीने यूं ही बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन दीपिका खुशी के पास आई और बोली, रोहन कहाँ है? आज बड़े दिनों बाद टाइम मिला इधर आने का। आज अच्छे से उसकी खबर लूंगी, आखिर कब तक ट्रीट नहीं देगा? खुशी बोली, ट्रीट किस बात की? दीपिका बोली, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं बताया उसने? लास्ट टाइम जब वो घर गया था तो उसकी एंगेजमेंट हो गई थी प्रीति से। खुशी का तो जैसे दिमाग सुन्न हो गया, पर वो दीपिका से कुछ नहीं बोली। रोहन कहीं बिजी था, दीपिका कुछ देर वेट करके चली गई। शाम को घर लौटते वक्त खुशी ने रोहन से पूछा, प्रीति कौन है? रोहन बोला, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। क्यों, क्या हुआ? उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तुम्हें कॉमन फ्रेंड देखकर मैंने एक्सेप्ट कर ली। रोहन बोला, ओह अच्छा। खुशी कुछ देर तक उसके बताने का वेट करती रही, पर वो आज भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। रोहन के धोखे के बारे में सोचकर उसका सिर फटने लगा। अचानक वो रोहन से बोली, गाड़ी साइड लगा दो, मैं खुद चली जाऊंगी। रोहन बोला, अचानक क्या हुआ? खुशी बिफर पड़ी। हो तो कई महीने पहले ही चुका था, पता मुझे आज चला। रोहन बोला, क्या हुआ है, साफ साफ बताओ ना। खुशी लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी एंगेजमेंट प्रीति से, दीपिका ने मुझे बताया। फिर जोर जोर से रोने लगी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर तुम चाहते क्या हो? रोहन बोला, तुम्हें चाहता हूं मैं, इसलिए नहीं बताया कि जानता हूं तुम भी मुझसे प्यार करती हो, हर्ट हो जाओगी। तुम कुछ महीने पहले एंगेजमेंट के लिए घर गए थे ना, मुझसे छुपाया, फिर अब ये सब क्यों बोल रहे हो? अब भी मुझे मैनिपुलेट करना चाहते हो? व्हाट डू यू एक्चुअली वांट रोहन? रोहन ने गाड़ी साइड लगा दी। मेरे घर वालों ने तय की थी एंगेजमेंट, मुझे बिना बताए घर बुलाया, सब कुछ अरेंज्ड था, मुझे उस वक्त कुछ कहने का मौका नहीं मिला। दीपिका मेरी फैमिली फ्रेंड है, इसलिए उसे पता है। प्रीति को मैंने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, शायद इसीलिए उसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी। बस अब मुझे घर वालों को मनाना है, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तुम्हें यह सब बताकर क्यों परेशान करता, इसलिए नहीं बताया। खुशी प्लीज समझने की कोशिश करो, भरोसा करो मुझ पर, विश्वास करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर उसने खुशी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, यू आर माय फर्स्ट चॉइस एंड यू विल बी द लास्ट। आई लव यू खुशी, आई लव यू।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी फर्स्ट चॉइस। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मुझे रिव्यूज भेज सकते हैं 9453254315 पर। और अगर आप भी पहुंचाना चाहते हैं अपने अपनों तक अपने दिल की बात, तो हमें लिख भेजिए अपनी कहानी, हम लाएंगे उन्हें गीतों में पिरोकर आपके लिए। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। तब तक के लिए सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे, होगी सुरों की बरसात। हो जाइए, थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे आपको।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: हाँ जी
1: कोई
0: दोस्तों,
1: बात
0: जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देवानंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो। और रात की जो सड़कें होती हैं, वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।